FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 24वीं तिथि तदनुसार 15 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच

0: बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6वें राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुज वन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुरुधानम वान राणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामी।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना राजेश डेविड, हरिओम शरण, राजेश मिश्रा और साथियों को FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: जैन दर्शन के अनुसार 10 लक्षण पर्व का प्रथम धर्म है उत्तम क्षमा। यह आत्मा के सर्वोत्कृष्ट गुणों में से एक है, क्योंकि क्रोध रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, इसलिए इस शत्रु पर विजय पाने वाला ही सच्चा वीर है। अतः कहा जा सकता है कि क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम्। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका में रावण पर चढ़ाई की, उस समय भी उनके मन में रावण के प्रति शत्रुता का भाव नहीं था। उनका चित्त निर्मल था, इसीलिए वे बार बार कहते रहे कि हे रावण, मैं तेरी लंका पर राज्य नहीं करना चाहता, मैं तेरी लंका का वैभव नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि यदि तू मेरी सीता मुझे लौटा दे

0: मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उत्तम क्षमा। ये था सम्यक दर्शन का सात्विक प्रभाव। निश्चय ही उत्तम क्षमा तीन लोक का सार है। जब आत्मा उत्तम क्षमा के प्रभाव में आ जाती है तो वह परमात्मा बन जाती है। क्षमा कोई सुनने सुनाने की चीज नहीं, यह तो पालन करने की चीज है। साधु और तपस्वियों की क्षमा का कोई अंत नहीं, उनका तो वास्तविक धर्म ही क्षमा धारण करना है। गृहस्थ धर्म में भी साधारण क्षमा का पालन किया जाता है। पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई और पड़ोसी सभी आपस में प्रेम भाव से रहें, यही भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। जो समाज क्षमा को जितना धारण करता है वह उतना ही बड़ा और महान है। हर धर्म में, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या बौद्ध, सिख हो या पारसी, क्षमा को सर्वोपरि माना है, क्योंकि क्षमा अमर और अमूर्त है। वास्तव में कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, हमारे अशुभ कर्मों का फल ही हमें दुख देता है। अतः क्षमा सर्वश्रेष्ठ है। चाहे सैकड़ों उपवास करो, हजारों जप करो, लाखों स्रोत पढ़ो और करोड़ों बार परमात्मा का नाम लो, लेकिन यदि मन में क्षमा का भाव नहीं है तो इन सब कर्म कांडों के बावजूद भी हम स्वयं की आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकते। इसीलिए कहा गया है, तीर्थाभिषेकम जप होम दयोपवासम ध्यानम व्रताध्ययनम संयम दान पूजा नेहक फलम जगति देहवताम ददन्ति भाद्रग्देव निखिल काल हितो ददाति। अर्थात जिस उत्तम फल की प्राप्ति क्षमावान को होती है क्रोधी मानव को नहीं हो सकती। क्रोधी व्यक्ति के जप तप तीर्थ दान पूजा पाठ आदि उत्तम कार्य भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए क्रोध का दमन कर उत्तम क्षमा को धारण करना ही मानव का प्रथम धर्म है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय था उत्तम क्षमा धर्म। आलेख और वाचन नीरज जैन का था। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

पुत्र व्यूह की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं, जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं

कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

अभी आप सुन रहे थे सतीश पाठिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था वाणी जयराम और रविंद्र साठे ने। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

से कुछ देर बाद यानी 6:50 पर कार्यक्रम खेती की बातें में हमारे श्रोता जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय रहेगा नेडब कंपोस्ट बनाने की विधि एवं लाभ, और विशेषज्ञ होंगे विजय सिंह नौलखा। 7 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से। ३३ मिनट का समय रहेगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे। आज विषय रहेगा श्रृंगनाथ मंदिर वृंदावन। आलेख प्रोफेसर गोविंद शर्मा का होगा और प्रस्तुति होगी आर के त्रिपाठी की। 8:30 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ फिल्मी नगमों का। 9 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे हिंदी वार्ता। भारतीय संस्कृति में उत्सव धर्मता, वाचन डॉक्टर नीलम अग्रवाल का होगा। और 9:25 का समय होगा कार्यक्रम आबोहवा का। आज का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण हेतु कचरा प्रबंधन। आलेख और वाचन होगा डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव का। और 9:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम में बातचीत। वायरल बुखार कारण लक्षण एवं निदान, वार्ताकार डॉक्टर भारतीगर, और आपसे भेंट करेंगे विजय सिंह नौलखा।

जी हमारे श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी और 12 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। बजकर 30 मिनट पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे ब्रजलोकगीत कार्यक्रम में रांझा गायन का। कलाकार होंगे भगवान दास अज्ञानी,

1:15 का समय रहेगा बहनों का कार्यक्रम वंदिता लोग। आज की चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, साथ ही चर्चा का विषय रहेगा दूरदर्शन दिवस और ऋषि पंचमी। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता और कुछ घरेलू टिप्स जानकारी। 2:30 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, आज हम नेडप कंपोस्ट बनाने की विधि तथा उससे होने वाले लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। ये विधि श्री नारायण राव पांडरी पांडे यानी नाडेप काका निवासी ग्राम पुसाद जिला यावतमल महाराष्ट्र द्वारा यह विधि विकसित की गई है। इसमें ईंटों का एक ढांचा बनाते हैं जिसका आकार 10 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा तथा 3 फीट ऊंचा होता है। ढांचे की जुड़ाई पक्के गारे से की जाती है ताकि ढांचे का प्रयोग लंबे समय तक किया जा सके। इसकी दीवारों में कुछ छेद छोड़े जाते हैं ताकि समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर पानी का छिड़काव किया जा सके तथा वायु संचार भी अच्छा होता रहे। इस ढांचे के अंदर खेत खलियान घर एवं रसोई से प्राप्त फसल अवशेष जिसमें गोबर पानी एवं मिट्टी की मात्रा के साथ इसे सड़ाया जाता है। इस विधि में सड़ी खाद बहुत उच्च गुणवत्ता वाली होती है तथा बेकार अनुपयोगी पदार्थ का भी प्रयोग हो जाता है। आप बात करते हैं ढांचा बनाने की विधि का। 9 इंच मोटी ईंट की चिनाई अभी बताई गई लंबाई एवं चौड़ाई के अनुसार बनाते हैं। प्रथम 3 पंक्तियों में कोई छेद नहीं छोड़ा जाता। चौथी छठी आठवीं दसवीं पंक्ति की चिनाई में 1 फुट के अंतराल पर 5 इंच चौड़ाई का एक छेद बनाते हैं। 11वीं 12वीं 13वीं पंक्ति में पुनः छेद नहीं छोड़े जाते। ढांचे के अंदर की जमीन को ईंट बिछाकर पक्का कर दिया जाता है। अब बात आती है ढांचा भरने की विधि और उसकी क्या सामग्री होनी चाहिए। तो सामग्री नोट करें, कचरा लगभग 20 से 25 क्विंटल, मिट्टी 5 से 10 क्विंटल, गोबर 3 से 4 क्विंटल, पानी की आवश्यकता पड़ेगी 800 से 1200 लीटर, PSB कल्चर के 4 पैकेट, एजोटोबैक्टर कल्चर के 4 पैकेट, गौमूत्र लगभग 10 लीटर, गुड़ की मात्रा रहेगी 2 किलोग्राम और राख करीब करीब 100 ग्राम। इसकी विधि बनाने की विधि इस प्रकार है, 40-50 किलोग्राम गोबर 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर ढांचे की तह पर डालें। इसके बाद 8 इंच मोटी कचरे की तह दबा दबा कर बिछाते रहें, फिर 30 से 40 किलोग्राम गोबर 100 से 125 लीटर पानी का घोल बनाकर इस कचरे के ऊपर डालें। इसके पश्चात लगभग 100 किलोग्राम मिट्टी को ऊपर से बिछा दें।

0: यह क्रिया ढांचे की ऊंचाई से लगभग 10 से 12 इंच ऊपर भरने तक दोहराते रहें। बाद में गोबर और मिट्टी की मोटी परत लगाकर ढांचे को ऊपर से बंद कर देते हैं। 70 से 80 दिनों बाद गड्ढे के ऊपर 15 से 20 छेद मोटे डंडे की सहायता से बना देते हैं तथा 10 लीटर गौमूत्र में पीएसबी कल्चर, एजेटोबैक्टर कल्चर के 2 पैकेट तथा 2 किलोग्राम गुड़ और 100 ग्राम राख को मिलाकर घोल तैयार कर लेते हैं। इस घोल को छेदों में डालकर छेदों को पुनः बंद कर देते हैं। इसके पश्चात 30-40 दिन बाद खाद तैयार हो जाती है। इस प्रकार एक बार की खाद 100 से 120 दिन में पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। 100 से 120 दिन के बाद खाद को निकालकर छन्नी में छान लेते हैं तथा बगैर सड़े पदार्थ को अलग कर देते हैं और किसी छायादान स्थान पर खाद को ढककर रख देते हैं। बगैर सड़े पदार्थ को पुनः भराई का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार एक बार में करीब 30 क्विंटल के लगभग अच्छी सड़ी हुई खाद प्राप्त होती है। वर्ष में 3 बार भराई करने के बाद लगभग 100 क्विंटल खाद प्राप्त हो जाती है। खाद प्रयोग की मात्रा और विधि के लिए कृपया नोट करें। दलहनी और तिलहनी फसलों में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, गेहूं धान में 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सब्जी वाली फसलों में 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खाद प्रथम जुताई के समय मिट्टी में मिलाकर देवें। किसी भी एक खेत में लगातार 3 वर्ष तक इस खाद का प्रयोग करते हुए फसल चक्र के सिद्धांत का पालन किया जाए तो प्रथम वर्ष में रासायनिक उर्वरकों की मात्रा का 50%, द्वितीय वर्षों में 75% तथा तृतीय वर्ष यानी 3 वर्षों के बाद 100% प्रयोग बंद किया जा सकता है और भरपूर उपज प्राप्त हो सकती है।
1: अभी आप खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विषय था नेटअप कंपोस्ट बनाने की विधि एवं लाभ और विशेषज्ञ थे विजय सिंह नौलखा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

और आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म आराधना से। आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की।

मन्ना डे और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म स्त्री 420 में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों को। फिल्म का नाम है 9-2-11।

मंगेशकर के गाए फिल्म मुगले आजम के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की। 400 राज्य विधि अधिकारियों को दिया जाएगा टैबलेट। लोकायुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा जन विश्वास पर खरा उतरना लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपेल अलुपो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की खूबसूरती और स्थापत्य कला को सराहा। और हिंदी दिवस पर सर्वोच्च न्यायालय ने की जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। इसका लाभ हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की ओर से कल आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने 400 राज्य विधि अधिकारियों को आधुनिक तकनीक

0: से जोड़ने के लिए टैबलेट देने की घोषणा भी की।
1: आधुनिक तकनीक आज की आवश्यकता है, जिससे उन्हें जानकारी मिल सके कि कौन से शासन से जुड़े हुए मामले माननीय न्यायालय के पास आ रहे हैं। इसके लिए 400 ऐसे राज्य विधि अधिकारियों को हम लोग टैबलेट की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, और जो यहाँ पे सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उन सभी अधिवक्ताओं को हम लोग कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष, कैशलेस की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा भी उपलब्ध करवाने के लिए यह भी हम यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रदेश के लोकायुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। लखनऊ में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त प्रशासन की स्मारिका और सूचना पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन विश्वास पर खरा उतरना लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी होती है।
1: लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वह किसी भी संवैधानिक संस्था में एक सामान्य नागरिक का विश्वास। गुड गवर्नेंस एक पब्लिक ट्रस्ट पर निर्भर करता है। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं पर उसी विश्वास के साथ गौरव की अनुभूति कर सके।
0: प्रदेश में ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC को लेकर कल लखनऊ में 35 जिलों के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों और FLC सुपरवाइजरों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री रिडवा ने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग आगामी चुनाव की तैयारियों का पहला महत्वपूर्ण चरण है।
2: इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि अब यहाँ से जाने के बाद उसी मोबाइल इन जिलों में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं जिससे चुनाव होता है उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC शुरू हो गई। फर्स्ट लेवल चेकिंग पहला कदम है चुनाव की तैयारी का, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सवाल है। एक एक मशीन का चाहे कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो या वीवीपैट हो, जो इंस्पेक्शन टेक्निकली देखा जाएगा सारे पैरामीटर्स सही है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके तहत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण के म्यूल अकाउंट अथवा साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने भारत आई युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपेल अलुपो ने कल आगरा में ताजमहल का दीदार किया। एक रिपोर्ट।
3: युगांडा के उपराष्ट्रपति के आगरा पहुंचने पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युगांडा की उपराष्ट्रपति ताजमहल परिसर पहुंची, जहां उन्होंने स्मारक की खूबसूरती को निहारा और डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। इस दौरान गाइड ने उपराष्ट्रपति को ताजमहल के इतिहास, स्थापित कला और संगमरमर पर की गई बारीकी पच्चीकारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने ताजमहल की खूबसूरती और स्थापित कला की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति के आगरा दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से शुरू हो रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत उनकी कर्मभूमि वाराणसी से लेकर उनकी जन्मभूमि वडनगर तक की सेवा यात्रा निकलेगी। यह जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत जोशी ने कल वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि सेवा यात्रा का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा। यात्रा के दौरान पौधरोपण, स्वच्छता अभियान, लाभार्थियों से संवाद, अस्पतालों में फल वितरण, पोषण किट वितरण और क्षय रोग उन्मूलन से जुड़े सेवा कार्य किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल

0: सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है।
1: इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह पहल लोगों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। इससे वे महत्वपूर्ण फैसलों, उनके प्रभाव और आगे की कार्रवाई को अपनी परिचित भाषा में आसानी से समझ सकेंगे। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। इससे हजारों की आबादी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रदेश सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल मऊ के मधुबन और दुबारी क्षेत्र में बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों का हाल चाल जाना और उन्हें राहत सामग्री प्रदान की। शाहजहांपुर में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने जलालाबाद विधायक हरि प्रकाश वर्मा के साथ बाढ़ प्रभावित ग्राम कसारी का निरीक्षण किया। उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक आशुतोष शुक्ला ने कल 90 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। फतेहपुर की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वस ने कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों बड़ाहार, सदनापुर एवं बिंदकी फार्म का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है।
2: यहाँ पे जिला प्रशासन सतर्क है और कॉन्स्टेंटली वाटर लेवल्स को मॉनिटर कर रही है और कैसे लोगों में प्रॉपर सुविधा पहुँचाई जा सके और कैसे लोगों को कोई असुविधा ना हो उसका पूरा ध्यान रखना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 सितंबर तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की। 400 राज्य विधि अधिकारियों को दिया जाएगा टैबलेट। लोकायुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा जन विश्वास पर खरा उतरना लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपेल अलुपो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की खूबसूरती और स्थापत्य कला को सराहा। और हिंदी दिवस पर सर्वोच्च न्यायालय ने की जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे

0: 何かと言われちゃったピーチとあげばなんじゃったというとおりにクリーチじゃなくて APC にあったすかな。यदि युवा को ही रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, युद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त, यातायात नियमों का करे पालन, कभी ना करे उनका उल्लंघन, यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक, जब भी आप चलाएं कोई वाहन ध्यान रखें, करे नियमों का पालन।
1: FM 102

ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनने बारे हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, वंदे ब्रज वसुंधराम। ब्रज की आप पावन धरा को नमन करें, वंदन करें। और सबसे पहले आपको सुनमा में प्रोफेसर गोविंद शर्मा को लिखो यह रूपक ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे। प्रसंग है श्रीरंगनाथ मंदिर वृंदावन, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की है।

ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे क्रम के अंतर्गत आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र द्वारा तैयार रूपक सुनिए श्री रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन। आलेख है प्रोफेसर गोविंद शर्मा का, संयोजक है श्री कृष्ण शरद और प्रस्तुतकर्ता है रामकिशोर त्रिपाठी।

0: हम इस समय श्री राधा कृष्ण की रसमयी क्रीड़ा भूमि वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर के समक्ष खड़े हैं। मथुरा से वृंदावन आने वाले राजमार्ग पर ये श्री रंग मंदिर का पश्चिमी द्वार है। इसे सिंह द्वार भी कह सकते हैं। ये मंदिर है उत्तर भूमि में दक्षिण की पौध।
1: मुख्य द्वार को सिंह द्वार ही तो कहते हैं।
0: ठीक है, किंतु यह मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार है। सिंह द्वार मैंने इसलिए कहा कि इसके दोनों ओर दीवार के ऊपर पाषाण खंडों में जीभ लपलपाते खड़े सिंहों का अंकन है।
1: वाह, कितना सुंदर है, ये तो मैंने अब देखा है। चलिए अंदर चलें। मंदिर के विशाल मुख्य द्वार की सीढ़ियों से पहले बाईं ओर ये एक सुंदर स्मृति स्तंभ बना है।
0: हाँ, अब दुर्ग जैसे दीर्घ और विशाल मंदिर, उसके कलात्मक भव्य द्वार को ध्यान से देखिए। पाषाण निर्मित प्राचीरें दुर्ग की दीवारों का सा आभास दे रही हैं। इनके चारों कोनों पर गोल बुर्जियां बनाई गई हैं, जिन पर भगवान नारायण के वाहन गरुण की सुंदर प्रतिमाएं सुशोभित हैं। तोपों के स्थान पर वैष्णवता के प्रतीक गरुण मूर्तियां।
1: सफेद पत्थरों से बना ये चौखंडियोंदार विशाल द्वार भी मथुरा की स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। इसे ब्रज की कला भी कह सकते हैं। भरतपुर के राजाओं द्वारा निर्मित कराए भवनों में यही सुंदर नक्काशी और सघन बेलबूटे दिखाई देते हैं, जो लता कुंज होने का सा एहसास कराते हैं।
0: सत्य है, तीन मंजिलों का बुर्जियों और छतरियों वाला ये द्वार 93 फुट ऊंचा है, जो किले जैसे प्रागार के अनुपात में सर्वथा समुचित है।
1: परंतु इसमें दक्षिण भारतीयता कहाँ है? ये मेहराबदर जो द्वार है, ये तो मुस्लिम कला है।
0: अभी प्रवेश द्वार से भीतर तो चलें। इस मंदिर में एक के भीतर दूसरी इस प्रकार 7 परिक्रमाएं बताई जाती हैं। अब हम पहली परिक्रमा में प्रवेश कर रहे हैं। ये सामने दूसरी परिक्रमा का प्रवेश द्वार देखें, फिर अन्य परिक्रमाओं में चलेंगे। इन्हें दिव्य या पवित्र देश कहते हैं।
1: अरे ये देखिए, इसके आगे खड़े होकर तो ऐसा लगता है जैसे हम दक्षिण में श्री रंग मंदिर में ही हों। शुद्ध हिंदू स्थापत्य कला का विशाल द्वार, उसके ऊपर 7 मंजिल का गोपुर जिस पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। ये तो एकदम विरोधाभासी दृश्य है।
0: दिव्य देश के बाहर इस प्रथम परिक्रमा में प्रवेश द्वार के दोनों ओर विद्युत चालित रामलीलाएं और कृष्ण लीलाएं हैं, जो आमदनी बढ़ाने को लगाई गई हैं। नमस्कार प्रोफेसर साहब।
2: नमस्कार। अचानक आप यहाँ, क्या दर्शन यात्रा का कार्यक्रम बन गया?
0: जी हाँ, आपके दर्शन पहले ही हो गए, अब तो आप ही हमें इस महान मंदिर के दर्शन कराएं तो बड़ी कृपा हो। आपको वृंदावन के मंदिरों की विशेष जानकारी भी तो है।
2: अच्छा, ऐसी बात है, चलिए तो आइए, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर।
0: धन्यवाद। कहिए किधर से चलें? 775 फीट लंबा और 450 फीट चौड़ा मंदिर थका तो ना देगा?
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आइए क्रम से परिक्रमा करते हुए दाहिनी ओर से चलें। ये पहली परिक्रमा है जिसमें निवास गृह है, इसलिए जूते पहनकर और अन्य सामान लेकर घूमा जा सकता है।
1: अच्छा।
2: दूसरी परिक्रमा यानी दिव्य देश में जूते, मोजे, छाते, छड़ी, हथियार, चमड़े की कोई भी वस्तु का निषेध है।
1: अरे यहाँ तो हर घर के आगे अल्पना बनाई गई है।
2: जी हाँ, भगवान गोदा रंग मन्नार की सवारी जब दिव्य देश के बाहर पधारती है तो उनके स्वागतार्थ गृहणियां ये अल्पना बनाती हैं।
1: भगवान गोदा रंग मन्नार? किंतु मंदिर तो श्री रंगनाथ जी का है।
2: जी, रंग मन्नार और श्री रंगनाथ जी एक ही तो हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: तमिल भाषा में मन्नार का अर्थ है दूल्हा। इन्हें गोदाम्बाजी का दूल्हा माना जाता है, जैसे रसोपासक संप्रदायों में श्री राधा कृष्ण को।
1: अच्छा अच्छा, तो इसके पीछे कोई इतिहास या कथा भी है क्या?
2: हाँ, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य से पूर्व 6वीं-7वीं सदी में दक्षिण के आलवार संतों ने विष्णु भक्ति का प्रभुत प्रचार किया था।
0: इसीलिए भक्ति को द्रविण देश में उत्पन्न होने वाली कहा गया है। उत्पन्ना द्रविणे स्वाहम, हिंदी में भक्ति द्रविण उपजी प्रसिद्ध है।
2: इन 12 आलवार संतों में साक्षात शरीर धारणी भक्ति स्वरूपा थी गोदा आलवार। श्री रंगनाथ के सेवक स्वामी विष्णुचित अलवार को यह सुंदर सुकुमार कन्या अपनी तुलसी वाटिका में प्राप्त हुई थी,
1: जैसे महाराजा जनक को सीता जी की प्राप्ति हुई थी। तुलसी का वन तो वृंदावन कहा जाता है।
2: सत्य है, ये बाल्यकाल से ही स्वयं को व्रज गोपिका मानकर श्री रंगनाथ के कृष्ण रूप के अनुराग में पूरी तरह रंग गई थी।

0: रंगनाथ भी उनसे इतना प्रेम करते थे कि उनकी पहनी हुई पुष्पमाला को बड़ी प्रीति से धारण करते थे। दोनों की प्रगाढ़ प्रीति के कारण इनको आंडाल कहा जाने लगा, समझे?
1: अच्छा, आंडाल भी शायद तमिल भाषा का शब्द है।
0: जी हाँ, इसका अर्थ है प्रेम का निर्वाह करने वाली।
1: अत्यंत उपयुक्त उपनाम है। क्या उन्होंने प्रमोदगार अभिव्यक्त भी किए थे?

0: उद्गार अभिव्यक्त भी किए थे।
1: जी हाँ, गोदाम्बा ने तिरुधावय तथा नाच्या तिरुमौली नामक ग्रंथ द्वय में अपने अनुराग का अमृत संरक्षित कर दिया है। जब वे श्याम सुंदर के विरह में बहुत व्याकुल हो गईं, तो अपने साथ विवाह के लिए उन्हें दहेज का लालच देने लगी।
2: भगवान को लालच, और वो भी दहेज का? क्या था वो दहेज?
1: और कुछ नहीं, बस उनकी प्रिय वस्तु ताजा मक्खन और खीर।
0: अर्थात
1: गोदाम्बा कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, तुम मेरा पाणी ग्रहण कर मेरे साथ विवाहोत्सव रचाओगे तो मैं तुम्हें दूध चावल गुड़ से बनी 100 घड़े खीर और माखन के 100 मटके अर्पित करूंगी।
2: फिर क्या हुआ, भगवान पिघले भी या नहीं?
1: क्यों नहीं, श्री रंगनाथ ने पुजारियों को स्वप्नादेश दिया कि गोदा अंडाल का विवाह उनके साथ किया जाए।
0: तब तो बड़े आनंदोत्सव से बहार रचाया गया होगा।
1: जी हाँ, विवाहोत्सव के बाद गोदा देवी श्री रंग मंदिर में जैसे ही शेष शैया पर आरूढ़ हुई, एक दिव्य ज्योति कौंधी जिसकी प्रभा से गर्भगृह आलोकित हो गया। नेत्र स्थिर होने पर लोगों ने देखा तो अंडाल वहां नहीं थी।
0: यानी वे भगवान में लीन हो गईं?
1: जी हाँ, वे अपने रंग मन्नार से एकाकार हो गईं। उनका विवाहोत्सव इस मंदिर में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन धूमधाम से मनाया जाता है।
2: तब तो रंगनाथ 100 घड़े खीर और 100 घड़े मक्खन से वंचित रह गए होंगे।
1: वंचित तो नहीं रहे, परंतु प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ी।
2: अच्छा,
1: 11वीं शताब्दी में आचार्य रामानुज ने अंडाल की जन्मभूमि तिरुवल्लीपुत्तूर की यात्रा की और गोदाम्बा की इच्छा जानकर उसकी पूर्ति हेतु तिरुमालिरु न्योले गांव में श्री सुंदर बाहु भगवान को 100 घड़े गुड़ खीर तथा 100 घड़े नवनीत अर्पित किया। बड़े भाई की भांति गोदा की इच्छा पूर्ति करने के कारण श्री रामानुजाचार्य को गोदा ग्रज भी कहा जाता है।
0: वाह, क्या अद्भुत आख्यान है। हम तो समझते थे कि यहाँ श्री रंग लक्ष्मी के दर्शन होंगे, परंतु हैं श्री गोदा रंग मन्नार।
1: जी हाँ, ये रंग मन्नार भी चतुर्भुज नारायण नहीं, गोप वेशधारी श्री कृष्ण है, जिनके एक हाथ में मुरली है। श्री रंग देशिक जीवन चरित्र नामक लघु पुस्तिका में लिखा है कि श्री गोदाम्बा जी ने वृंदावन में यमुना तट पर वास की कामना की थी, जिसकी पूर्ति श्री रंग देशिक स्वामी ने की।
2: ये श्री रंग देशिक स्वामी कौन थे?
1: दक्षिण में कांचीपुरम के निकट अग्रम नामक गांव में एक पंडित परिवार में सन 1809 में श्री रंग देशिक जी का जन्म हुआ था। किशोरावस्था में उन्हें बारम्बार स्वप्नादेश हुए कि वे उत्तर भारत की यात्रा करें, वही उनका भाग्योदय होगा। तो वे परम विद्वान प्रतिवादी भयंकर श्री निवासाचार्य जी के साथ यात्रा करते हुए किशोरावस्था में ही गोवर्धन पहुंच गए, जहां श्री संप्रदाय की प्राचीन गद्दी थी।
0: अच्छा, इस मंदिर के स्वामी महंत जी भी तो श्री गोवर्धनाचार्य पीठाचार्य कहे जाते हैं।
1: जी हाँ, बताता हूं। उस समय वहां के महंत श्री निवासाचार्य जी थे, जिनसे वो इतना प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बनकर गोवर्धन में ही रहने लगे। श्रीनिवासाचार्य जी भी उनकी प्रतिभा को पहचान गए। उन्होंने श्री रंग देशिक जी को संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने काशी भेज दिया।
2: क्या शिक्षा प्राप्त करके श्री रंग देशिक जी पुनः गोवर्धन लौटे थे?
1: जी हाँ, उन्होंने विविध शास्त्रों विशेषकर श्री संप्रदाय के ग्रंथों का गहन अनुशीलन किया। उनके शास्त्र ज्ञान एवं पांडित्य की दूर दूर तक धाक थी। श्री निवासाचार्य जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। राजे महाराजे और सेठ साहूकार उनके शिष्य सेवक बन गए।
0: अच्छा सर, ये मंदिर तो मथुरा के सेठ लक्ष्मीचंद्र के नाम से प्रसिद्ध है।
1: हाँ, है तो सही, किंतु सेठ लक्ष्मीचंद्र श्री रंग देशिक स्वामी के शिष्य नहीं थे। वो और सेठ परिवार जैन मतावलंबी थे।
2: अगर वो जैन मतावलंबी थे तो उन्होंने ये मंदिर कैसे बनवाया?
1: इसका भी एक रोचक इतिहास है। सेठ लक्ष्मीचंद के 2 छोटे भाई सेठ राधाकृष्ण और गोविंददास स्वामी जी के श्रद्धावान शिष्य बन गए।
0: अब सर, एक बात यह आती है कि अगर उन्होंने ये मंदिर बनवाया परंतु नाम हुआ उनके बड़े भाई सेठ लक्ष्मीचंद्र का।
1: ये बात भी ठीक है और गलत भी।
0: वो कैसे?
1: ऐसे कि सेठ राधाकृष्ण और गोविंददास के मन में प्रेरणा हुई कि गोवर्धन के अलावा वृंदावन में भी श्री संप्रदाय का एक बड़ा स्थान बनाया जाए। उन्होंने अपने गुरुदेव श्री रंग देशिक स्वामी से प्रार्थना की तो स्वामी जी ने उन्हें यहाँ दक्षिणी

0: शैली का एक विशाल मंदिर बनवाने की सलाह दी,
1: जिसका मूर्तिमान स्वरूप है ये अद्वितीय देवालय।
0: दोनों सेठ भाइयों की प्रार्थना पर स्वामी रंग देशिक जी ने दक्षिण भारत में जाकर श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा अनुसार दक्षिणायत्य वास्तु शैली पर आधारित एक विशाल मंदिर का मानचित्र बनवाया, देव विग्रहों के निर्माण की व्यवस्था की और दक्षिणी वास्तुविदों तथा राज कारीगरों को साथ लेकर वो गोवर्धन आए।
2: गोवर्धन आए? पर सर, मंदिर तो यहाँ वृंदावन में बनना था।
0: उसके लिए भी स्वामी जी का यहाँ रहना आवश्यक तो था ना। इसीलिए पहले उनके निवास के लिए गोवर्धन की तर्ज पर एक श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया गया।
2: अच्छा, तो वो मंदिर क्या आसपास में ही है?
0: हाँ, थोड़ी दूर पर गोपीनाथ बाजार में है। उस मोहल्ले का नाम ही रंगजी की छावनी पड़ गया है।
2: रंगजी की छावनी? क्या मतलब फौजी तर्ज पर छावनी?
0: जी हाँ, किसी अभियान के पहले जैसे फौज डेरा डालती है ना, वैसे ही स्वामी जी की सेना ने वहां डेरा बनाकर मंदिर का निर्माण आरंभ कर दिया। इस प्रकार स्वामी जी का स्थायी निवास वृंदावन में हो गया और यहीं श्री गोवर्धन पीठ भी।
1: ये देखिए, बातों ही बातों में हम कहां कहां की बातें करने लगे, जबकि बात तो सेठ लक्ष्मी चंद जी का नाम जुड़ने की चल रही थी।
0: हाँ, उसे फिर पकड़ते हैं। दोनों छोटे सेठ भाइयों ने सोचा था कि जैन मतावलंबी बड़े भाई शायद वैष्णव मंदिर के निर्माण हेतु धन व्यय करना पसंद न करें, समझे ना
1: जी।
0: तो उन्होंने सेठ लक्ष्मीचंद जी से छिपाकर धन देना चाहा। दक्षिणी हैदराबाद के धनी सेठ परम सुखदास पूरनमल से उनका हुंडियों द्वारा लेन देन चलता था।
1: अच्छा।
0: हैदराबादी सेठों का एक मुक्ताराम मथुरा में रहता था। उसके माध्यम से दोनों सेठ भाइयों ने यह व्यवस्था की कि मंदिर बनेगा तो हैदराबादी सेठों के नाम से, पर सारा धन सेठ राधा कृष्ण गोविंददास ही देंगे।
2: वाह, क्या जमाना था तब। धन कोई और दे और नाम हो किसी और का। आज तो एक छोटी सी प्याऊ बनाकर भी लोग बड़ा नाम खुदा देते हैं।
0: यही तो समय की बलिहारी है। इतने विशाल मंदिर में कहीं निर्माता का नाम अंकित नहीं। संवत 1901 में इस मंदिर के निर्माण का श्री गणेश हुआ। सैकड़ों राज मजदूर वास्तुविद 7 साल तक काम करते रहे। 30 लाख रुपए खर्च हो चुके थे, जिनकी हुंडियां हैदराबादी सेठों के नाम थीं, फिर भी मंदिर अधूरा ही था।
1: तो क्या इतने धन में पूरा मंदिर बन जाना चाहिए था?
0: जी हाँ, काम छिपाकर दूसरे के फर्जी नाम से किया जा रहा था। उसकी कोई जिम्मेदारी न थी, केवल धन लेना था। इससे कुव्यवस्था और पैसे का दुरुपयोग हुआ। चिंता के कारण दोनों भाइयों का खाना पीना छूट गया। जब सेठ लक्ष्मीचंद को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने हैदराबादी सेठों के मुक्ताराम से बैनामा अपने दोनों भाइयों सेठ राधाकृष्ण और गोविंददास के नाम कराया। मंदिर निर्माण की व्यवस्था ही नहीं संभाली बल्कि स्वयं मजदूरों के साथ लगकर तीनों भाइयों ने सेवा कार्य भी किया।
2: वाह, इसे कहते हैं भक्ति और श्रमदान।
0: श्री रंग देशिक स्वामी और सेठों के पारस्परिक सहयोग से संवत 1912 में श्री रंग मंदिर पूरा बन गया और उसमें दक्षिण से मंगाई गई प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो गई। पुजारी, अर्चक और रसोइये भी दक्षिण के ब्राह्मण नियुक्त किए गए। पूजा अर्चना भोगरा की सारी व्यवस्था दक्षिणायत्य ब्राह्मणों द्वारा वहीं की परपाटी से प्रारंभ की गई, जो 150 सालों से सुचारू रूप से संपन्न हो रही है।
1: ये तो बात हुई श्री रंगनाथ जी मंदिर के निर्माण की। अब जरा हमें ये भी बताइए कि क्या इस मंदिर की सेवा पूजा पद्धति वृंदावन के अन्य मंदिरों से अलग है?
0: जी हाँ, यहाँ नारद पांचरात्र के अनुसार पूजा सेवा की जाती है।
1: अच्छा।
0: जिसका श्री रामानुज संप्रदाय में प्रचलन है। भोगराग भी दक्षिणी व्यंजनों और वहीं की संगीत शैली में होता है। यूं समझिए कि ये उत्तरी सागर में एक दक्षिणी लघुद्वीप है, ब्रज में श्री संप्रदाय का श्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान।
1: अब चलिए मंदिर के मुख्य पुजारी श्री जगन्नाथ स्वामी जी से मंदिर की सेवा पद्धति के विषय में जानकारी लेते हैं।
3: नारद पांचरात्र आगम के अनुसार आराधन होता है, सुबह से लेकर के शाम तक। प्रातःकाल 5:30 बजे या 6 बजे मंगला होती है, मंगला आरती। इसके पश्चात यमुना जल से यमुना जल लाया जाता है,

0: यमुना जल आने के बाद में भगवान के आराधन वगैरह होते हैं सब मंदिरों में। आराधन के बाद में प्रबंध पाठ होता है, दिव्य प्रबंध पाठ कहते हैं इसको तमिल में, ये पाठ होता है, इसमें कम से कम एक घंटा रहता है। इसके बाद में भोग भोग आता है। भोग आने के बाद में
1: भोग में क्या क्या सामग्री श्री ठाकुर जी के सम्मुख अर्पित की जाती
0: है? अनुसार है, मौसम के अनुसार भोग लगता है। कभी दही भात गर्मी में और जाड़े में खिचड़ी पोंगल कहते हैं और मालपुआ इसका भोग लगता है। इसकी गोष्ठी होती है, भोग लगने के बाद में सब जनता जितने भी आ रहे हैं फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद में फिर भगवान के दर्शन करने वाले अंदर जा कर के अर्चना वगैरह कर सकते हैं। अगर कोई भगवान का अभिषेक पर्व वगैरह हो तो भगवान का अभिषेक होता है, भगवान लक्ष्मी जी का अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद में फिर भोग राजभोग लगता है। राजभोग में जो भी पोंगल या दही भात इसका भोग लग करके फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद में शयन हो जाता है।
2: अच्छा, क्या ब्रज संस्कृति का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा?
3: ऐसी बात नहीं है। श्री रंग देशिक स्वामी जी किशोरावस्था में ही ब्रज में आ गए थे और आजीवन गोवर्धन तथा वृंदावन में रहे। गोदाम्बाजी की ब्रज वृंदावन की अभिलाषा उन्होंने पूर्ण की तो ब्रज का प्रभाव कहाँ बचेगा? हिंडोला, होली, अन्नकूट आदि अनेक उत्सव हैं जो दक्षिण के मंदिरों में नहीं मनाए जाते परंतु यहाँ मनाए जाते हैं। ब्रज में बनने वाले अनेक व्यंजनों और पकवानों का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी के समक्ष उत्तर शैली का संगीत लोकगीत भी गाए जाते हैं।
4: क्या देव विग्रहों के श्रृंगार पर भी यहाँ का कुछ प्रभाव पड़ा है?
3: जी हाँ, श्री रंग मन्नार जब कृष्ण वेश धारण करते हैं तो काचनी और व्रज रत्न मुकुट में सुशोभित होते हैं। राजवेश में वे जामा, पटका, पगड़ी और जूते भी पहनते हैं। ये मंदिर तो सांस्कृतिक समन्वय का आदर्श उदाहरण है। जैन सेठ ने इसे बनवाया, स्थायी सेवा व्यवस्था की और उत्तर दक्षिण का संगम हुआ। व्रज संस्कृति ने तमिल संस्कृति का आलिंगन किया।
2: अच्छा, मंदिर की स्थायी व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया गया?
3: मंदिर के दैनिक और उत्सवों के व्यय के लिए सेठ लक्ष्मीचंद ने 33 गांवों की जमींदारी श्री रंगनाथ जी को अर्पित कर दी जो मथुरा और आगरा जिलों में अवस्थित थे। कुछ मकान जायदाद भी किराए की आमदनी के लिए लगा दिए गए। उस समय उस सब की लागत लगभग 45 लाख आई थी। इस सबको एक ट्रस्ट बनाकर स्वामी जी को समर्पित कर दिया गया। इतनी स्थायी आमदनी वाला देवस्थान उस समय कोई दूसरा नहीं था।
4: अच्छा,
3: श्री रंगनाथ को राजाधिराज ठाकुर कहा जाता था।
2: अच्छा सर, एक बात और बताइए कि क्या स्वतंत्र भारत में इसमें कोई अंतर आया या नहीं?
3: हाँ हाँ आया, जमींदारी समाप्त हो गई, सरकार ने वार्षिक एन्युटी निश्चित कर दी जो 55 वर्षों से एक से चली आ रही है, जबकि महंगाई प्रतिदिन बढ़ रही है।
4: तो फिर इतने बड़े मंदिर का दैनिक व्यय, उत्सव, मेले, सार संभाल आदि का खर्चा कैसे चलता होगा?
3: आप देख तो रहे हैं, टिकट लगाकर कुछ आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है, कुछ दान और भेंट में आ जाता होगा, बाकी स्थायी जमा मूलधन से निकाला जाता होगा।
4: श्री रंगनाथ मंदिर की व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं प्रबंधक श्री वीडी तिवारी।
5: यहाँ पर जो पुजारी है वो दक्षिण भारत के हैं, रसोइये जो हैं वो भी सब दक्षिण भारत के हैं, शेष कर्मचारी जो हैं वो उत्तर भारत के हैं। उसमें यहाँ पर भंडार पर कैशियर जिसे रोकड़िया कहते हैं मुनीम जी और भंडार गुमास्ता छाट गुमास्ता ये बैठते हैं। लगभग 157 कर्मचारियों को वेतन हर माह आहरित होता है।
3: देखिए, रंग मंदिर भी दो दो संस्कृत विद्यालय चला रहा है जिनमें एक माध्यमिक और दूसरा उच्च स्तर का है।
2: अच्छा
3: हाँ, चिकित्सालय में निःशुल्क औषधियाँ भी दी जाती हैं, अन्य पारमार्थिक सेवाएं भी हैं। और एक बड़ी बात यह है कि मंदिर में प्रतिदिन हजारों रुपयों का भोग लगाया जाता है जो कर्मचारियों और दर्शनार्थियों में वितरित कर दिया जाता है।
4: ये क्या, मंदिर में इतना सुंदर सरोवर भी बना है?
3: ये भी दक्षिणी देवालयों की विशेषता है।
4: अच्छा,
3: इस दिव्य देश में नित्य उत्सव और आनंद ही आनंद है। साल के 365 दिनों में लगभग 400 उत्सव।
4: 400 उत्सव?
3: हाँ, इनमें कुछ तो 10-10 दिन तक चलते हैं, जैसे पौष माघ में बैकुंठ उत्सव और चैत्र में ब्रह्मोत्सव। बैकुंठ उत्सव में श्री रंगनाथ प्रतिदिन रात्रि में बैकुंठ मंडप

0: में पधारकर अपने भक्त शठ को आलवार को विविध लीलाएं दिखाते हैं, जैसे धनुर्भंग, बकासुर वध, माखन चोरी, गोवर्धन धारण। तदनुरूप श्री गोदा रंग मन्नार की वेशभूषा बनाई जाती है। बहुत ही सुंदर उत्सव है।
1: और ब्रह्मोत्सव में क्या होता है?
0: वो इस देवालय का वार्षिक प्रतिष्ठा महोत्सव है।
1: अच्छा।
0: जो सबसे बड़ा मेला है, इसे रथ का मेला कहा जाता है। कुछ वर्ष पहले ये ब्रज का सबसे प्रसिद्ध मेला था, जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होते थे।
1: ऐसी ही एक तीर्थ यात्री से जब हमारी मुलाकात होती है तो बताती हैं,
2: मेरा नाम मोहिनी आचार्य है, मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
2: यहाँ के दर्शन करके इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ का मंदिर इतना सुंदर है, और यहाँ लग ही नहीं रहा कि ये ब्रज प्रदेश में मैं दर्शन कर रही हूँ। पूरा दक्षिण का सारा वातावरण पूरा दक्षिण का है, यहाँ के सेवा करने वाले कर्मचारी सब कुछ दक्षिण का जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का दर्शन करके।
0: लकड़ी का नक्काशीदार रथ तो इतना भारी, विशाल और ऊंचा है कि सारे उत्तर भारत में अद्वितीय है।
1: अच्छा।
0: जब उसमें चार विशाल सफेद घोड़े, पार्षद और सिंह सजाकर जोड़ दिए जाते हैं तो उसकी शोभा अद्भुत हो जाती है। उसे देखने लाखों स्त्री पुरुष आते हैं, दिन भर मेला रहता है।
1: इतने भारी और विशाल रथ को चलाया कैसे जाता है?
0: उसमें बहुत मोटे रस्से दोनों ओर बांधे जाते हैं, जिन्हें हजारों भक्त स्त्री पुरुष मिलकर खींचते हैं। इसी उत्सव में एक दिन रंगनाथ मोहिनी रूप धारण कर चांदी की पालकी में सवार होकर अपने भक्तों के घरों में पधारते हैं, जहां उनकी आरती भोग आदि होते हैं।
3: अभी आपने आनंद लियो रूपक श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे। आलेख प्रोफेसर गोविंद शर्मा को हो, प्रस्तुत करता है आर के त्रिपाठी और कार्यक्रम में संयोजक है थे श्री कृष्ण शरद। यही के संग आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। आप सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2,000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेनदेन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे।

0: सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेथकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
6: Given a choice, a judicial officer,
7: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी

0: निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिनभर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

0: एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नवभारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि में चित्रपट संगीत के कुछ नगमे। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनारी से, आवाजें हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि में चित्रपट संगीत के नगमों का, आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: जोकर।
1: अलका याग्निक, उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को फिल्म चौदहवीं के चांद में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और साथियों को। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म चोरी चोरी के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता। विषय है भारतीय संस्कृति में उत्सव धर्मिता और वाचन है डॉक्टर नीलम अग्रवाल का।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति शब्द जैसे ही कानों में पड़ता है, एक ऐसी अनूठी तस्वीर आंखों के सामने स्वतः आने लगती है, जिसमें एक विशेष तहजीब, एक शालीनतापूर्ण संवाद, अतिथि देवो भव का अत्यंत ही खूबसूरत भाव, इंसानियत, सेवा भाव, शांत स्वभाव, संस्कार,

वसुधैव कुटुंबकम की मधुरता, मान्यताएं, परंपराएं और भी न जाने कितने ही मानवीय मूल्यों को समेटे विविध आकर्षक रंग झलकते हैं। भारतीय संस्कृति न सिर्फ विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, बल्कि विश्व की महानतम संस्कृतियों में से भी एक है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण भारतीय सभ्यता व संस्कृति को दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान मिली हुई है। इस देश में जितनी अधिक जातियों व उपजातियों के लोग, विभिन्न धर्मों और मतों को मानने वाले लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग और विभिन्न रीति रिवाजों परंपराओं को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, निश्चित रूप से इतनी विविधता दुनिया के किसी भी अन्य देश में नहीं मिलती। इतनी विविधता के बावजूद भी जो एकता और सौहार्द हर भारतवासी के दिल में रहा है, वही इस देश की वास्तविक शक्ति है। भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता का जो रंग है, उसे और भी निखारने का काम करती है यहाँ की धर्म निरपेक्षता। भारत में न सिर्फ विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं, बल्कि भारत को विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली के रूप में भी पहचाना जाता है। न सिर्फ भारतीय साहित्यकारों, दार्शनिकों और विचारकों ने भारतीय संस्कृति की सराहना की है, बल्कि विश्व के महान विचारकों व साहित्यकारों ने भी भारतीय सभ्यता व संस्कृति का लोहा माना है। हमारे लिए ये अत्यंत गौरव की बात है कि मार्क ट्वेन जैसे महान साहित्यकार ने ये कहा कि भारत मानव जाति का पालना है, मानव वाणी का जन्म स्थान, इतिहास की जननी, किंवदंतियों की मातामही और परंपरा की महामातामही, मानवीय इतिहास की सबसे मूल्यवान और शिक्षाप्रद वस्तुएं भारत में ही निहित हैं। वास्तव में संस्कृति व सभ्यता में बहुत ही गहरा संबंध होता है। जो सुसंस्कृत है वही सभ्य है, और जो सभ्य है वही सुसंस्कृत है। यहाँ की कला, साहित्य, गीत संगीत, हस्तशिल्प, मेले आदि सभी मिलकर भारतीय संस्कृति को और भी अधिक समृद्धशाली बनाते हैं। वेशभूषा हो या खानपान, विविधता यहाँ भी बेमिसाल है। अपने सांस्कृतिक गीत संगीत के लिए तो भारत की विश्व भर में एक अलग ही पहचान है। फिर चाहे वो शास्त्रीय नृत्य कला में भरतनाट्यम हो, कथक या फिर कुचिपुड़ी हो, लोक नृत्य में पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान का घूमर, गुजरात का गरबा हो या फिर असम का बिहू नृत्य। यहाँ के उत्सवों और त्योहारों की विविधता भी बड़ी रोचक है, क्योंकि जितने उत्सव और त्योहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी अन्य देश में मनाए जाते हों। यहाँ वर्ष भर कोई न कोई पर्व या त्योहार चलते ही रहते हैं। अनेकता में एकता का आदर्श इन अवसरों पर खास तौर पर दिखाई देता है। ये पर्व हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी व सौहार्द के रंग तो भरते ही हैं, लेकिन प्रत्येक उत्सव या त्योहार का अपना धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक या फिर वैज्ञानिक कोई ना कोई विशेष महत्व अवश्य होता है। उदाहरण के तौर पर हम कुछ प्रमुख त्योहारों या पर्वों की बात करें, जैसे दीपावली, जो कि कार्तिक माह की अमावस्या को संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपों का ये पर्व हमें संदेश देता है कि हम अपने आसपास, यानी बाहर की तरह ही अपने अंदर भी अच्छाइयों का प्रकाश उत्पन्न करके अपने अंदर के अंधेरे को दूर करें। इसी प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार है, जो हमारी संस्कृति में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और भी मजबूती प्रदान करता है। लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े पर्व, चाहे महाशिवरात्रि हो या फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो या अन्य कोई भी धार्मिक पर्व, लोगों में सौहार्द की भावना बढ़ाते हैं और एकता की अनूठी मिसाल पेश करते हैं। शरद ऋतु में भी कई पर्व मनाए जाते हैं, जैसे अभी कुछ ही समय पहले मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। इस दिन लोग जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य आदि के माध्यम से सहायता करते हैं। भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है लोहड़ी, जो कि पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार है। यह माघ महीने में संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। आसपास के सभी लोग एक साथ मिलकर गीत संगीत और नृत्य के साथ मौज मस्ती करते हैं। शरद ऋतु में पर्वों की बात करते ही बसंत पंचमी का त्योहार जहन में आता है, जब हर तरफ बसंती छटा बिखरी नजर आती है। वो सरसों के पीले पीले लहलहाते खेत, गुनगुनी धूप और मंद मंद हवा में घुली मस्ती, यानी हर तरफ एक अत्यंत सुहावना दृश्य। बसंत का यह उत्सव ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती माँ की पूजा का पर्व है।

0: इसी प्रकार वैसाखी का पर्व है जो भारत में विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि इस समय खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है, जिसे देखकर किसान भाई खुशी से झूमने लगते हैं। इसका धार्मिक व साहित्यिक महत्व तो है ही, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है क्योंकि यह सौर वर्ष का प्रथम दिन होता है। प्रत्येक पर्व या त्योहार में कोई न कोई संदेश अवश्य निहित रहता है। अब दीपावली से पहले पड़ने वाले त्योहार दशहरा को ही लीजिए। सत्य व अच्छाई के प्रति हमारे विश्वास को और मजबूत करता है यह पर्व। हमेशा सत्य और अच्छाई की ही विजय होती है। दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला पर्व पोंगल हो या फिर केरल वासियों का प्रिय त्योहार ओणम हो, ये सभी हमें हमारी परंपराओं से, रीति रिवाजों से जोड़े रखते हैं। क्रिसमस का त्योहार हो या फिर ईद का, समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। फाल्गुन का महीना हो और पर्वों की बात हो तो भला रंगों के त्योहार होली को कौन भूल सकता है। भारत की होली तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। रंग, अबीर, गुलाल और मौज मस्ती से सराबोर कर देने वाला त्योहार होली। साथ में कहीं लाठियां भी होती हैं तो कहीं फूल भी। बिना किसी भेदभाव के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली के इस त्योहार को मनाते हैं। यह त्योहार भाईचारे और स्नेह का प्रतीक है। जहां इस त्योहार का पौराणिक महत्व है, वहीं इसका संबंध ऋतु से भी है। बसंत ऋतु का संदेश लेकर आने वाला यह त्योहार किसान भाइयों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आता है क्योंकि इस समय खेतों में उनकी फसलें जो लहराने लगती हैं। मित्रों, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन महत्व इस बात का है कि यह परिवर्तन कितना सकारात्मक है। भारतीय संस्कृति इसका एक जीवंत उदाहरण है। हमने आधुनिकता को अपनाते हुए समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन किया है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्धशाली बनाते हुए। भारतीय संस्कृति में रिश्ते हृदय की गहराई से सींचे जाते हैं, इसलिए इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए किसी एक दिन विशेष की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय संस्कृति में माता पिता के प्रति सम्मान, भाई बहन का प्रेम हो या पति पत्नी का संबंध, अन्य रिश्ते हो या फिर मित्रता का संबंध, कोई भी रिश्ता किसी एक दिन विशेष का मोहताज नहीं है। लेकिन पाश्चात्य जीवन शैली में इन रिश्तों के महत्व को बनाए रखने के लिए कुछ खास दिनों की जरूरत पड़ती रही है। कुछ हद तक भारतीय युवाओं में भी आज इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे आदि पर अपने माता पिता या मित्रों के प्रति मात्र कुछ उपहारों के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार मात्र कर देना। इसी प्रकार आजकल भारतीय युवाओं में वैलेंटाइंस डे का क्रेज देखा जा सकता है, जिसका जुनून रोज डे, चॉकलेट डे और टेडी डे से लेकर वैलेंटाइंस डे तक पूरे सप्ताह उन पर छाया रहता है। मित्रों, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसके प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति किसी एक दिन ही क्यों? प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से जीने की आजादी है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल तो रखना ही होगा कि हम दूसरों के तौर तरीकों को अपने मूल्यों और परंपराओं पर हावी ना होने दें। हमें जो अच्छा लगता है उसे हम जरूर अपनाएं, लेकिन अपनी विरासत को भुलाए बिना, क्योंकि जब हम अपने उच्च आदर्शों को विस्मृत करने लगते हैं तो वहीं से हमारे पतन की शुरुआत होने लगती है। पाश्चात्य संस्कृति उपभोक्तावादी सोच को बढ़ावा देती है। पाश्चात्य जीवन शैली सिर्फ बाजार को विकसित करने का एक माध्यम हो सकता है। हृदय की गहराई से पल्लवित होने वाले किसी भी रिश्ते को महंगे व आकर्षक उपहारों की आवश्यकता कतई नहीं होती। संस्कृति व सभ्यता के साथ चलकर ही प्रेम की जड़ों को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। कार्ड्स, फूल, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, ये सब भावनाओं को व्यक्त करने का सिर्फ एक माध्यम हो सकता है, लेकिन रिश्तों के फूल निश्चित रूप से तभी खिलते हैं जब उन्हें आत्मीयता का पोषण मिलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, विषय था भारतीय संस्कृति में उत्सव धर्मिता और वाचन स्वर था डॉक्टर नीलम अग्रवाल का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और इटावा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
2: कन्नौज जिले में गंगा, काली और ईसन नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन कड़ी नजर बनाए हुए है। हालांकि गंगा के जल स्तर में बीते करीब चार दिनों से बढ़त जारी है और गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय है। जनपद में 21 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं एवं चिकित्सकीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक एवं जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। तीनों नदियों के बढ़ते जल स्तर से जिले के लगभग 3 दर्जन गांव प्रभावित हैं, जबकि गंगा के जल स्तर से आधा दर्जन गांव कासिमपुर, बक्सीपुरवा, चौरा चांदपुर और गुमटिया जलमग्न हैं। गांव कासिमपुर में जलभराव के कारण ग्रामीणों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ के पानी से अब तक बड़े भूभाग पर धान और सब्जी की लहलाती फसलें डूब कर नष्ट हो चुकी हैं। कन्नौज जिले में मौसम में बदलाव के कारण विभिन्न रोगों, डायरिया, खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, खसरा, हैजा, दस्त एवं पेचिस से बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ जुट रही है। अकेले राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 2000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। कन्नौज जिले में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 8 अक्टूबर तक होगा। फिलहाल सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न पोषण जागरूकता एवं जन सहभागिता आधारित गतिविधियां जारी हैं। इस दौरान गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा बच्चों को भोजन में विविधता बनाए रखने, पर्याप्त प्रोटीन एवं आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति तथा संतुलित आहार के महत्व से संबंधित जानकारी दी जा रही है। कन्नौज जिले में प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जिले की 84 ग्राम पंचायतों में स्थापित डिजिटल लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, जिज्ञासा और स्व अध्ययन का नया केंद्र बनकर उभरी हैं। डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ रहा है तथा कठिन विषयों को सरल एवं रोचक ढंग से समझने में उन्हें सहायता मिल रही है। ग्राम पंचायतों

0: टेरी की पहल ग्रामीण एवं प्रसिद्धि विद्यालयों के विद्यार्थियों को डिजिटल युग की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कन्नौज जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम प्रगति पर है। जिले में 1,72,000 से अधिक परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 19,000 से अधिक महिलाओं को समूहों से जोड़ा जा चुका है। फिलहाल जिले में 10,580 समूहों से करीब 1,25,000 परिवार जुड़े हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। कन्नौज जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जनपद के 2 दर्जन गांव विकसित होंगे। योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित गांव के विकास पर 20 लाख रुपए खर्च होंगे। गांव के सुंदरीकरण और विकास के लिए शासन को 4,70,00,000 रुपए का प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा था। शासन ने प्रथम किस्त में जिले को 71,00,000 रुपए उपलब्ध करा दिए हैं। जल्द ही ग्राम पंचायतों के खाते खुलवाकर विकास कार्यों हेतु बजट उपलब्ध करा दिया जाएगा। कन्नौज जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल से करीब आधा दर्जन जनपदों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सेंटर पर इन दिनों अलग अलग सब्जियों की करीब 3,50,000 पौध तैयार है। किसानों की ओर से उपलब्ध कराए गए बीजों के द्वारा इजराइल की तकनीक से पौध तैयार की गई है। हालांकि सेंटर की ओर से भी उन्नत किस्मों की पौध तैयार की जाती है। तकनीकी तरीके से तैयार पौध द्वारा किसानों को बेहतर उत्पादन मिलता है। औरैया, कानपुर देहात, इटावा, हरदोई, फर्रुखाबाद समेत आसपास के जिलों के करीब 45 किसानों ने पौध तैयार करने के लिए अपने बीज सेंटर को उपलब्ध कराए थे। सेंटर इंचार्ज प्रवीण पटेल ने बताया कि सब्जियों की पौध तैयार होने में करीब 30 से 35 दिन का समय लगता है। इसके लिए पॉली हाउस का तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखना पड़ता है।
1: टमाटर है, शिमला मिर्च है, पतली मिर्च है, गोभी है, इन सब चीजों के पौधे हमारे पास तैयार हो रही है। किसान अगर अपना सीड दे रहा है तो 1 रुपया एक पौधे का हम उसे चार्ज करते हैं।
0: कन्नौज जिले में भारत सरकार की खेलो इंडिया खेलों के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने प्रयास तेज कर दिए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलों की अहम भूमिका होती है।
2: प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलों के तहत मुख्यमंत्री जी ने खेल के मैदान, मिनी स्टेडियम सारे विकसित किए हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए कोचेस की व्यवस्था, अखाड़ों की व्यवस्था, मैट की व्यवस्था, हमारे बच्चे आगे बढ़ के नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलें और हम लोग खेल को आगे बढ़ाएंगे।
3: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
4: इटावा में महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स स्टेडियम में कानपुर जोन की 28वीं अंतर जनपदीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र यमुना प्रसाद ने गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर खिलाड़ियों व अधिकारियों को संबोधित करते हुए DIG ने कहा कि खेल पुलिस बल में अनुशासन, टीम भावना, शारीरिक दक्षता एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उत्कर्ष प्रदर्शन एवं खेल भावना के साथ प्रतिभाग करने की शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में कानपुर जोन के 9 जनपदों में इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहगढ़, कन्नौज, जालौन, झांसी एवं ललितपुर की टीमों ने प्रतिभाग किया। इटावा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल की गर्ल्स अंडर 14 बॉक्सिंग टीम ने ईस्ट जोन CBSE बोर्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर पूरे जनपद का नाम रोशन किया। नेशनल के लिए क्वालिफाई अन्या यादव और बानी वर्मा का चयन अब CBSE नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन के लिए हो गया है। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक RKSD पब्लिक स्कूल कैथल हरियाणा में आयोजित होगी। इस शानदार सफलता पर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ ने छात्राओं को सम्मानित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने भी खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। उनके प्रोत्साहन से पूरे पुलिस परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। इटावा जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अवगत कराया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जनपद में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में बेटा बेटी को लेकर फैली कुरीतियों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाप्त करना, बेटा बेटी का भेद मिटाना तथा लिंगानुपात को बढ़ावा देना है। इटावा सफारी पार्क में विगत 1.5 माह से अधिक समय से उपचाराधीन शेरनी राधिका की 31 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 4:30 बजे मृत्यु हो गई थी। सफारी निदेशक अनिल पटेल के अनुसार दिनांक 8 जुलाई 2026 को शेरनी राधिका एवं अन्य शेरनी के साथ आपसी संघर्ष में घायल हो गई थी। सफारी प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी और विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार उपचार जारी था, परंतु 52 दिन के अथक प्रयास के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका और 31 अगस्त प्रातः 4:30 बजे उसने

0: अंतिम सांस ली। जनपद इटावा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की एक और बड़ी पहल सामने आई है। विकास खंड ताखा की ग्राम पंचायत बमनीपुर में जय माता दी स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित वाटर प्लांट तैयार पंचनद प्रेरणा जल बोतल का अनावरण जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल एवं मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा किया गया। समूह की संचालिका शिवा तिवारी के नेतृत्व में समूह की महिलाओं ने इस वाटर प्लांट की स्थापना की है। यहां स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल तैयार कर बोतल बंद किया जा रहा है। पंचनद प्रेरणा जल को बाजार तक पहुंचाने में समूह की महिलाओं के लिए स्वरोजगार और स्थायी आय के नए अवसर सृजित होंगे। इटावा जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अवगत कराया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कार्यक्रम जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला महिला चिकित्सालय में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 14 नवजात कन्याओं का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इटावा जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति वृक्षारोपण पर्यावरण समिति और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कूड़ा और मेडिकल वेस्ट निस्तारण में लापरवाही पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने कहा कि मेडिकल वेस्ट का इधर उधर फेंका जाना अत्यंत संवेदनशील है, इसके लिए निर्धारित वाहनों की नियमित व्यवस्था रूट और समय तय कर अस्पतालों को जानकारी दी जाए, लापरवाही पर कार्रवाई होगी। सीएचसी महिवा जसवंत नगर पीएचसी और जिला अस्पताल को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इटावा जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जीरो पॉवर्टी अभियान स्वच्छ भारत मिशन बीबी रामजी योजना गौशाला प्राकृतिक खेती एवं डिजिटल लाइब्रेरी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गोवंश सड़कों पर न घूमे, सभी गौशालाओं में दाना हरा चारा और भरण पोषण की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिलाधिकारी ने कहा कि चिन्हित परिवार जनपद के सभी निर्धन और वंचित हैं, इन्हें केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि बिजली पानी आवास स्वास्थ्य राशन सहित सभी योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इटावा में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजत सिंह जैन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। समस्त न्यायिक राजस्व एवं प्रशासनिक विभागों के सहयोग से कुल 1,254 वादों का निस्तारण किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
3: अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप जिस स्थान पे रह रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या इस तरह के जहां बच्चे रह रहे हैं मैस है, तो आप पाएंगे कि वहां कचरा निश्चित रूप से पहले की तुलना में ज्यादा हुआ है, क्योंकि ये जो कचरा निकल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकता पूर्ति है, तो कागज भी काम में आ रहे हैं, खाना भी काम में आ रहा है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो कचरा निकल रहा है वो सीधा गलियों में डाला जा रहा है। तो कचरा तो बड़ा है, लेकिन इस कचरे का प्रबंधन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, और जब प्रबंधन पूरी तरह से नहीं हो रहा है तो वो सड़ा गला कचरा पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। अब इतनी सारी जनसंख्या है तो कचरा भी अलग अलग तरीके का है, जब कचरा श्रोताओं अलग अलग तरीके का है तो उसका निस्तारण भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए। तो पहले तो हमें श्रोताओं ये जानना पड़ेगा, क्योंकि इस विषय के बारे में हम बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। हम पर्यावरण में वायु प्रदूषण की बात करते हैं, जल प्रदूषण की बात करते हैं, मृदा प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन कचरे से प्रदूषण हो रहा है इसके बारे में हमारी जानकारी अभी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम पहले ये जाने कि कचरा हो रहा है इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो सूखा कचरा जो कि कागज फाड़ रहे हैं फेंक रहे हैं उससे हो रहा है, या पेंसिल काम में ली फेंका, मतलब इस तरह से जो कचरा उत्पन्न हो रहा है सूखा कचरा जिसे हम कहते हैं, इस कचरे का उपयोग कबाड़ी कर सकते हैं। अगर आप इधर उधर नाली में फेंकने की बजाय किसी कबाड़ी को दे दे तो वो इसका शायद पुनर्चक्रण करके उपयोग कर लेगा। दूसरा कचरा जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये है गीला कचरा। गीला कचरा मतलब रसोइयों से निकलने वाली सब्जी का कचरा, सब्जी छिलके हमने करे, या जो भी कुछ खान पान की सामग्री से जो कचरा निकल रहा है, जो कि मुख्य रूप से घरों से निकल रहा है, मैस से निकल रहा है, होटल से निकल रहा है और हॉस्टल से निकल रहा है। तो ये कचरा क्या होता है, जब सड़ता गलता है, आपने अगर कभी गौर किया हो, आप श्रोताओं कभी ऐसे स्थान से गुजरे हो जहाँ मैस है, तो बाहर आप निकलेंगे तो अजीब सी गंध दुर्गंध आएगी। आप कारण क्या है कि वो जो गीला कचरा है उसमें जीवाणु बहुत जल्दी पनप रहे हैं। जब जीवाणु बहुत जल्दी पनप रहे हैं तो वो रोग का कारण पैदा कर रहे हैं, और रोग का कारण पैदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। तीसरा कचरा है संक्रमित करने वाला कचरा। ये जो संक्रमित करने वाला कचरा है ये बहुत ज्यादा

0: ज्यादा नुकसान हमारे समाज के लिए है। कैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास, क्योंकि जरूरतें बढ़ी हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ी हैं। जब श्रोता हूँ, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ने का मतलब है हॉस्पिटल्स का खुलना, डिस्पेंसरी का खुलना। तो जब इन हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी से जो कचरा निकलता है, कौन सा कचरा? डिस्पोजेबल सिरिंज का, रक्त का, रक्त संबंधी उनके जो अपशिष्ट थैली बैग वगैरह निकलते हैं, वो उनसे जो मानव ऊतक, मानव अंग निकलते हैं, वो सब इस कचरे में आते हैं। तो ये कचरा बहुत बीमारियों को पैदा करता है और एक संक्रामक रोगों का कारण बनता है। तो इसके प्रबंधन की भी बहुत आवश्यकता है। इसके बाद जो चौथा कचरा, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनके आवास संबंधी पूर्ति हेतु भी निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। तो निर्माण कार्यों में जो चीजें काम में आती हैं और बच जाती हैं, जगह जगह मलबे के ढेर लग जाते हैं, लोहे के ढेर लग जाते हैं, या जो कुछ भी निर्माण कार्यों में चीजें प्रयुक्त हो रही हैं, बाहर उनको डाल दिया जाता है। तो जब इनको डाल दिया जाता है तो ये कचरा भी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इस कचरे का पुनर्चक्रण करके हम इसको काम में लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं हो पाता, लेकिन जो गीला कचरा और डिस्पेंसरी से निकलने वाला कचरा है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो इन कचरों के निस्तारण की उचित व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी और हमें आसपास लोगों में ये संदेश पहुंचाना होगा कि जो गीला कचरा है इसका निस्तारण सही तरीके से करें। इसके लिए हम जो अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं वो ये, आसपास की जो कॉलोनी है वहां पर अगर कोई मैस है या हॉस्टल है तो वो मिलकर एक जगह उस कचरे को डालें और उस कचरे का उपयोग हम जैविक खाद या वर्मी कंपोस्टिंग में कर सकते हैं, ताकि कचरे का निस्तारण भी सही तरीके से हो जाए और साथ में उससे जो है जो हमें खाद मिलेगी वो भी पर्यावरण के हित में ही होगी। तो दोनों हमारे जो है इसके उद्देश्य सार्थक हो जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हमें जो है सफाई या कचरा निस्तारण की समस्या जो होगी वो भी सही ढंग से पूर्ति हो सकेगी उसकी भी। इसी प्रकार जो कागज या प्लास्टिक जो निकल रहा है, मुख्य रूप से कागज की अगर हम बात करें, आप और हम जो है बहुत कागज बर्बाद करते हैं, तो उस कागज के निस्तारण के लिए उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, उसकी हम वापस उसको गलाकर उसको वापस कागज बनाया जा सकता है, पुनर्चक्रण उसका किया जा सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हम करें और कचरे का वर्गीकरण करें, कचरा निस्तारण की वजह से उनमें आसपास के लोगों को जागरूक करें, थोड़ा सा हम संवेदनशील बने अपने प्रति, अपने वातावरण के प्रति, तो ये जो कचरा प्रबंधन है इसको किया जा सकेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था पर्यावरण संरक्षण हेतु कचरा प्रबंधन। आलेख और वाचन डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव का था। FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम में बातचीत। वायरल बुखार कारण लक्षण एवं निदान, वार्ताकार डॉक्टर भारती गर्ग आपसे भेंट कर रहे हैं। विजय सिंह नौलखा।
2: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साल के इस मौसम में यानी बरसात के मौसम में आम तौर पर एक इस तरह की बीमारी आती है जो साल दर साल आती रही है, जिसे हम वायरल बुखार भी कहते हैं। और आजकल अगर आप समाचार पत्रों में देखें या दूसरे मीडिया की रिपोर्ट्स में देखें, इस तरह के पेशेंट्स जो है बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास आ रहे हैं। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ डॉक्टर हैं डॉक्टर भारती गर्ग। और आज ये वायरल बुखार या डेंगू बुखार ये किस कारण होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसकी रोकथाम किस तरह से की जाए, इस विषय पर जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: तो जैसे डॉक्टर साहब आपने देखा है कि आमतौर पर हर साल बरसात के मौसम में बुखार आना एक सामान्य समस्या है। बुखार यूं तो स्त्री पुरुष बच्चे या किसी को किसी भी वक्त हो सकता है, वो एक लक्षण जैसा है। तो इस वक्त जो बुखार आ रहा है जिसे वायरल बुखार या डेंगू बुखार भी कह रहे हैं
3: जी,
2: तो ये किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं
3: जी? इस समय हर साल की तरह जैसे देखते हैं कि जब भी मौसम बदलता है और बरसात का मौसम आता है तो उस समय वायरल बुखार जो होता है वो अधिक मात्रा में अधिक लोगों में देखने को मिलता है। और इस बार भी बुखार वायरल है, लेकिन इस बार जो वायरस जो है वो एक खतरनाक बीमारी की तरह से लोगों में आया है। और वायरल डेंगू वायरस जिसको बोलते हैं, सामान्य भाषा में हम डेंगू बुखार भी बोलते हैं, साथ में चिकुनगुनिया बुखार है, साथ में इन्फ्लुएंजा बुखार है।

0: तो ज्यादातर जो बुखार है, डेंगू जो बुखार है, ये ज्यादा खतरनाक तरीके से लोगों के बीच में देखने को हमें मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बुखार है, लेकिन बुखार के साथ साथ कुछ परसेंटेज लोगों में ये जो हमारी मज्जा होती है, जो कि हमारे सभी प्रकार के ब्लड के कंपोनेंट्स को बनाती है, जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो इन लोगों में कुछ परसेंटेज लोगों में ये बुखार जो है प्लेटलेट्स को काफी कम कर देता है। वैसे ज्यादातर सभी लोगों में प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये इतने ज्यादा कम हो जाते हैं कि अगर समय रहते इनका सही तरीके से उपचार ना हो तो कई बार हमको डेथ भी देखने को मिली है।
1: जी,
0: तो जरूरी है कि हम इस बीमारी से जुड़े सभी पहलुओं के ऊपर एक बात करें, और जिससे कि पब्लिक को
1: थोड़ी सी
0: एक
1: अवेयरनेस होगी तो
0: अवेयरनेस
1: जानेंगे।
0: हो।
1: हाँ, तो डॉक्टर साहब ये बात बताइए, आपने बताया कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स इस रोग से पीड़ित आ रहे हैं और लगभग हर साल ही आते हैं, ये मौसम ही इस तरह का है कि इसमें ये बीमारी का प्रकोप सामान्यतः देखा जाता है,
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब इसका कारण क्या है, क्यों इस तरह की बीमारी इस वक्त हो रही है, क्या कारण है?
0: कारण इसका ये है कि ये जो बीमारी है, ये वायरस जो है, ये मच्छर मच्छर इसके वेक्टर है,
1: जी,
0: और मच्छर की एक प्रजाति होती है एडीज एजेप्टी। तो ये जो मच्छर है ये हमारे आसपास ही रहता है, और इस मच्छर की वजह से अगर ये मच्छर किसी व्यक्ति जो कि इस वायरस से ग्रसित है और उसको ये काटता है, तो ये इस बीमारी को दूसरे लोगों में ट्रांसमिट कर देता है।
1: जी,
0: और एक बार अगर ये एक मच्छर अगर इस वायरस से ग्रसित है, तो पूरे मच्छर की जितनी भी लाइफ है, ये हमेशा जब भी किसी को काटेगा, ये वायरस उस व्यक्ति के शरीर में छोड़
1: छोड़
0: देगा।
1: देगा।
0: तो हमको इसलिए, इस वजह से ये वेक्टर बॉर्न डिसीज है, इंसेक्ट बॉर्न डिसीज है। तो हमको इस समय सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो अपने आसपास के जो माहौल है उसको, वातावरण को स्वच्छ रखने में, और ये देखना है कि हमारे जो घर के ही अंदर, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधे हैं, हम उनमें पानी देते हैं और वो कई बार नीचे प्लेट भी लगा देते हैं जो पानी एकत्रित होता रहता
1: जी
0: है,
1: जी बरसात
0: तो
1: में पानी
0: बहुत
1: उसमें भर
0: मामूली बात
1: जाता है।
0: है। घर
1: जी
0: की छत पर टायर्स पड़े हुए हैं, पुराने हमने डाल रखे हैं, पुराने कुछ बर्तन हैं, चिड़ियों को पानी पिलाने के बर्तन हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जिनके
1: इसके
0: ऊपर
1: अलावा
0: शायद
1: भी
0: कभी हमारा ध्यान जाता हो,
1: जी,
0: उसमें ये मच्छर का ब्रीड करता है, ये लार्वा देता है, और इस वजह से न केवल बाहर, घर के बाहर, घर के अंदर भी ये मच्छर पनपता है और इस बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलाता है।
1: इसके अलावा भी डॉक्टर साहब, चूंकि बहुत सारे लोग कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं,
0: जी
1: उसमें पानी
0: बिल्कुल,
1: भर के चलाते हैं,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: वो पानी को मेरे ख्याल से उसी पानी को बार बार यूज करते रहते हैं, यानी और पानी डालते हैं, फिर वो पूरा खत्म नहीं हो पाता।
0: मौसम बदल जाता है
1: जी
0: तो उस समय शायद उस कूलर की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, पर वो
1: जी
0: पानी वहीं की वहीं रह जाता है, तो वो एक बड़ा जो है मच्छरों का एक पैदा होने का एक सोर्स बन जाता है।
1: यानी कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि ये मच्छरों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मतलब हमें ये जानना चाहिए कि कहीं पे भी पानी का रुकाव, यानी पानी इकट्ठा अगर कहीं हो रहा है तो उसको ना होने दें, क्योंकि वो मच्छरों के प्रजनन के लिए जरूरी है, मच्छर
0: जी
1: उसी से फैलते हैं, रुके हुए पानी को कहीं पे भी ना इकट्ठा होने दें। आप अगर बरसात के मौसम में पानी अगर आपके आसपास कहीं इकट्ठा होता है तो ये कोशिश करें, आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आपके ऊपर अगर कबाड़ में भी कुछ रखा हुआ है जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, उसे हटा दें, सफाई का ध्यान रखें। तो डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई कि भाई क्यों होता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को हो जाता है तो उसमें कौन कौन से मरीज को लक्षण देखने को मिलेंगे?
0: जी सबसे पहला जो लक्षण है वो बुखार आता है पेशेंट को, और ये बुखार भी बहुत तेज रहता है, जैसे 104 डिग्री तक भी
1: जी
0: बुखार हो जाता है, और साथ में इस बुखार के साथ साथ उसको सिर दर्द रहता है। सिर दर्द भी इस टाइप का रहता है कि आंखों के पीछे काफी दर्द महसूस होता है।
1: जी
0: इसके अलावा हाथ पैरों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द हो सकता है, इसके साथ में पेशेंट को उल्टी आ सकती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि इसको बुखार उतरता नहीं है, 2-3 दिन तक लगातार बुखार आता रहता है, और कुछ केसेस में शरीर पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं,
1: जी
0: तो इसको हम रैश बोलते हैं मेडिकल टर्मिनल्स में। और ये क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है कि

0: ये जो वायरस जब तेजी से शरीर में रेप्लिकेट करता है तो जो छोटी छोटी जो धमनियां होती हैं उसकी इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उस वजह से ये रैशेस बन जाती हैं। कई बारी नाक से खून आ जाता है, कई बारी मसूड़े में से खून आ सकता है, और कभी कभी जरा सा भी चोट लग जाए तो वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो
1: जी
0: ये इसके सामान्यतः इसके बुखार के लक्षण रहते हैं। और टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ज्यादातर देखा जाता है कि हमारे जो प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं WBC वो कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स जो बहुत जरूरी होते हैं कि हमारे जो खून है वो धमनियों में ही रहे, धमनियों से बाहर ना निकले, तो वो प्लेटलेट्स जो एक जरूरी फैक्टर है वो काफी कम होने लग जाते हैं। और कई बारी जब डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसको हम बोलते हैं या डेंगू शॉक सिंड्रोम जो उसकी डेंगू की सीवियर फॉर्म है, कॉम्प्लिकेशंस है, हालांकि ये बहुत 5% से कम ही लोगों में मिलती है, लेकिन जब ये हो जाता है तो पेशेंट का कई बार मृत्यु भी हो जाती है इसकी
1: जी
0: वजह से।
1: डॉक्टर साहब, आमतौर पे सुनने में आता है कि जो डेंगू या इस तरह के जो फीवर है उससे जो पेशेंट्स हैं उनमें क्रिटिकल स्टेज तभी बनती है जब उनके खून की जांच की जाती है और ये पाया जाता है कि प्लेटलेट्स बहुत कम है।
0: जी
1: तो इस तरह के मरीजों में आप क्या, जो मरीज हैं या जो श्रोता हैं हमारे, सावधानी के तौर पे उसे किस तरह से लें?
0: सबसे पहले तो सावधानी यही है कि जैसे बुखार आता है तो आप अपना खुद का खुद ट्रीटमेंट करना शुरू ना कर
1: जी
0: दें, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि लोग जो है ऐसे ही मेडिकल शॉप से दर्द निवारक दवाइयाँ या बुखार की दवाइयाँ ले लेते हैं, तो उसमें कुछ जैसे डाइक्लोफेनेक है या एस्पिरिन है, तो इस तरह की दवाइयाँ जब डेंगू का अगर वो पेशेंट को पता नहीं है कि उसको कौन सा बुखार है तो उसमें उस दवा को लेने से उसको और ज्यादा नुकसान हो सकता है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है।
1: जी
0: तो ज्यादातर सिंपली जो पैरासिटामोल जो एसिटामिनोफेन जो है सिर्फ वही लेना चाहिए और किसी भी प्रकार की दर्द निवारक दवा उनको नहीं
1: नहीं
0: लेनी
1: ले।
0: चाहिए। तो एक तो ये सावधानी उनको रखनी है, दूसरा ये है कि अगर उनका बुखार है तो उनको सबसे ज्यादा उनको घर में ही रह करके भी ज्यादातर ज्यादा पानी का सेवन या फ्रूट जूसेस हैं या अपने आप को डिहाइड्रेशन की स्टेज में नहीं लाना है, क्योंकि बुखार होता है तो नेचुरली उनका उल्टियां होती हैं तो पानी की कमी शरीर में हो जाती है,
1: जी
0: तो वो उनको प्रॉपरली रेस्ट करके आराम करना है और पानी की कमी पूरी तरीके से उनको करनी है। इलेक्ट्रोल या घर में ही नींबू पानी शिकंजी कुछ भी वो करके अपने को हाइड्रेट करके रख सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि अगर उनको लगता है कि अब उनको मेडिकल अटेंशन लेना है तो तुरंत उनको डॉक्टर के पास जाकर के अपनी जांच करवा के ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि उनको कौन सा बुखार है, सामान्य वायरस है या डेंगी है या चिकनगुनिया है या कोई और उनको मलेरिया वगैरह है।
1: हाँ, तो ये जो डॉक्टर साहब ने जो अंतिम बात कही है इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें खुद का इलाज खुद न करके एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जरूर समय रहते जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चूंकि ये इस वक्त तो काफ़ी फैल रहा है, ये न फैले इसकी रोकथाम के लिए आप जो हमारे जो श्रोता बंधु हैं इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: मेरी सलाह यही है कि चूंकि इस समय मच्छरों का भी पनपना ज्यादा है, तो जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको अपने घर के अंदर और घर के बाहर बिल्कुल ध्यान दे करके सफाई रखनी है। दूसरी चीज है कि अगर आप घर के अंदर हैं, क्योंकि ये वायरस जैसा मैंने बताया था कि जो ह्यूमन्स हैबिटेट के पास ही रहना पसंद करता है जो एडीज एजेप्टी है, तो
1: जी
0: आपको घर के अंदर मॉस्किटो रेपेलेंट्स आप यूज कर सकते हैं, और या फिर
1: मच्छरदानी लगाए तो?
0: मच्छरदानी आप अगर
1: जी
0: बाहर छत पर सोते हैं या तो वो आप लगा सकते हैं। और अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे बाहों के कपड़े आप पहनिए, पैंट पूरा पहनिए, पूरी आस्तीन की आप शर्ट पहनिएगा। कई
1: जी
0: बार तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपने पैंट भी पहना है तो उसको आप मोजे के अंदर डाल करके
1: जी
0: पहनिएगा, जिससे कि ये वायरस आपको न काट पाए। वजह इसकी ये भी है कि ये जो वायरस है ज्यादातर सुबह जल्दी सुबह या फिर शाम में ही ज्यादातर काटता है, हालांकि सारे दिन में कभी भी ये वायरस मच्छर
1: मच्छर
0: काट
1: से
0: सकता है आपको। तो ये चीज एक इस पर ध्यान देने की है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसा पानी का स्रोत है जो आप उसको नहीं ठीक कर सकते हैं तो उसमें आप मॉस्किटो इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो उसका छिड़काव जो है बहुत जरूरी है उसको
1: जी
0: करना है।
1: वैसे हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका, नगर निगम या दूसरे जो संस्थान है वो आजकल मच्छरों को भगाने के लिए छिड़काव भी करवा रहे हैं और

0: और फ्यूमिगेशन भी करवा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि जो हमारे श्रोता बंधु हैं उन्होंने जो विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे और इस रोग से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर भारती गर्ग जी, आप आज हमारे स्टूडियो में आए और आपने अच्छी जानकारी दी हमारे सुनने वालों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: स्वास्थ्य कार्यक्रम में बातचीत अभी सुन रहे थे।

स्वास्थ्य कार्यक्रम में बातचीत अभी सुन रहे थे हमारे श्रोता। वायरल बुखार कारण लक्षण एवं निदान, वार्ताकार थी डॉक्टर भारती गर्ग और आपसे भेंट कर रहे थे विजय सिंह नौलखा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है और आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गजलों में स्वर है गुलाम अली का। और जागते

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई गजल। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म दिल है तुम्हारा। और आइए सुनते हैं सोनू निगम को, फिल्म का नाम है साथिया।

अभी आपने सुना सोनू निगम को फिल्म साथिया में, और आइए सुनते हैं कविता सुब्रमण्यम और केके को। फिल्म का नाम है देवदास।

आशिकों में हम तो हैं इन्ने पलट पलट के यूं न दे मर जाए राहों में दिल वाले ऐसी नजर

என்று என்னும் மேகு பலட் பலட்கையும் நசே.

देख रहा है तुझ पे तो कोई ए पलट पलट के यूं न दे मर जाए राहों में दिल वाले ऐसी नजर से तू न दे तिरछी नजर से यूं न दे पलट पलट के यूं न दे मर जाए राहों में दिल वाले।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म एक फूल चार कांटे में, और आइए सुनते हैं अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है राज।

सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म दिल से मैं, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों को। फिल्म का नाम है शोर।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म शोर में, और आइए सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म वंदना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति संजय सारस्वत की है।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: कौन बोल रहे हैं?
0: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर।
1: विश्वकर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत
0: जी। धन्यवाद सर जी।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया सर जी, एकदम। आप कैसे हैं सर?
1: बहुत अच्छे हैं
0: जी सर। बहुत दिनों बाद कॉल लगी है सर
1: जी। जी, क्या काम करते हैं आप?
0: सर मेरा सिलाई काम, सिलाई करता हूँ।
1: अच्छा, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं लगातार?
0: बिल्कुल सर, सुनते हैं।
1: आपके व्हाट्सएप भी हमें खूब मिलते हैं
0: जी। जी सर
1: जी। और परिवार में सब लोग अच्छे हैं आपके?
0: सभी लोग कुशल हैं सर, आपकी दुआओं से।
1: आज बताइए, क्या फरमाइश है कार्यक्रम में?
0: आज सर राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत सुनना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
1: विश्वकर्मा जी, आपकी पसंद का गाना आइए सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: जी। नमस्कार सर।
1: नमस्कार। हेलो। नमस्कार
2: जी। नमस्ते, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागद, जिला उज्जैन से।
1: आपका स्वागत है प्रेम सिंह जी कार्यक्रम में।
2: जी थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, आप बताएं कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
1: जी जी
2: जी, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पे, कल अच्छी बारिश हुई थी।
1: अच्छा।
2: हाँ जी, और अभी सोयाबीन की फसल में काफी फायदा हुआ है पानी गिरने से।
1: बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा बरस रही है।
2: हाँ जी, जितना पानी बरसता है ना उतना अच्छा होता है सोयाबीन की फसल के लिए, और कुएं नदियां तालाब भर जाने की वजह से अगली सिंचाई के लिए मतलब किसानों को काफी फायदा होता है।
1: बढ़िया बात है
2: जी।
1: आज बताइए क्या पसंद रहेगी कार्यक्रम में?
2: जी, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी
1: जी,
2: और गाने के बोले आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और धन्यवाद आपका भी।
1: नमस्कार
2: जी। नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं गांव उत्पाद से ज्ञान सिंह बोल रहा हूँ सर।
1: ज्ञान सिंह जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
0: और साहब हमारी टीम बढ़िया है सर।
1: सब अच्छे हैं सर, आप बताएं, आप ठीक हैं?
0: हाँ साहब, मैं स्वस्थ ही हूँ।
1: जी, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहिए?

0: आएंगे।
1: कार्यक्रम में ये गीत सुनना चाहता हूँ मैं, यादगार का गाना है, जैसे पट पे चला उस पट साथी की जरूरत होगी। धन्यवाद है मेरी रिपोर्ट लेने के लिए, और हमारे मित्र है सबके लिए गाना प्रस्तुत करता हूँ। हमारे बैठे ठाकुर साहब है, ये तो भजन लाल राम बैरुआ के
0: जी जी,
1: तो उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ गाना में। आपके लिए मेरा बार बार प्रणाम।
0: ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार, मेरा हाथ जोड़ के आपके लिए।
0: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्कार।
0: विसावर से विजय कुमार कश्यप बोल रहा हूँ।
1: स्वागत है विजय जी कार्यक्रम में आपका।
0: और आप बढ़िया अंकल जी?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? आपके परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: हमारे परिवार में सब बढ़िया हैं, हम भी बढ़िया हैं।
1: आपका काम अच्छा चल रहा है?
0: हाँ काम अच्छा चल रहा है अंकल जी, हमने काम अपने घर पर डाल दिया है।
1: बहुत बढ़िया, घर से तो और आसान।

0: आसानी रहती होगी काम करने में।
1: हाँ जी हाँ, आसानी रहती घर पे तो। पहले
0: आज बताइए क्या फरमाइश है कार्यक्रम में।
1: मेरे बच्चे हैं, उनका नाम लेना चाहता हूँ मैं। कुछ
0: जी
1: इस वर्ष खुशी, और कुछ मेरे सोदा भी हैं, कनौली से राजू लमानिया और छोली से हैं विपिन कुमार।
0: जी जी
1: गाने के बोल, जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा, ये वाला गाना।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: हेलो,
1: नमस्ते सर, गोरखपुर से रणजीत सिंह बोल रहे हैं।
0: रणजीत सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
1: हाँ सर,
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: हाल चाल सर ठीक है।
0: तैयारियां चल रही हैं?
1: हाँ सर, तैयारी चल रही है।
0: एग्जाम्स की?
1: हाँ सर, एग्जाम से की है सर, बृहस्पतिवार को पेपर।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
1: हाँ सर,
0: आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: नदिया के पार फिल्म का कोई भी, सभी गाने सर अच्छे हैं उसमें का।
0: सुनवाते हैं सर आपकी पसंद का गाना। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासरा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका इंद्रभान जी कार्यक्रम में।
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी परेड हूँ सर। मौसम एकदम यहाँ एकदम बादल किया हुआ है और धूप भी तेज है, और सबसे पहले गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं सर।
1: आज मैं सर भजन से फरमाइश करूंगा सर, वो फिल्म का नाम है मरते दम तक में, उसमें भी सर गणपति वाला गाना है सर, उसी को सुनाएंगे सर। और सबसे पहले गीत आपको केने निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी मथुरा में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, सभी भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एक्टर रेडियो फरवरी ग्रुप के जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राज्य के श्रोताओं को डीजे करो सर।
0: सुनवाते हैं इंद्रभान जी आपकी फरमाइश का ये भक्ति गीत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ठीक है, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चंद्रा खत्री के साथ।

नदीम श्रवण के संगीतबद्ध इस गीत के शब्द रचना की थी समीर ने। फिल्म थी दीवाना। गीत को अपना सुर दिया अलका याग्निक विनोद राठौर ने। साथियों, आज है 15 सितंबर और आज है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो हम अपने 12 बजे गीत बात और SMS कार्यक्रम में शामिल करेंगे इसी विषय को। आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं, तो लिख भेजिएगा 9412557 पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुना भी आपने ये गीत फिल्म एक्शन रिप्लाई से। गीत के शब्द रचना इरशाद कामिल की थी, संगीत बद्ध किया था प्रीतम ने।

समीर की शब्द रचना को संगीत बद किया था नदीम श्रवण ने। कुमार सानू अलका याग्निक के युगल सुरों को भी आपने सुना फिल्म बलमा में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस सुन रहे सभी मित्रों को चंद्रा खत्री का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज कार्यक्रम में हम इसी विषय को शामिल करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस एक व्यवस्था ही नहीं बल्कि नागरिक की आवाज, अधिकार और सम्मान का प्रतीक है। तो आइए हम अपने महान संविधान के मूल्यों की रक्षा करें और भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक सशक्त बनाएं। तो साथियों, कार्यक्रम में आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। आप भी अपने विचार हमसे अपने मैसेज के थ्रू साझा कर सकते हैं।

कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी, तृप्ति, आप सभी महाराष्ट्र के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, आप सभी हमसे चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। कालका से शुभचंद्र, साहिल और बिट्टा बजाज का मैसेज हम तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के श्रोता अमोल, शोभाताई, दीपाली, सहदेव, शशिकला और सुमेध, आप सभी की पसंद का गीत जरूर आपको सुनवाएंगे। अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद, आप खंडवा से जुड़ रहे हैं। कल्याण, मुंबई से किशोर, सुजाता, प्रतीक कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। अगला संदेश पहुंचा रहे हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय, रतनमाला, आरती, कुमारी और ओम कुमार। छत्तीसगढ़ के श्रोता साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। इसी के साथ अगला संदेश हम देख रहे हैं, आ चुका है झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर और गौरव का। कार्यक्रम सुन रहे हमारे साथी अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका, विशाखा, आप सभी पुनावले से हैं। श्रीरामपुर से जुड़ रहे हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका। कार्यक्रम का ये संदेश लिख भेजा है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू, पप्पी, तमन्ना ने जमशेदपुर से। सुभाष और सुशील कृष्णा कॉलोनी हांसी से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार, चंद्रकला रेवाड़, तुलसी, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा और आप सभी शाहदरा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु, रिधान, सभी आपके साथी हमसे जुड़ चुके हैं। नवीन, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल, क्रांति, कामेश्वर प्रसाद, मेनका, संगीत डोम, संगीता डोम, गोदावरी एंड ब्लैक लेवल, अरुण कुमार, मालवीय, आप सभी मधुबनी बिहार से। अगले श्रोता हैं धनोरी तेलीवाला से निसार, नौशाद, बीबी आलिया, आयन बाबू। कार्यक्रम का ये संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं मधुबनी बिहार से राजकुमार, विनीता गुप्ता, रविराज और छपरा दालदली बाजार से संजय, संजीव और सर्वजीत, सुधांशु, सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हरिद्वार उत्तराखंड से हैं ताज मोहम्मद, गुलाम साबिराही, मेराज जहां। ये संदेश लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पारासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित का है, फोटानी चौक, नहरानी स्टेट से। राहुल, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी एंड बेबी प्रियांशी, आप सभी

वर्तमाल से, तेलंगाना स्टेट से करीम नगर से लक्ष्मी नारायण विजया अभिनय साई किरण। आपने लिख भेजा है अग्निपथ फिल्म का नाम और गाना भी लिख भेजा है। बिल्कुल आपका गीत हम शामिल करने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में इंतज़ार कीजिए। फनीश, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र, हियांश और आप सभी छत्तीसगढ़ के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से नारायण, सोपान, आशीष, आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं बलकरण, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, प्रमिला। श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, आप सभी झारखंड के श्रोता। पंजाब, रामटेके, यशोधरा एंड श्राव्या, आप सभी यवतमाल से हमसे जुड़ रहे हैं। गंज, डुंडवारा के श्रोता हैं मोहम्मद गली अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद एयान, मोहम्मद उस्मान, भाई शमसुल। आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। आशा, सोनाली एंड सुरेश सहारनपुर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा। अगला संदेश भेजा है हमें बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री ने। इसी के साथ बेगम इशरत अकरम, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी से। बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन। सिद्धार्थ, अर्चना, प्रणय, हीरामन शिंडे एंड प्रतिभा, आप सभी अमरावती से हमसे जुड़ रहे हैं। तो आइए सुनवा देते हैं आप सभी को ये गीत। और चूंकि गणेश चतुर्थी हमारी जो है आरंभ हो चुकी है, तो लगभग हमारे जो श्रोता हैं वो गजानंद का ही गीत सुनना चाहते हैं। तो एक बार बोल देते हैं, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बुफलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विदनी शुरपादु पंकजम।

श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी में अगर हम पर्याय देखें तो होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई थी, यानी डेमोस, ग्रीक शब्द डेमोस से हुई थी। और डेमोस का अर्थ जो होता है वो होता है जनसाधारण। और इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ होता है शासन। तो हमारे अगले श्रोता को हम जोड़ लेते हैं अपने कार्यक्रम में। दिलीप, हर्षा, अक्षय, रुद्रा और रुचिका, पूरा ही रामेकर परिवार हमसे जुड़ चुका है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदनान खान, फैजान, अन्नू, शाहीन, फातिमा, शमसुल कमर, राही, गंज, डुंडवारा के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह, स्वीटी, रोशनी, रेहान, ध्वनि और सानवी नई दिल्ली के श्रोता हैं। अगला संदेश हम तक भेजा है मजनू का टिल्ला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक, माही मलिक ने। अगला मैसेज सतीश अनेजा, विमला अनेजा का है चंडीगढ़ से। श्री कृष्ण, संदीप, अमूल्य, आप सभी महाराष्ट्र के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, सभी का धन्यवाद। अजय, करिश्मा, अविका एंड साइशा, आप सभी पुनावाले से हैं। और श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार, धन्यवाद जुड़ने के लिए श्रोताओं। अगला संदेश लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से पवन कुमार, क्रांति, पंकज, सुष्मिता और दीपिका ने। ये संदेश संतोष, सार्थक, समर्थ और शौर्य का है, बघेरा दुर्ग से। सदानंद, सुशीला देवी, कुमार गौरव, आप अकोला से हमसे जुड़ रहे हैं। अगले श्रोता जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं वो है पालसी से विजय, ऋषिकेश और उद्धव। गंज डुंडवारा के श्रोता मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवर, नजमा और सरिता गौतम। कार्यक्रम का ये संदेश लिख भेजा है अहमदनगर से मोहम्मद नाजिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल ने। गीत बात और एसएमएस सुन रहे हैं हमारे अगले श्रोता मीना, राज, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना एंड निवान पंजाब से। पंजाब से ही अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं लाल, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनद और गुरशबद। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, गीतिका, भनु प्रसाद, आप सभी का धन्यवाद। हमारा गीत हम आप सबको सुना चुके हैं और काफ़ी सारे मैसेज हम तक पहुंच चुके हैं। किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोने सपकाल, विशाल, आप सभी बीरनगर से हमसे जुड़ रहे हैं। ये संदेश लिख भेजा है राजे यादव देशमुख परिवार ने, मोताला और करना रिसोर्स से कुमार प्रथमेश, सर्वद, हर्षिता, सानवी और प्रणाली ने। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मोहन, ममता, कीर्ति, भूमिका, राजस्थान से ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन।

मंगला बहन राजेंद्र जी शाह, आप सभी नेपा नगर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली, आरती। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता, सूरज, पीआर जैन। रजनी, तुषार, समीर, नारायण, छत्तीसगढ़ के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। इसी के साथ मलकापुर से संजय एंड उषा, कार्यक्रम सुनने वाले ये श्रोता हैं। वृंदावन चांदनी चौक से पवन, प्रभा देवी, विक्की एंड रविंद्र रौनक सेन। कार्यक्रम का ये संदेश सुरेश मंजुला विशाल निशा का गुजरात से हम तक पहुंचा है। अंकिता कामले, विजय कामले, बेबी शौर्या, श्रेयस, आप सभी पुणे से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र से विजय, तेजस्विनी, बेबी शौर्या, अंकिता, अनिकेत चौहान। गंगाधर सावनकर, विजयालक्ष्मी, राजेश, राकेश, आप सभी महाराष्ट्र से हमसे जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये सदाबहार गीत।

साथ ही कार्यक्रम में आज का विषय हमने शामिल किया था अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। सरसरी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक थ्योरी में लिखा था कि राजनीतिक लोकतंत्र एक तरीका या प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतियोगी संघर्ष से सत्ता प्राप्त की जा सकती है और कुछ लोग सत्ता को नेतृत्व प्रदान करते हैं। सरसरी के अनुसार लोकतंत्र काफी कठिन शासन है, इतना कठिन कि केवल विशेषज्ञ लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं और इस प्रक्रिया को मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल साथियों, इस शासन में वास्तव में बहुत ही एक विशालकाय, एक बहुत ही विशेषज्ञ व्यक्ति ही पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि हर किसी की सुन ले। तो ये एक लोकतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रता का अच्छे तरीके से हमें लाभ उठाना चाहिए, नकारात्मक नहीं सकारात्मक। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जोड़ लेते हैं अगले नाम, डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश और माहिर, आप सब हमसे जुड़े हैं डोंडे लोहारा से। ये श्रोता हैं नजीमुद्दीन, केसरुद्दीन, मिराजुद्दीन, आप सभी पहलगांव से हमसे जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम का ये संदेश महाराष्ट्र से आया है, रूपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रत्येश और पूरे संघई परिवार का। दुखी राम, स्नेहलता और पिंकी यादव छत्तीसगढ़ से। हनुमंत शिंदे, संगीता, ऋषिकेश और वसुंधरा, सांगली से। निप्पी एंड मिसेस सुनीता सहनी, आप झारखंड से हमसे जुड़ चुके हैं। पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, सीता और गीता। सीतामणि से राकेश एंड अरुणा, छत्तीसगढ़ से नरेंद्र। राजेंद्र, अंजू, मोहित, तान्या, आप सभी डब्बाली से जुड़ रहे हैं। सोनम, विनीत, राहुल, माया, अनिल, आप सभी सदर बाजार कुरावली से कार्यक्रम में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहाक, खतीजा, मोहम्मद अशफाक, काफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर, योगेश, सिमरन, मीरा, आप सभी महादेव पारा से

कुरुक्षेत्र से दीपक प्रमिला और अनुश्री, बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र, ज्योति, आकांक्षा, आकाश। दरभंगा बिहार से सबीर, रंजू, चंदना एंड सुधाकर। राजनगर से जगदीश, फूलो, राधा, भाषणती, जयमंत्री, नवीन, चुलबुल, आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डुमराव से वलीउल्लाह, आसमानाज और शबनम भानो। बक्सर से राज एस जी अंसारी और फातमा नाज। दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा हमसे जुड़ रहे हैं। इसी के साथ हमारे अगले श्रोता सौरभ, प्रकाश और बल्लू, तरुण, श्रीनिका, श्रीनिजा, आप सभी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

इंद्रजीत कौर स्वीटी और रविन्द्र छावड़ा ने लिखा है कि हर वर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व, मानव अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और नागरिकों की भागीदारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है।

सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया देशानी और निमित आहूजा ने हमें लिख भेजा है कि हमें अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश से प्यार करना चाहिए और देश के कानून का पालन करना चाहिए।

0: रखना, इसके अलावा लोकतंत्र को मजबूत करना और जवाबदेही शासन और लोकतंत्र के प्रति मजबूती को बढ़ाना और उसमें जन भागीदारी निभाने और सरकार नागरिकों के प्रति विश्वास को बढ़ावा देना ही लोकतंत्र की मजबूती होती है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत ही शुक्रिया अपने कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और लोकतंत्र पर अपने विचार साझा करने के लिए। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सोहेल शेख मोताला बाजार से, शेख वजीर बबलू ठेकेदार, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और धर्मेंद्र कपिल, ईशान, पूजा परिहार, आप सभी ने अपना संदेश लिख भेजा है कि लोकतंत्र के सिद्धांतों और मानव अधिकारों को सुरक्षित

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत ब्रज लोक गीतों का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रांझा गायन की अगली कड़ी, और कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी।

राजे ने जब बगीचा अंदर घुस के देखो तो बड़े ताज्जुब में रह गए। और बगीचा में क्या क्या शोभा बगीचा की बढ़ा रहे,

पत्ता को देख करके और जो फलदार डाल ही वो नीचे को झुकी आई कि अगर रांझे को मन चले तो हमें तोड़ करके खाए ले। मगर रांझे ने किसी से मर्यादा का उल्लंघन ना कियो बाने।

श्रोताओ, राजे ने घूमते फिरते आपने बगीचा में देखो होगो कि बेगम साहिबा के लिए अलग जनानो व्यवस्था बनाई जाए, तो वहां हीर को बंगला देख करके रांझो दंग रह गयो। बोले वाह, जाके तो दरवाजे में हीरा पन्ना पुखराज लग रहे हैं, तो भीतर की क्या शोभा होगी। जब रांझो भीतर घुस जाए तो क्या देखता है कि हीर की सेज बिछी हुई है।

0: से चुन रही है और बड़ी महक आ रही है, तो रांझे ने अपनी कमर से रतन दुलाई खोल करके और पलंग पे सो जाए। भाई रतन दुलाई ओढ़ ले तो भैया फिर का भयो,
1: क्या भयो
0: के लीला ठाकुर जी की, अल्लाह ताला की, के उधर एक छोटी सी बदरिया आई और टप टप बूंद टपकवे लगी। जब बूंद टपकवे लगी तो माले ने जो है वो पानी से बचवे के ताई के हम भीग नहीं जाएं, और वो बंगले में आती हैं। और जब रांझे को सो तो देखो अब की ओ भैया जाने तो मर बाबे के काम कर दी। अगर ऐसे समय में हीर आ गई तो हमें तो जन बच्चा ते कोलू में पिलवा देगी। तो कछु बड़ी बूढ़ी बोली के जाए हाथ ते जगा और जाते भगा, चलो जागो। और जिनके शरीर में खून में गर्मी बोली नहीं ऐसा कैसा भगा देंगे डोकरी, तू चुप बैठी रहे। जा मैं तो आज वो मार लगा मैं कि अगर जाकी मार को देख करके दूसरे की हिम्मत नहीं करेगी जब बाग में आवेगी। बड़ी बूढ़ी बोली ठीक है भैया तुम्हारे जैसे मन में आवे वैसा करो, हम तो एक कोने में बैठे ही गए हैं। तो माले ने वहां से जाती हैं और जाए करके गुलाब की क्यारिन में पहुंच जाए, क्यारिन में पहुंच करके और बिन्ने मोटी मोटी लकड़िया छांट छांट के और काट ली, क्योंकि बिन पे तो सब साधन रही है, लकड़िया काट ली और पकड़वे के ताई उनने वहां के कांटे छील दिए। इधर मालिन लकड़िया तोड़ करके रांझे को मारवे के ताई आ रही हैं, तो रांझे को पीर कैसे जगा रहे हैं।

0: इधर राजे की नजर जब दरवाजे की तरफ गई तो एक एक मालिन के हाथ में दो दो लकड़ी। तो राजे ने कही, भैया आप तो आए वो नंबर पिटवे को देखेंगे का करेंगे ऊपर वाले। जब मालिन पास आती हैं तो राजो मालिनन से का किए,
1: क्या के भैया

मेरे प्रिय श्रोताओ सुनो, रांझे की सूरत देख करके और मालिन मोहित है गई। सपने में हीर मोहित है गई तो मालिन की तो चले काय भैया। रांझे ने लकड़िया मांगी तो मालिन ने सबरी लकड़िया दे दई। रांझे ने दो लकड़िया ठेल सी मजबूत और निकार करके, और फिर रांझो का करे भैया क्या करे?

और जब लकड़ियां रांझे के हाथ से छूट गई हैं तो मालिन वहां से दौड़ लगा के भागी हैं और भगते भगते सीधी महल पे आई हैं। और महल में आकर के जब हीर ने देखी है तो हीर बोली, अरे ये क्या हाल तुम्हारो है, रो खून चुचा रहे हैं, ऐसी क्या बात है, कौन ने मार लगाई है? तो मालिन क्या बता रही हैं?

0: ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजा गायन, कलाकार थे भगवान दास अज्ञानी। इसी के साथ कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण के अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में

0: आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अभूतपूर्व हैं।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपए डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 74,635 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 23,324 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात 10:30 से आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मोहित कुमार का गिटार वादन राग चंद्र कोंस में। राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण रात्रि 10:10 आप सुनेंगे, जिसका अनुप्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा। मनी टॉक एंड मंथन, मनी टॉक कार्यक्रम 9:30 पर सुनिएगा, 9:45 से आप मंथन सुनेंगे। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग दोपहर 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, दूरदर्शन दिवस, ऋषि पंचमी। इसी के साथ आईना क्रम में आप सुन सकेंगे एक भेंट वार्ता। विषय लेकर आएंगे चेहरे पे दाग धब्बों से कैसे करें निपटारा। वार्ताकार होंगी अमिता शर्मा और आपसे भेंट करेंगे सीमा सिंह। इसी के साथ कार्यक्रम में आप फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की वर्तक्रम में आज के विषय लेकर आएंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जयंती, दूरदर्शन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जयंती। इसी के साथ युवा साथी फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। किसान भाई और बहनों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी संध्या 6:50 पर, जिस कार्यक्रम का अनुप्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में लोक कथा क्रम में आज का शीर्षक होगा मेहनत को फल, कथाकार होंगे यदुनंदन गोस्वामी। समय रहेगा संध्या 6:15। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे। संध्या वंदन, ये कार्यक्रम संध्या 6:30 पर स्टूडियो से प्रसारित होगा। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा संध्या 7:31। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर।

अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए करते हैं अपनी मातृभूमि को नमन।

सामवेद सुरों में भी आपने सुना देशगान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

सेशन का सफर जारी रहेगा। दूरदर्शन हम सभी को

1959 को नई दिल्ली में एक छोटे से ट्रांसमीटर और इसके पहले

ये भारत कहाँ पे है?

0: और बहनों, आज आईना क्रम के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं ये भेंट वार्ता, चेहरे पे दाग धब्बों से कैसे करें निपटारा। इसमें भेंट करता है सीमा सिंह और उन जानकारी दे रही हैं अमिता शर्मा।
1: बहनों, हम हमेशा कुछ ना कुछ अपने स्टूडियो में ऐसा करते रहते हैं ताकि हम सबको फायदा हो। हम बहनों के लिए तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये होती है कि हम सुंदर कैसे दिखें, और सुंदरता के बहुत सारे पैमाने होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे चेहरे की चमक बरकरार रहे, कभी लगता है कि हमारे चेहरे पर जो हमारे ये अनवांटेड, जो अवांछित हमारे दाग धब्बे हैं वो हो जाते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसीलिए हमने अपने आईनी क्रम में अपनी स्टूडियो में बुलाया है अमिता शर्मा जी को, जो कि हमें हमारी सारी दाग धब्बों की समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें कुछ टिप्स देंगी। तो अमिता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार बहनों।
1: अमिता जी, जैसे कि आप जान, लड़कियों, हम खासकर बहनों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हम कैसे अपने चेहरे को इतना चमकदार और उसमें कुछ भी फोरे फुंसी दाग धब्बे ना रहें, इसके प्रयास में हम हमेशा जुटे रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो क्रीम्स जो हैं अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसा कि हम हमेशा एडवर्टाइजमेंट से प्रेरित होकर, या फिर कभी कभी क्या होता है
2: जी,
1: कि मार्केट के जो भी चल रहा होता है हम उस पर विश्वास करके उन क्रीम्स को लगाते हैं, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी उनको देखे गए हैं।
2: बहनों, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें जैसे हम कोई भी चीज़ मार्केट से जो हम लेते हैं वो मार्केट की होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम घर पे उपचार कर सकते हैं, और
1: जी
2: हमारी रसोई में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी स्किन को दाग धब्बों से मुक्त कर सकते
1: जी
2: हैं।
1: जी जी
2: हाँ जी,
1: मतलब आप क्या
2: जैसे कि
1: बताना
2: जैसे
1: चाहेंगे?
2: हम लोग खाने में हम लोग फल का यूज़ करते हैं,
1: जी
2: तो
1: जी
2: उसमें सबसे अच्छा जो पेट के लिए सबसे अच्छा बताया गया है पपीता बताया गया है।
1: जी जी
2: तो
1: जी
2: पपीता हमारे जब शरीर में जाता है तो जितनी भी गंदगी होती है उसे वो बाहर निकालता है। वही चीज़ उस पपीते को अगर हम फेस पे लगाते हैं तो जो हमारे पिंपल्स आए हुए हैं और उसके बाद दाग धब्बे रह जाते हैं, तो पपीते को हम थोड़ा सा हल्का सा कद्दूकस कर लें या उंगलियों से मैश कर लें, उसको थोड़ी सी मलाई मिला के उसको हम अपने

0: जैसे रूटीन में ज्यादा पुराने दाग धब्बे हो गए हैं तो ये एकदम तो हमारे ठीक नहीं हो पाते, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम एक दो दिन में तीन दिन में जी, जी, एक जी. एक बार उसका हल्का हल्का लेप जैसे फेस पैक लगाते हैं उस तरह से लगाते रहे. ये जो हमारा ट्रीटमेंट होता है ये धीरे धीरे होता है. जैसे हम किसी भी चीज को मार्केट से लेके आते हैं तो हम तीन दिन बाद देखते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, साइड इफेक्ट तुरंत दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो हमारा घरेलू उपचार है ये धीरे धीरे फायदा करता है लेकिन जड़ से उस चीज को खत्म करता है.
1: अच्छा, मतलब अमिता जी आप कहना ये चाहती हैं कि हम बाजार से लाई गई उपयोग ना करें.
0: हाँ जी, नहीं देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमें तुरंत फायदा चाहिए होता है. जैसे कोई हमको बीमारी है, किसी चीज से हमारा फेस खराब हो गया है तो उसका तो ट्रीटमेंट हमें लेना पड़ेगा और उसको जो भी केमिकल से हम उस वक्त खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जो निशान रह गए हैं जिसे हम अपनी किचन में जो भी हम लोग खाते हैं वही हमारे फेस पे भी हम लगाते हैं तो बहुत कारगर साबित होते हैं.
1: अच्छा, यानी हमारे किचन ब्यूटी केयर का बहुत ही ज्यादा योगदान है इस चीज में. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमें आप कुछ ऐसे घरेलू टिप्स बताएं जिससे हम अपने चेहरे को दाग धब्बों से छुटकारा दिला सके.
0: देखिए जैसे अब वायरल फीवर चल रहा है तो वायरल में ज्यादातर पानी की कमी हो जाती है.
1: जी जी,
0: हीट बहुत है, वायरल फीवर बहुत तेजी से आ रहा है और बहुत दिनों तक रहता है. तो उस तरह से जैसे हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है उसको डिहाइड्रेशन में लेते हैं. पानी की कमी के कारण ही सारी बीमारियां आती हैं. एक तो सबसे पहले हम अपने शरीर को साफ रखें और पानी का भरपूर यूज करें, उबाल के पिए, आरओ का पिए, और ज्यादातर हम लोग जैसे कच्चा नारियल का पानी जरूर उसको अपने डेली उपयोग में लाएं. उसके जैसे हम पानी पी रहे हैं अपने बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकाल रहे हैं, उसी तरह हमें जो फेस पे हमारे दाग धब्बे आए हैं तो कच्चा नारियल या कच्चा दूध हम अगर रुई कॉटन से लेके अगर सुबह दाग धब्बे बहुत ज्यादा फेस पर हैं या बहुत कालापन अचानक आ गया है तो उसे एक डेली नित क्रम में जैसे 40 दिन हल्का हल्का हाथ से कॉटन से धीरे धीरे पूरे फेस पर लगाते
1: रहें. मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगी. ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों की तैलीय त्वचा होती है
0: हाँ जी,
1: उन लोगों के लिए कच्चे दूध को लगाने से भी ऑयल जो है वो चेहरे पे चिपक जाता है या ऑयल जो है वो चेहरे पे लगा रहता है जिस कारण से उनकी त्वचा पे और फोरे फुंसिया आते हैं. तो इसमें कहां तक सच्चाई है?
0: देखिए उबला हुआ दूध हमारी स्किन को नुकसान करता है
1: जी जी.
0: लेकिन कच्चा दूध जो बिल्कुल हमारा बिल्कुल ताजी दूध आता है उसमें कहीं ऐसा नहीं पाया.
1: लेकिन मार्केट में अब ताजा दूध मिलता कहां?
0: नहीं
1: मिलता
0: नहीं
1: जी? हम पॉकेट से दूध लेते हैं.
0: नहीं मार्केट में नहीं, जो हम डेली सुबह हमारे पास जो फ्रेश दूध आता है उसको ले सकते हैं. और अगर हमारी स्किन ऑयली है या हमको ऐसा लगता है कि कच्चा दूध हमारी स्किन पर सूट नहीं करा तो उसकी जगह हम कच्चे नारियल का पानी भी
1: लगा सकते हैं.
0: हाँ जी.
1: अच्छा अच्छा अच्छा. और ऐसा कहा जाता है किचन में अवेलेबल कुछ ऐसी सब्जियां जिसको लगा के हम दाग धब्बों से निकाल.
0: हाँ जी हाँ जी, मैंने अभी ये बताया जैसे सरसों के दाने ले लीजिए, जो मोटे सरसों के दाने हैं उसे हम रात में भिगो के रख दें और सुबह उनको हल्का हल्का दरदरा पीस के उसमें ग्लिसरीन या शहद. स्किन और सीजन को आप जरूर ध्यान में रखिए कि अगर स्किन जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम शहद का उपयोग कम करें और सर्दियों में वही स्किन जो डैमेज है उसमें हम शहद का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं. और उसको हल्का हल्का दरदरा दरदरा पीसकर उसमें आधा चम्मच शहद मिला के हल्के हल्के हाथ से जैसे धीरे धीरे मसाज करते हैं मसाज करिए और फिर धीरे धीरे उसे 10 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए. सरसों अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज है, कलर धीरे धीरे फेयर करता है और फेस को इम्प्रूव करता है. जैसे जो डैमेज स्किन है धीरे धीरे लेयर लेयर निकलती रहती है धीरे धीरे और स्किन धीरे धीरे साफ होती रहती है. जैसे पुराने जमाने में वीको टर्मरिक क्रीम आया करती थी, अगर हम वीको टर्मरिक क्रीम यूज करें और सरसों के दाने का अगर इस तरह से जो मैं लेप बता रही हूँ वो दोनों का इक्वल ही काम रहता है.
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. और कुछ जो ऐसा कहते हैं कि तुलसी नीम की पत्तियां लगाने से
0: जी जी
1: भी इसमें फायदा होता है तो वो कैसे होता है?
0: देखिए जैसे बहुत सारे जो कामकाजी महिलाएं हैं और घरेलू महिलाएं उन्हें बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हम अपनी स्किन की देखभाल करें कैसे. मार्केट से केवल प्रोडक्ट लाते हैं और कुछ टाइम उन्हें यूज करते हैं और हमें लगता है स्किन बहुत अच्छी हो गई, कुछ दिन बाद हम उन्हें उठा के रख देते हैं
1: जी,
0: वो खराब हो जाते हैं. दूसरा बहुत सारी चीज हमारी मैंने पहले भी बताया हमारी किचन में रहती हैं. जैसे इस वक्त वायरल चल रहा है, मौसम अभी तुरंत फिर से दोबारा बदलेगा तो उसके लिए जैसे दो पत्ती तीन पत्ती हमने नीम की ली, दो पत्ती तीन पत्ती हमने पुदीने की ली और इसी तरह से तुलसी की, इन तीनों पत्तियों को लेके हमने

0: एक गिलास पानी लेके उबलने रखा। उबलने के बाद जब ये आधा गिलास हो जाए तो इसको हम ठंडा करके 3 बार अच्छे प्रोसेस से छानेंगे और उसको हफ्ते या 10 दिन के लिए एक शीशी में भर के रख लेंगे। इसे हम 1 महीने या 2 महीने के लिए नहीं रख सकते
1: जी, जी, जी।
0: और इसे जब इसको हम एक तरीके का देसी घरेलू टोनर बोलते हैं, जो टोनर का यूज ऑयली स्किन के लिए और पिंपल्स के लिए, या जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत थकावट होती है, उसको हम एक ढक्कन अपने नहाने के पानी में यूज करते हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है।
1: अच्छा अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई अमिता जी। अच्छा, आपने अभी अपने घरेलू टिप्स में ही हमें ये भी उपाय बताया कि हमें पानी बहुत मात्रा में पीना चाहिए
0: जी।
1: तो पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम लगातार पानी पिए चले जाते हैं और पिंपल की समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं।
0: देखिए, कई बहनों से हम ये वो बताते हैं कि पानी पीजिए, लेकिन वो कहती है पानी पिया ही नहीं जाता, पानी पिया ही नहीं जाता। तो उसका देखिए सबसे अच्छा रास्ता है, जरूरी नहीं है कि आप 7-8 लीटर भी पानी पूरे दिन में आप पी पा रही हैं। उसका सबसे अच्छा प्रोसेस है कि आप दही का सेवन ज्यादा करिए, सलाद का सेवन ज्यादा करिए, जिन चीजों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है उन चीजों का सेवन आप अच्छे तरीके से करते रहिए। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया जैसे आपके फ्रूट जूस है उन्हें ले लीजिए, नारियल पानी जो विशेषकर मैं बार बार आपको बता रही हूँ, नारियल पानी का यूज करिए। जब आप इस तरह से फल सब्जी सलाद जो इस तरह की चीजें जिनको हम अवॉइड करके और चीजों को खा रहे हैं, तो हम पानी की मात्रा इस प्रोसेस से भी पूरी पर्याप्त कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम 10 लीटर ही पानी पी के पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, तो खाने में भी चेंजेस से पानी की मात्रा भरपूर रहती है।
1: चलिए, आपने ये अच्छी बात बताई, ये प्रोसेस मैं भी अपने खाने में जरूर करूंगी, क्योंकि मैं भी पानी पीने से बहुत कतराती हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो आपने बताई ये सारी बातें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम काम काजी महिलाएं जब होते हैं तो हमें इतना वक्त नहीं मिलता ऑफिस में कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रख सकें, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि हम लगातार पानी पीते रहें, हम पानी वाले फल लेते रहें। तो कुछ आप ऐसे उपाय बताएं जिनको कि अगर हम सुबह ले लें या फिर रात को घर पहुंच के ले लें तो हमारे लिए बेहतर हो और हमारे चेहरे को भी दाग धब्बों से बचाए।
0: हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ, जो कामकाजी महिलाएं हैं या जो अपने को रोज समय नहीं दे सकती
1: जी,
0: उसके लिए मैं आपको घर का ही एक वेजिटेबल जिसे फेशियल बोलते हैं, जो महिलाएं आजकल मार्केट से खरीद के लाती हैं, उन्हीं के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। जैसे हम लोग हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार तो अपनी स्किन का देखभाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम दही लेके और उसमें हल्की सी जो आटे की भूसी होती है जिसे हम चोकर भी बोलते हैं,
1: जी, जी, जी,
0: उसे लेके आप हल्का सा स्क्रब अपने फेस पे करिए। जो आपके दाग धब्बे हैं या 15 दिन की जो आपके ऊपर लेयर आई हुई है स्किन के ऊपर गंदगी की, वो धीरे धीरे आपकी निकलेगी। उससे आपकी जब स्किन
1: दही में चोकर
0: डाल के, तो उससे सबसे पहले आपकी स्किन की एक तरह से सफाई हो जाएगी।
1: जी, जी, जी।
0: उसके बाद दूसरा नंबर आपको नरिशमेंट का चाहिए होता है कि पहले आपने अपनी स्किन की सफाई करी और सेकंड आपका आता है नरिशमेंट, जो कि हमारी स्किन के लिए जरूरी होता है। बहुत सारी बहनें स्क्रब भी करती हैं, मार्केट का भी स्क्रब करती हैं और घरेलू जिसको भी जितनी जानकारी है, उसके बाद वो स्किन को ऐसे ही छोड़ देती हैं।
1: हाँ,
0: उसके बाद उनके वो पोर खुले रहते हैं, उसके बाद पिंपल्स बहुत आते हैं और उसके बाद उनकी स्किन उल्टा ऑयली होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि जब भी आप स्क्रब करें तो समय को देखते हुए, सीजन को देखते हुए और अपनी एज को देखते हुए कोई भी फेस पैक फेस के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर लगाएं। ठीक है, अब मैंने सेकंड आपको ये बताया कि उसका नरिशमेंट कैसे होगा। आप थोड़ा सा दही, थोड़ा सा टमाटर और एक बूंद नींबू लेकर उसे अच्छी मात्रा में अच्छी तरह से पीस लें और पीस के हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि ये दरदरी चीजें, हम इसको एकदम उंगलियों से रगड़ रगड़ के नहीं कर सकते। धीरे धीरे अपने स्किन पर इसे हल्की हल्की हल्की हल्की मसाज करें और 5 या 10 मिनट में हम इसे मसाज कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह का सीजन चल रहा है उसके बाद हम उसको फेस पैक लगाएंगे, क्योंकि स्किन पे जब नरिशमेंट हो जाता है तो उसको हमें टाइट करने के लिए फिर से एक फेस पैक देना होता है। तो उसमें जैसे हमने केला ले लिया, उसमें हल्का सा शहद मिला के लगा लिया, या खीरा ले लिया, अगर हमारी गर्मियां चल रही हैं और हमें पूरी तरह वेजिटेबल ही करना है तो खीरा ले लिया, उसमें पुदीने की सूखी पत्तियां जो हम हमेशा अपनी रसोई में दही रायते वायते के लिए रखते हैं उसको ले लिया और उसमें कुछ बूंदें उसकी पुदीने की अर्क की या सूखी पुदीने की पत्तियां मिला के

0: पूरे फेस पे लगाएं, तो इससे आपका नरिशमेंट भी पूरा होगा और आपकी स्किन भी टाइट बनी रहेगी।
1: अच्छा अमिता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारी बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी।
2: अभी बहनें सुन रही थी ये वार्ता, चेहरे पे दाग धब्बे कैसे करें निपटारा, जानकारी दे रही थी अमिता शर्मा और उनसे बातचीत कर रही थी सीमा सिंह। तो बहनों आप जान ही गए होंगे कि किस तरह घरेलू उपायों के द्वारा हम अपने चेहरे को निखार सकते हैं, अपने दाग धब्बों को हटा सकते हैं, अपनी छवि को बना सकते हैं। बहनों अपनी छवि को बनाए रखने के लिए शारीरिक सुंदरता के अलावा ज़रूरत होती है हमें अपने मन की सुंदरता की, और मन की सुंदरता होती है हम किसी का सहयोग करें, और सहयोग की भावना जब हमारे अंदर होती है तो हम सभी हमारे आसपास से लेकर हमारे मोहल्ले से लेकर हमारे नगर से लेकर हमारे देश तक हम सभी एक बन जाते हैं, और यही अनेकता में एकता बन जाता है हमारा लोकतंत्र। जय बहनों, आप समझ ही गई होंगी कि मैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। बहनों हम बात कर रहे हैं अपने लोकतंत्र की। बहनों आज 15 सितंबर है और आज 15 सितंबर को हम सभी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र विश्व लोकतंत्र दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। बहनों इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, जिसमें सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। हम अपने सभी संसदीय सदस्यों को इस दिन कार्यक्रमों और समारोहों के साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैंने 2008 में इस दिन की शुरुआत के बाद दुनिया भर में सैकड़ों संसदीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें फोटो प्रतियोगिताएं, बच्चों के लिए कार्यशालाएं, लाइव टेलीविजन, बहस रेडियो पर, फोन इन कार्यक्रम और नागरिक समाज संगठनों के साथ बैठकें भी शामिल थीं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का एक अवसर है। प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट विषय पर प्रकाश डाला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के प्रति हमारा समर्थन एवं इस मूलभूत विश्वास से उपजा है कि लोकतंत्र के लिए सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है, और यह संसद की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने, न्याय, शांति और मानव अधिकारों को साकार करने, उनकी क्षमता और उनके दायित्वों का निर्वहन करने का एक अवसर है। बहनों हमें अपने इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक दिवस पर हमें गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर हमें निर्माण करना है एक नए भारत का, और हमें संकल्प लेना है एक साथ रहने का, योगदान करने का और अपने भारत को नई दिशा देने का।

मैनू हमारा देश विविधता में एकता का देश है और विविधता में एकता में हमारी संस्कृति जुड़ी है। हम सभी संस्कृति से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और बात जब संस्कृति की करें तो हमारे देश में बहुत से त्यौहार पर्व मनाए जाते हैं और त्यौहार पर्वों में आज का दिन भी विशेष है और आज हम सभी मना रहे हैं ऋषि पंचमी का व्रत। मैनु ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है वह मुख्य रूप से महिलाएं ही रखती हैं और यह जो व्रत है सप्त ऋषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और जाने अनजाने में हुए पापों अशुद्धि दोष विशेष करके महिलाओं द्वारा रजस्वला धर्म से संबंधित अनजाने में हुई त्रुटियों का रजस्वला दोष से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। यह आत्म संयम और शुद्धि का प्रतीक है। मैनु इस दिन प्राचीन काल से रात महान ऋषियों कश्यप अति भारद्वाज विश्वामित्र गौतम जगत मुनि वशिष्ठ तथा माता अरुंधति की पूजा की जाती है। मैनु धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो व्रत होता है पूजन करने से महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़े अनजाने दोषों से प्राश्चित मिलता है। इस दिन संयमित जीवन उपवास और कई जगहों पर 108 बार दातुन करने जैसी परंपराएं आत्म संयम और शुद्धि से निभाई जाती हैं। तो बहनों इस तरीके से इस व्रत व उपवास के द्वारा हम अपने सभी पाप दोषों से मुक्ति पा जाते हैं। तो बहनों ये तो हम बात कर रहे थे आज ऋषि पंचमी की और अब हमारी घड़ी की सुई भी संकेत कर रही है कि हम आपसे अनुमति लें, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि बहनों आप अपने जो भी प्रतिक्रिया है हमारे कार्यक्रम के प्रति वह जरूर शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या फिर पत्रों के माध्यम से। हमें पता चलता रहे कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। इसके साथ ही हम वनिता लोक कार्यक्रम समाप्त करने की आप सभी से अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही थी अंतिम गौतम। FM 102.2 मेगाहर्ट्स प्रिया आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये लीजिए सुनिए गीत फिल्म लुक्का छुपी से। इस गीत को अपने सुरों में पिरोया है अखिल, ध्वनि भानुशाली, भृगु पाराशर ने।

MS Dhoni, The Untold Story. अभी आपने सुना इस फिल्म में अरिजीत सिंह को. इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं. FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है. दोपहर के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार.

0: मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी होगी।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बढ़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
5: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
6: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
5: आर रजिस्टर्ड अंडर द वेरियस EPR फ्रेमवर्क।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
7: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास पारिस्थिति समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
8: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। विदेश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
9: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है।

0: ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए शत प्रतिशत आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है।
1: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए से
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है NCERT व CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्क।

मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी, मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओ, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओ, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ। लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें। एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी

0: मिट्टी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ, पेड़ बढ़ाओ, पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
2: यस मैम।
1: ऑलराइट, यू ऑल नो दैट pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes, pets are so lovely.
1: Right, Soham.
4: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
4: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
1: Wow, that's good. And what about you, Navya?
5: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
1: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
6: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
1: Oh, that's so exciting, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
2: Yes, ma'am.
1: Can you name some birds?
3: Sparrow.
1: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
7: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
1: Yes, peacock is a colorful bird.
8: Ma'am, parrot.
1: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing? Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
2: Yes.
9: It will be fun.
1: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black. As you know. How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail.
2: Then
1: he found another.
2: Then

0: words.
1: Great.
2: Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
1: Yes, ma'am.
3: We loved it.
0: Okay. And the song and the little game of birds?
1: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाई।
5: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी?

0: उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
1: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
0: अच्छा बाबू।
1: और सुन
0: जी,
1: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी। हैं? भगिनी निवेदिता
0: हैं?
1: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
0: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
1: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
0: अच्छा?
1: हाँ, बंगला बोल लेती है। बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
0: अच्छा?
1: अपना घर बार छोड़कर 100 समुद्र पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
0: वो तो ठीक है, पर बाबू।
1: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है। जा भाग यहाँ से।
0: अच्छा,
1: पहले मैं उन्हें फीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
1: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
3: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारे तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
1: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
3: धन्यवाद।
2: अब बताइए बोस बाबू
1: जी,
2: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
3: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है ही सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
3: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ,

0: कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
1: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
0: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
1: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
0: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू जी, यहीं बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी। मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय
2: वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
0: चलिए तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर दी है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती। कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
1: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं, शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
2: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
3: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
4: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
5: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
6: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
1: फिर तुमने क्या कहा?
6: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं, और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
1: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
6: हाँ दीदी।
1: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
7: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
6: दीदी ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
1: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़े हैं, भीतर आइए ना। जाते चारू, माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
7: अच्छा दीदी।
1: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े थोड़ी लौट जाने देंगे।
6: दीदी ये लीजिए आसन।
1: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा। किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा, क्या कहती है माँ? आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता?
8: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
1: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं उसे

0: पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ।
1: हाँ सो तो है, मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं। मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
0: तबीयत तो ठीक है।
1: अच्छा मेम दीदी, अब मैं चलूंगी, कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
0: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
2: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT व CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 MHz पर इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजने को हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, आज दूरदर्शन दिवस है। दूरदर्शन के इतिहास के अनुसार दूरदर्शन स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। पंद्रह सितंबर 1959 को दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के रूप में हुई थी। शुरुआती दिनों में हफ्ते में केवल 3 दिन और आधा घंटे के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से अलग होकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र विभाग बना। दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। ये देश के हर कोने में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाता है। वर्तमान में ये प्रसार भारती के अंतर्गत देश का एक विशाल नेटवर्क बन चुका है।

साथियों, आज हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जयंती है। इनकी जयंती भी 15 सितंबर को हर वर्ष मनाई जाती है। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 को मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1990 में हुआ था। इन्हें हिंदी एकांकी एक अंक का नाटक का जनक और एकांकी सम्राट माना जाता है। इन्होंने मुख्य रूप से ऐतिहासिक और समस्यामूलक एकांकियों की रचना की, जिनमें त्याग, प्रेम और देशभक्ति का भाव

0: और साथियों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं वार्ता जिसका विषय है शिक्षा का अधिकार, देश की जरूरत। वार्ताकार हैं रुचि अग्रवाल।
1: आज के समय में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा यदि इंसान के पास नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। सभी के लिए जरूरी है कि शिक्षा का ज्ञान अवश्य लें, क्योंकि शिक्षा इंसान के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि खाना। भारत जैसे देश में आज भी लोग के पास बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी की वजह यही है कि यहाँ लोग साक्षर नहीं हैं। यदि हम भारत को विकसित करना चाहते हैं तो संकल्प लेना होगा कि कोई भी शिक्षा के बगैर अधूरा ना रह जाए, क्योंकि शिक्षा वह है जो हर इंसान को रोजगार दिलाएगी और भारत देश को आगे बढ़ाएगी। आज हर जगह बेरोजगारी दिखाई देती है, तब देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हम कितने पानी में हैं। हमारा देश इतनी तरक्की करने के बावजूद भी बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पा रहा है। समझ नहीं आता कि कमी कहाँ है, कब हम अपने आप को विकसित कर पाएंगे, कहीं यह सपना सपना ही तो नहीं रह जाएगा। शिक्षा हर इंसान का मौलिक अधिकार है। आजकल की शिक्षा में पारंपरिक और वैज्ञानिक दोनों ही हमारे लिए अनिवार्य हैं। भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न श्रेणी का हो रहा है। अधिकांश निजी क्षेत्रों के संस्थानों में शिक्षा को कमाई का जरिया बना रखा है, जहां फीस तो बहुत अधिक मात्रा में वसूली जाती है, परंतु शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला, हमारे शिक्षा तंत्रों में कमी, और दूसरा, सही विद्यार्थी का चुनाव। पहले हम शिक्षा तंत्र की बात करते हैं। पारंपरिक शिक्षा भारत में बहुत बेहतर है। अगर आजकल की जरूरत देखी जाए तो हमें काफी कुछ बदलना पड़ेगा। शिक्षा की शुरुआत से ही हम तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। 10 तक के बच्चों को यही नहीं पता होता कि वो आगे जाके क्या करेंगे। इसका ताल्लुकात उन परिवारों से है जो अनपढ़ हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, या दूसरा, उनकी ऊंची शिक्षा के लिए पूंजी की कमी है। हम वही पढ़ते हैं जो कई सालों से चला आ रहा है। हमें चाहिए कि नए विषय पाठ्यक्रम में जुड़ें और प्रैक्टिकल ज्यादा हो, ना कि थ्योरी। हाँ, मैं मानती हूँ थ्योरी बहुत आवश्यक है, फिर भी थोड़ा बहुत बदलाव जरूरी है। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने वालों की इच्छा और उत्साह होता है। आजकल पढ़ने से ज्यादा विद्यार्थी नशे, फिजूल खर्ची, समय का दुरुपयोग, इन्हीं सभी कारणों से पढ़ाई में पिछड़ते जा रहे हैं और नकल से पास होने को तहजीब दे रहे हैं। उन्हें सिर्फ डिग्री से

मतलब है, बस एक कागज के प्रमाण पत्र की जरूरत है। बाकी उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ये इस निम्न विचार को हमें बदलना पड़ेगा। और ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि एक शिक्षक ही ऐसा कर सकता है। उसके लिए चाहिए कि अच्छा शिक्षक, जो कि बच्चों को ज्ञान के साथ साथ उनमें मानसिक सोच को उठाए। आजकल कुछ पैसों की खातिर शिक्षा संस्थान कम योग शिक्षक को रख लेते हैं, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ता है और उनका स्तर निम्न श्रेणी का हो जाता है। हमें बदलना होगा, इस शिक्षा के स्तर को उठाना होगा। भारत जैसे देश में सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना आसान नहीं है। मुख्य कारण है भ्रष्टाचार और भारत की विशाल जनसंख्या और गरीबी। बहुत सरकारी स्कूल बना

विशाल जनसंख्या और गरीबी। बहुत सरकारी स्कूल बनाना, बच्चों को दिन के दौरान स्कूल में खिलाना गरीब बच्चों के लिए, और निश्चित रूप से अविकसित वर्ग के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना, स्कूलों में छात्रों को शामिल करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना, अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आता है। ग्रामीण लोगों को उनके गांव के नजदीक में जब रोजगार मिलते हैं तो शिक्षित बच्चे अपने सभी गांवों में जाएंगे, अपने गांव को विकसित करेंगे और उनकी शिक्षा सफल हो जाएगी। इस प्रकार शिक्षा एक निश्चित उम्र तक के बच्चों को दी जानी चाहिए। बुनियादी न्यूनतम ज्ञान और कौशल हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। शिक्षा के बिना इस आधुनिक समाज में किसी भी अच्छी नौकरी को पाना या पैसे कमाना संभव नहीं है। बिना शिक्षा के बच्चों को किसी भी कौशल, संस्कृति, जीवन शैली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, समाज में व्यवहार करने का तरीका व शिष्टाचार आदि नहीं सिखाया जा सकता। अशिक्षित बच्चे एक अच्छे तरीके से अन्य लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते। पड़ोसी बच्चे निरक्षर बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। शिक्षा के बिना एक व्यक्ति अपने को हीन महसूस करता है। अविकसित क्षेत्रों में कई लोग अभी भी बुरी तरीके से जी रहे हैं। उनके निरक्षरता और ज्ञान की कमी की वजह से ऐसा है। अनपढ़ लोग अंधविश्वासी होते हैं। शिक्षा एक बच्चे को एक वयस्क बनाने के काबिल बनाती है। वह अपने और अपने परिवार की देखभाल कर सकता है। शिक्षा ठीक से जीवन बिताने के लिए और अच्छी तरीके से खुद के आश्रितों की देखभाल करने के लिए जरूरी ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है। भारत माता के महान सपूतों में से एक गोपाल कृष्ण गोखले यदि आज जिंदा होते तो देश के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के अपने सपने को साकार होते देखकर सबसे अधिक प्रसन्न होते। गोखले वही व्यक्ति थे जिन्होंने आज से 100 वर्ष पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से यह मांग की थी कि भारतीय बच्चों को ऐसा अधिकार प्रदान किया जाए। इस लक्ष्य तक पहुँचने में हमें एक सदी का समय लगा है। सरकार ने अंततः सभी विसंगतियों को दूर करते हुए वर्ष 2009 पहली अप्रैल से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया था। शिक्षा का अधिकार अब से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि सरकार प्रत्येक बच्चे को 8वीं कक्षा तक की निःशुल्क पढ़ाई के लिए उत्तरदायी होगी, चाहे वह बालक हो, बालिका हो अथवा वह किसी भी वर्ग का हो। इस प्रकार इस कानून के द्वारा देश के बच्चों को मजबूत, साक्षर और अधिकार संपन्न बनाने का मार्ग तैयार किया गया है। इस अधिनियम में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, जिससे ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस करके उन्हें भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनाया जा सके। यदि विचार किया जाए तो आज देशभर में स्कूलों से वंचित लगभग 1 करोड़ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना सचमुच हमारे लिए एक दुष्कर कार्य है। इसलिए इस लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी हितधारकों, माता पिता, शिक्षक, स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और कुल मिलाकर समाज, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की ओर से एक एकजुट प्रयास का आह्वान किया गया है। जैसा कि राष्ट्र को अपने संबोधन में भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि सबको साथ मिलकर काम करना होगा और राष्ट्रीय अभियान के रूप में चुनौती को पूर्ण करना होगा। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता, भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया या पाई है, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि सीधे तौर से दाखिला लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने वाले के लिए उसे प्रस्ताव सीमा के भीतर विशेष ट्रेनिंग दी जानी होगी जो प्रस्तावित होगी। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाला बाली बच्ची को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए उम्र का साक्ष्य। प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण कानून 1856 या ऐसे ही अन्य कागज के आधार पर किया जाएगा जो उसे जारी किया गया हो। उस प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को

0: दाखिल लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एक निश्चित शिक्षक छात्र अनुपात की सिफारिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू होगा। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा एक में दाखिल करने के लिए 25% का आरक्षण। शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार। स्कूल शिक्षक को 5 वर्षों के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा उसकी नौकरी चली जाएगी। स्कूल का बुनियादी ढांचा 3 वर्षों के भीतर सुधारा जाएगा, अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बीच साझा किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु रूपरेखा भी प्रस्तावित की गई। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम के प्रावधानों पर नजर रखने के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग को एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए राइट टू एजुकेशन अधिनियम सफलतापूर्वक ईमानदारी से लागू किया गया। एनसीपीआर के संस्थानों, सरकारी विभागों, नागरिक समाज तथा अन्य हितधारकों के बीच एक आम सहमति बनाने की पहल की गई। उसने शिक्षा के अधिकार के समुचित कार्यान्वयनों के योजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने वाले और अनुभवी व्यक्ति शामिल हैं। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा शिक्षित बात करना, शिक्षित विचार करना, शिक्षित संस्कृति से सब एक आदमी को जानवरों या निरक्षरों या पत्थर युग के पुरुषों से अलग और ऊंचा करता है। अतः शिक्षा का अधिकार देश की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्किल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए शिक्षा का अधिकार अनिवार्य है। जय हिंद, जय भारत।
1: साथियों, अभी आपने ये वार्ता सुनी, शिक्षा का अधिकार देश की जरूरत। वार्ताकार थी रुचि अग्रवाल। और कार्यक्रम में अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।
2: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
3: जाता हूँ। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती है ना?
2: नहीं।
3: थोड़ा भी नहीं?
2: नहीं।
3: झूठा भी नहीं?
2: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

0: और साथ ही उसी गीत के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है, अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार

को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे लोक कथा मेहनत को फल। कथाकार होंगे यदुनंदन गोस्वामी। साथ ही इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज लोक गीत। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे से लेकर 8:20 तक। रात 8:20 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे।

एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा। रात्रि 8:30 पर आज की फिल्म होगी दिल ने फिर याद किया। रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे गिटार वादन। आज आप सुनेंगे गिटार पर बजाया राग रागेश्वरी। वादा कलाकार होंगे मोहित कुमार। तबले पर इनके साथ संगत करेंगे गुलाम साबिर। रात 11 होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम होगा रात्रि 8:30 पर आज की फिल्म होगी दिल ने फिर याद किया। रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे गिटार वादन। आज आप सुनेंगे गिटार पर बजाया राग रागेश्वरी। वादक कलाकार होंगे मोहित कुमार। तबले पर इनके साथ संगत करेंगे गुलाम साबिर। रात 11:00 होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप देशगान सुन रहे थे। देशगान यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम, यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में ब्रज लोक कथा मेहनत को फल। कथाकार हैं यदुनंदन गोस्वामी।
1: सुखनगण राज्य अपने नाम के ही समान सुखन को गढ़ हतो। सबई चैन से सुखपूर्वक अपनी गुजर बसर कर रहे हे। लेकिन पंडित रामदीन राम के संग दीनता भी अपने संग लिए भये हे। पंडित रामदीन नेम धर्म बारे शांत चित्त व्यक्ति हे। मगर पंडित जी की घरवारी रमा जई शिकायत रहती वाकू कि अगर जई तरह या घर के आसार रहे तो बच्चन को आगे चल के भविष्य काय होगो। पढ़ावे लिखावे की तो बात ही अलग है। पंडित जी के पुरखऊ कोई ऐसो धन दौलत नाए छोड़ गए जाते के घर गृहस्थी सही ढंग से चल पाती। घर के हालचाल देख के रमा ने पंडित जी को कई बेर राजा चंद्रसेन के पास जाएवे की सलाह पंडित जी को दई, पर पंडित जी हर बार जेई कह के टाल देते। पंडितायन समय ते पहले और भाग्य ते ज्यादा काय को कबहू नाय मिलो है। भगवान पे भरोसा रखो। पंडितायन तब चुप है जाती, पर जब मौको मिलतो तबे ही वो पंडित जी को यही बात कहती कि राजा के पास जाए के अपनी गुहार लगाओ। एक दिना पंडित जी इधर उधर न जाए के सीधे राजा चंद्रसेन ते मिलवे को राजा के महल की ओर चल दिए। दुर्भाग्य ऐसो के महल पे जाए के जब उनने देखो तो दरबारीन ने उन्हें बतायो कि राजा साहब तो महल में है ना है, वो तो शिकार पे गए हैं। जी सुन के पंडित जी भाग्य को कोसवे लगे और वापस घर आए गए। पंडित जी को खाली हाथ देख के पंडितायन भड़क गईं। वो बड़बड़ाती रहीं और पंडित जी चुपचाप सुनते रहे। अगले दिन पंडित जी फिर महल पहुंच गए। बादना भी पंडित जी को निराशा ही हाथ लगी और जब उन्हें ये पता लगी कि राजा अभी शिकार से वापस न आए हैं तो पंडित जी चुपचाप अपने घर को चल दिए। दो चार दिन बाद पंडित जी ने फिर मौको देखो और पूजा पाठ से फारिग है के वो महल की ओर चल दिए। बाद में राजा चंद्रसेन महल में ही उनको मिल गयो। महल के बाहर ही द्वारपाल ने पंडित जी को खुशखबरी दे दी। पंडित जी बहुत ही प्रसन्न मन थे द्वारपाल के पीछे पीछे राजा ते मिलवे को महल के अंदर चल दिए। राजा के सामने जाके पंडित जी ने राजा को हाथ जोड़ के अभिवादन कियो तो राजा साहब ने भी खड़े है के पंडित जी के अभिवादन को स्वीकार करके स्वयं भी पंडित जी को आदर सत्कार के संग पूछो के आप यहाँ का प्रयोजन से आए हो। तो पंडित जी बड़े ही संकोच के संग कहवे लगे, महाराज मोए आपकी अपनी मेहनत की कमाई के केवल 4 पैसा चाहिए। राजा के कान में जे बाक घुसे तो सही मगर राजा समझ ना पायो, भाई विश्वास ना भयो कि पंडित जी 4 पैसा ही क्यों मांग रहे हैं। राजा मुस्कुरा के पंडित जी की तरफ देखो और बड़ी नम्रता से पंडित जी से पूछो कि महाराज मुझे सिर्फ आपकी कमाई के 4 पैसा ही चाहिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हों। मैं तो मात्र 4 पैसा ही चाहूं, यदि आप दे सको तो दे दो और ना तो कोई बात ना है, आप सुखी रहो, हम तो यूं ही चले जाएंगे। राजा ने अब बात को ढंग से समझो, ये सब धन दौलत तो वाकई महल वैभव जो कछु हमारे पास है सब हमारे पुरखान को मिलो।

कछु देर बाद राजा बोला, पंडित जी अभी तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगो, पर आप 2 दिन बाद पधारो। पंडित जी राजा से विदा लेके वापस अपने घर आ गए। पंडितायन ने जब सिगरी बात जानी तो आग बबूला है गई। माने पंडित जी को कही, कैसे मट्टी के माधव हो, इतनी बड़ी जगह पे गए और माते भी केवल 4 पैसा ही मांग के लाए। तो बोले कि अभी तो पैसा मिले भी ना है, उनने 2 एक दिन बाद की कही है। पंडित जी की यह बात है सुन के पंडितायन उनसे और भी कुछ बुरो भलो कहवे लगी, लेकिन पंडित जी चुपचाप सब सुनते भए बाहर को निकस गए। इधर राजा जा चिंता में आ गए और इधर उधर महल में चक्कर काटे कि जे 4 पैसा मेहनत के मैं कैसे दूंगो और क्या करूं। राजा ने कही, देखो रानी, हम एक काम कर रहे हैं, हम भेष बदल के शहर में निकल जाएं और नगर में कहीं कोई काम हमें मिले तो हम जरूर बातें अपनी मेहनत से 4 पैसा पैदा करके लाएंगे। रानी ने जब ये सुनी तो रानी भी राजा के संग महल से निकस गई। दोनों घूमते घूमते इधर उधर काम के तलाश में भटक रहे, तभी उन्हें एक लोहार दिखो जो अकेलो ही भट्टी पे लोहो गरम कर करके पिघलाए के उनते तरह तरह के औजार अस्त्र शस्त्र बना रहे हो। राजा ने बातें विनती करी कि हे लोहार, अगर आपके पास कोई काम हो तो हमें दे दो। तो बाने की, चलो एक से भले दो होंगे। राजा बोलो, हमारी रानी भी आपके यहाँ काम करेगी। राजा बोलो, ठीक है, तुम दोनों लग जाओ, मैं तुम दोनों को रात भर के दो दो आना दंगो। राजा तैयार रह गए, बोले दो दो आना तो 4 आना हुए, मैं तो 4 पैसा ही चाहिए। तो पहले तो राजा बड़े उत्साह के संग काम कर रहे हो, मगर जब लोहे पीटे कूटे और वाय पानी में ठंडो करे, थोड़ी देर में ही राजा थकान ते चूर है वे लगो। इधर रानी को धोखनी दे दी के देखो रानी, तुम चुपचाप ये काम करो कि जा में आंच ठंडी ना पड़े, धोखनी चलाती रहो। बीच बीच में रानी पानी भर के भी लावे लगी। कुछ समय बाद राजा और रानी ही थक के चूर है गए। तब राजा बोलो कि भैया, अब हम पे ये काम ना है पारो। लोहार चुपचाप बोला, भैया तुमने काम तो पूरा करोना है, फिर भी मैं तुम्हें दो दो पैसा दे सकू हूँ। और वो विदा है के चल दिए। 4 पैसा अब उनके पास में आते, राजा बड़ो खुश हो गए, चलो 4 पैसा पंडित जी को दे देंगे तो पंडित जी अपने खुश है के चले जाएंगे। महल पहुंच के राजा ने दूसरे दिन पंडित जी को बुलवाया और आदर के संग वो 4 पैसा उन्हें दिए और बोलो, ये पंडित जी मेरी मेहनत की कमाई है। पंडित जी उन 4 पैसा को लेकर अपने घर आए और पंडितायन के हाथ पे रख दिए। पंडितायन पहले ही झुंझला रही, बाने बाहर निकस के जो तुलसी को थाम रहे हो बापे वो 4 पैसा रख दिए। और कुछ दिन बाद वो पैसा इनकी बात वो भूल भी गई। वो पैसा कब कैसे तुलसी के पूजा करते करते वह तुलसी के थामरे की मट्टी में घुस गए। कुछ दिन बाद उनमें 4 छोटे छोटे पौधा निकल आए। थोड़े ही दिन में वो पौधा झाड़ बन गए और उन पौधान में थे तरह तरह के फूल निकस के आंगन में बिखरवे लगे। पंडिताइन बोली, ये तो और एक मुसीबत आई, रोज कूड़ा और रह जाए। बाने वो पौधा झाड़े तो उनमें देखो सफेद सफेद दाने से भी हैं। उन दाने को भी बाने समेट के भीतर कोठरी में जमा कर दियो। एक दिन वहां साग सब्जी बेच व्यवारी आई तो पंडिताइन बोली, हम पे भैया पैसा तो है ना, ये फूल है, अगर चाहिए तो ले लो। बस साग सब्जी वारी ने बामे देखो क्या वो कुछ गोल गोल मोती से भी हैं। वो उन मोतीन के चक्कर में बोली, ठीक है मो तुम जो दे दो मैं तुम्हें साग भाजी दे दूंगी। और ये अब क्रम बन गया कि रोज वो आती और बामे ते अपने साग भाजी के बदले में कुछ फूल ले जाती। कुछ दिन बाद पता लगी कि राजा साहब ने अन्न जल छोड़ दियो है और राजा कुछ भी खाए पी ना रहे हैं। बाद में पता लगी कि राजा साहब के यहाँ कुछ हंस हैं जो मोती चुगे हैं। राजा के महल में सब चीज तो है पर मोतीन को अभाव है। राजा साहब भी बड़े परेशान है कि कहाँ से मोती लाके इन्हें चुगाऊं। पंडित जी ने जब सुनी तो उन फूलन के जो ढेर लगा हुआ बामे से थोड़े से फूल अपने अंगोछा में बांध के राजा साहब के पास पहुंचे। राजा साहब ने देखो कि अरे जी पंडित जी आप क्या ले आए। पंडित जी बोले, भैया ये हमारे यहाँ पेड़ उगे बामे से झड़े, अगर आपके हंस खा लें इन्हें तो ये मोती हैं जो क्या है ये उन्हें खवा के देख लो। राजा ने वो हंस के सामने डाले तो हंस बड़े जोर से उन पे झपटे और जो भी हंस वो दौड़ दौड़ के उधर आवे लगे और उन मोतीन के खा के शांत है जाए। राजा बड़े प्रसन्न बोले, भैया ये मोती कहाँ से आए, ये तो मोतीन से ज्यादा सच्चे हैं। उनने पूछी तो राजा ने सब बात बताई कि महाराज मैं आपसे मेहनत की कमाई के 4 पैसा ले गए हो, वो पैसा ही ये पेड़ और झाड़ बन के ये फूल दे में और फूल में से ये मोती निकस रहे हैं। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा बड़ा प्रसन्न

0: और बाने उन मोतीन के बदले में जो उनके पंडित जी के घर पे और भी रखे है सब मंगवाए लिए। इतनी प्रसन्नता भई राजा को कि बाने पंडित जी को बड़े मान सम्मान और धन दौलत के संग विदा करो। पंडित जी बोले, ये आपकी मेहनत की कमाई ही जामे से ये मोती निकल रही है।
1: अब भाई आपने जे ब्रज लोक कथा सुनी, मेहनत को फल, कथाकार है यदुनंदन गोस्वामी और अब आपको सुनवा में एक लोकगीत।

0: अभी आपने दामोदर शर्मा के स्वर में जे लोकगीत सुनो।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: और भैया के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

दुख संताप

0: ये थे किशोर कुमार, आशा भोसले और साथी, फिल्म थी इलाका। और अब आप सुनेंगे हरिहरन और साथियों को।
1: भगवान जी का जन्म दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य तुला राशि पर थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लग्न अग्नि राशि है, इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस शुभ योग में जन्म लेने के कारण दुखों के समूह को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति श्री हनुमान जी में है। मंगलवार को जन्मे मंगलमय श्री हनुमान जी मंगल भवन अमंगलहारी हैं। वे मंगल कामना करने वाले अपने किसी भी भक्त का कभी अमंगल नहीं होने देते, उसका सदा मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। एकांत में ले जाकर रामचरित्र का उपदेश देकर उन्हें संकट मुक्त करते हैं। संकट मोचन हनुमान के रूप में काशी में वे आज भी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी सचमुच संकट मोचन कृपा निधान हैं।

0: पंचो जय हिंद।
1: रत्ना बहनी,
0: हाँ ओम भैया।
1: देखो हम पंचे खेती करे थन और सोचे थन कि अपनी खेती में यहाँ ज्यादा ज्यादा मुनाफा होए।
0: भैया आज की जरूरत यह है कि अगर हम पंच खेती करी या कोनो काम करी तो वही में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, वे के खातिर नई नई तकनीकें नई नई जानकारी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी।
1: हाँ तो अपनी खेती में यहाँ देखो समन्वित कृषि प्रणाली अपनावे की जरूरत है। काहे तेरे देखो आके जोन हम पंचे खेती करी थन जोन फसल उत्पादित करी थन वही माँ कबो कबो नुकसान हो जाते।
0: सही बात कहा, तो नुकसान ना हो पावे, पूरी तरह से अपने हाथ खाली ना हो पावे, उनके खातिर खेती के साथ साथ वो खेती से संबंधित जो उन काम होते हैं उनका करत रही, जिसे हमका दोहरा लाभ मिले।
1: हाँ अब देखो हरहा गोरु पाल सकत हो अपने खेती के साथ और मछली पालन कर सकत हो, मुर्गी पालन कर सकत हो।
0: बिल्कुल सही बात कहा, तो इनका करे से जो अपनी खेती के काम में कोई अड़चन हो ना आई, और साथ में यह ई काम करे से अपनी खेती में कहूँ ना कहूँ सहयोगी रहते हैं।
1: और यह बात यह होते जैसे मान लो जोन अपन मुख्य फसल हम बंचे कर रहे हैं अगर वही माँ कोनो नुकसान हो जाते तो जोन दूसर फसल किन जा रही है वही तेरे मुनाफा हो जाते तो हम पंचन के यहाँ घाटा नहीं लग पाओ थे।
0: सही बात कहा था कि अपने हाथ जो है पूरी तरह खाले नहीं हो पावत है, कुछ न कुछ अपने हाथे में यहाँ धन रहा था जिसे काम कोई रुकत नहीं है।
1: हाँ और काम तबहू नहीं रुकत है जब हम पंचन के यहाँ आज की खबरें पता चल जाती हैं।
2: उत्तर प्रदेश में रबी सीजन 2026-27 की तैयारियों के तहत किसानों के लिए प्रमाणित बीजों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग की ओर से गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, सरसों और अलसी सहित विभिन्न रबी फसलों के बीज 50% तक के अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही पात्र किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट का लाभ भी दिया जाएगा। किसान कृषि विभाग की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित अवधि में बीज की बुकिंग कर सकते हैं। गेहूं और अन्य फसलों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने की स्थिति में किसानों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जा सकता है। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते ऑनलाइन बुकिंग कराने का और योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
3: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रत्ना बहनी।
4: हाँ भैया।
3: देखो खरीफ की फसलें अपने ख्यात मैया है इबेरा और जो है महिमा का प्रबंधन किया जाए। अगर कोई विशेषज्ञ भैया तेरे जानकारी मिल जाते तो कन्ना नहीं खोई जाते।
4: तो भैया काहे ना जानकारी दिवा दिन जाए। आज की बातन में खरीफ फसलों में सामायिक प्रबंधन जी के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन भैया।
3: तो आओ जाना जाए।
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की फसलें आपके खेत में खड़ी हैं, तो सामायिक प्रबंधन क्या कुछ करें इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट जमुनाबाद गोला लखीमपुर खीरी से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर पीके बिसेन साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय जहां खरीफ की फसलें खेत में हैं तो सामायिक प्रबंधन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर किसान भाइयों बहनों को ध्यान देना है।
6: किसान बहनों भाइयों आपको सादर नमस्कार। इस समय किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी हमारे देख रहे होंगे कि मौसम की पूर्वानुमान और मौसम की बहुत सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध हो रही है, बारिश हो रही है, और इसको देखते हुए अगर संभव हो तो खेत से अपने पानी, अगर धान का भी फसल

0: है, तो ज्यादा पानी उसमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई प्रजातियां हमारी ऐसी हैं जो कि उस तरह की नहीं है कि उनको पूरा पानी में डूब जाए वो। तो वहां अगर संभव हो तो पानी निकालने की आप व्यवस्था कर सकते हैं। अगर जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है तो वहां पे पानी लगाने की आवश्यकता है, हल्की पानी जरूर लगा दें। साथ ही साथ ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों की जो धान की हमारी फसलें जिन्होंने समय से लगा दिया था उसमें बालियां भी निकल रही हैं, कुछ लोगों की बाली निकलने की अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में अगर आपका जो नत्रजन है जिसका आपने भाग नहीं डाला है तो वो यूरिया के माध्यम से 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका बुरकाव कर सकते हैं। इसके अलावा पोटाश जो हमारे पास है उस पोटाश को भी अगर आप ले लीजिए तो वो जो है अगर आपने डाला ही नहीं शुरुआत में तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले लीजिए, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से आता है उसको डाल दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, जल प्रबंधन की बात चल रही है तो जहां जरूरत से ज्यादा बारिश का पानी खेत में है तो हर फसल में जल निकास
0: जी जी
1: जरूरी है?
0: बहुत जरूरी है, खास करके धान तो हमारा ठीक है, फसल अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन खास करके जो दलहनी फसलें हैं जैसे हमारा है इसमें उड़द है, मूंग है, अरहर है, तिल है, और साथ ही साथ मूंगफली है और मक्का भी है हमारा, ये फसलें हमारी जो है अगर ज्यादा बारिश हो रही है पानी लग गया तो ये सूख जाएंगी और इसमें बीमारी या जो हमारे कीट का भी प्रकोप हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, पोषक तत्व प्रबंधन में धान के अलावा किसी और फसल पर कुछ देना है?
0: इस समय अगर जिसका ये देखने में भी आता है मूंगफली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है अभी कुछ लोगों ने लेट से भी बुआई की है, मतलब देर से बुआई उन्होंने कर दी, तो ऐसे मूंगफली की जो हमारी फसल है उसमें चाहें तो वो जिप्सम को कैल्शियम के रूप में और साथ ही साथ जो आपका बोरेक्स है जिसमें कि बोरान होता है उसका 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और जिप्सम जो है हमारा वो 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर हम डलवा दें खेत में तो इससे क्या होगा कि इस समय फ्लावरिंग मतलब फूल की अवस्था आ गई है मूंगफली में और कुछ लोगों में खूंटी बन रही जो कि हम पेगिंग कहते हैं, तो उसमें ये जिप्सम का जो रोल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और उससे हमारी फसल को फायदा ही होगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने पोटाश की बात की, बहुत सारे किसान भाई बहन बेसल डोज में पोटाश नहीं दे पाते हैं,
0: जी जी
1: तो जो भी खरीफ की फसलें हैं क्या 0050 का छिड़काव
0: जी हाँ
1: फायदेमंद
0: जी हाँ
1: होगा?
0: 0050 का कर सके, लेकिन ये ध्यान रहे कि खेत में उचित नमी रहे, सूखे में ना करें, उचित नमी रहे तभी उसका पानी छिड़काव कर दें, उसका घोल बना लें और घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस समय जब खरीफ की फसलें खेत में हैं तो हानिकारक कीट और बीमारियों के प्रबंधन के लिए फसल सुरक्षा महत्वपूर्ण है?
0: जी हाँ जी, यह बहुत जरूरी है। इसमें फसल सुरक्षा में हमको समन्वित जो कीट प्रबंधन है, समन्वित जो हमारे रोग प्रबंधन है, वो प्रक्रिया हमको अपनाना चाहिए। जैसे धान में अगर हम देखें तो इस समय जो है धान में सुंडी लगती है, अगर संभव हो तो उसमें अगर चिड़ियों को बैठने की अगर व्यवस्था कर दिए हों और उस तरह का कीट आपका जो है प्रकोप नहीं दिख रहा है तो आप दवा कतई न डालें।
1: यानी खेत में बर्ड पर्चर बना
0: जी
1: दें?
0: जी बर्ड पर्चर, उसमें चिड़ियों को बैठाने की व्यवस्था कर दें, और अगर तब भी नहीं रुक रहा है तब आप जो है दवाओं पे जाएं तो पहले उन दवाओं का उपयोग में लाएं जो नीम आधारित हैं, जिसमें कि हम अजाडिरेक्टिन के नाम से मार्केट में हमारे बाजार में उपलब्ध होता है, उसका जो है 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाइए और उस घोल में ये ध्यान जरूर रखिए कि क्योंकि ये जो है फॉर्मुलेशन जो आता है ईसी में आता है जिसको हम इंग्लिश में इमल्सिफाइड कंसंट्रेट कहते हैं, तो ये तैलीय होता है, तो इसको जो है अच्छे से पत्तियों पर फैलने के लिए इसमें आप चाहे डिटर्जेंट पाउडर या शैम्पू का जरूर समावेश करें।
1: ताकि स्टिकर का काम
0: जी
1: करें
0: जी स्टिकर
1: और
0: का, और वो फैल
1: स्प्रेडर
0: जाए,
1: का भी?
0: जी जी वो बूंद जो बनता है वो फैल जाए जो है।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी कई तरह के हानिकारक कीट हैं, जैसे कहीं कहीं तना छेदक कीट की समस्या है, बहुत जगह फुदकों की समस्या है।
0: जी जी तो ऐसे जगहों पे अगर हम देखें तो अगर आपका इन अजाडिरेक्टिन या हमने जैसे पहले पूर्व में आपको बताया अगर इनसे नहीं नियंत्रण होता है तब हमारे पास है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड SP उसको कहते हैं, और ये 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको उपयोग करना पड़ेगा, और इसका जो अगर मात्रा देखें तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाइए और सायंकाल इसका छिड़काव जरूर कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, कारटाप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार में भी आता है?
0: जी हाँ, वो शुरुआती दौर में जब पत्तियां का जो कवरेज है हमारी जो पत्तियां होती हैं उस समय पूरा जो है जमीन को ढकी नहीं रहती, इस समय जो पौधा है वो जमीन को ढक चुका है इसलिए हम दानेदार का जो है हम अनुशंसा नहीं करते, खास करके इसमें छिड़काव के लिए ही अनुशंसा करते।
1: तो इसकी 2 ग्राम मात्रा
0: प्रति
1: प्रति
0: लीटर
1: लीटर
0: पानी
1: पानी
0: में
1: के
0: आप
1: हिसाब?
0: घोल बना के इसका छिड़काव करें सायंकाल करें।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो और हानिकारक कीट हैं तो उनके प्रबंधन के लिए आईपीएम के कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं?
0: जैविक उपाय भी हैं, जैसे बेवेरिया बैशियाना है, दूसरा हमारे पास है मेटाराइजियम है। इसके अलावा स्टिकर्स आते हैं हमारे पास, फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, लाइट ट्रैप्स आते हैं, इनका भी उपयोग हमको खेतों में करना चाहिए। जैसे और दूसरे हैं बैसिलस थिरुजेंसिस, जिसको हम बीटी भी कहते हैं। इसके अलावा

0: न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होते हैं, इनका भी उपयोग अगर इनकी गुणवत्ता अच्छी है अगर आप डालते हैं तो ये टारगेटेड मतलब जिस कीट को हमको नियंत्रण करना अगर उसके ऊपर इनका छिड़काव अगर हो गया तो वो उनको नियंत्रित कर देते हैं। इसके अलावा आपके खेत में भूरा फुदका भी देखने को मिलेगा
1: जी,
0: जिसको कि हम हापर के नाम से जानते हैं,
1: और
0: इस जी हाँ बीपीएच इस समय दिखेगा जरूर क्योंकि ये मौसम है सितंबर का, बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, खेत में नमी बहुत है, तो ऐसी अवस्था में भी आप ध्यान रखें कि खेत से हो सके तो पानी जरूर निकाल दें। इसके लिए दो हम दवा का नाम आपके सामने बोल रहे हैं, अगर ये मिल जाए तो आप उसका जरूर उपयोग करें। एक दवा का नाम है पाईमेट्रोजिन जो कि 50% को हम लोग वेटेबल ग्रेन्यूल कहते हैं जो कि 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मिलता है। या इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दवा और आती है ट्राइफ्लू मेजोरिन करके, ये 94 ml प्रति एकड़ की दर से इसका हम स्प्रे, दोनों में से कोई एक दवा आपको मिल जाए तो इसका आप छिड़काव कर सकते हैं।
1: पानी की मात्रा कितनी होगी?
0: जी हाँ, जब पानी की मात्रा इनमें जो है 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप हमेशा जो है ध्यान रखें कि 200 लीटर का आपका जो है बनाना है ताकि एक एकड़ का आपका अच्छे से आप छिड़काव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बीमारियां भी लगती हैं धान के अलावा और अन्य फसलों में भी?
0: जी जी, हम धान का भी मैं बता दूं, धान में इसमें सीथ ब्लाइट जो है खास करके आपको देखेंगे पत्तियों के नीचे आपको धब्बे लाल रंग के, उससे आपकी बाली टूट के गिर सकती है, तो उसको हम ये रोकथाम के लिए ये ध्यान रखें कि खेत में नमी न रहे और अगर संभव हो तो आप यूरिया कतई नहीं डालिएगा। उसमें एक दवा आती है एजॉक्सीस्ट्रोबिन, उसके बाद उसमें दूसरी दवा होती है डाइफेनोकोनाजाल, इसका जो है 200 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी के हिसाब से मतलब 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर लेंगे।
1: धान के अलावा दलहन और तिलहन भी है?
0: जी हाँ, हम किसान भाइयों को एक चीज और भी बता दें, आप जो दलहन में खास करके उड़द और मूंग हमारा है, अगर प्रजातियों के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो अगर वो प्रजातियां आपके पास हैं जो किसी भी बीमारी से या कीट से अगर वो सहिष्णु हैं और रोधी हैं तो उसमें तो दवा कतई नहीं डालिए, उसमें जो है वो अपने आप उसमें उनके कैरेक्टर हैं कि वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो हम कुछ वैरायटियों का नाम बोलेंगे, अगर है तो उसमें दवाएं नहीं डालिएगा, खास करके मूंग में पंत मूंग 2 है, 3 है, PDM 54 है, PDM 11 है, ML 337 है, नरेंद्र मूंग 1 है, ये विराट भी है, ये जो है पीली पत्ती जो मोजैक बीमारी आती है खास करके सफेद हमारे मक्खी से फैलता है ये, उसमें नहीं आती है, सहिष्णु होते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं। दूसरी जो हमारी उर्द में आती है उसमें भी ये पंत उर्द 19 है, 30 है, PDU 1 है और 1 है, हमारे पास UG 218 तथा नरेंद्र उर्द 1 है, अगर ये भी प्रजाति है तो इसमें जो है पीली पत्ती मोजैक नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आपका नहीं नियंत्रण हो रहा है ये प्रजातियां नहीं है
1: और नुकसान का स्तर अधिक है,
0: अधिक है तब इसमें हम करेंगे, तो इसमें दो दवाओं का एक जो है मिश्रण होता है जिसको हम कहते हैं पायरी प्रोक्सीफेन प्लस बाइफेंथ्रीन होता है, उसका 400 ml प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र जमुनाबाद गोला लखीमपुर खीरी आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाई, आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9453791558, 9453791558, 94-53-79-1558।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि खास करके ये ध्यान दें कि अगर बहुत सारी जानकारियां आजकल इस जो हमारे डोमेन में या कहिए तो कई क्षेत्रों में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं तो अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों से आप जरूर संपर्क करें और अपने ज्ञान का जो है बढ़ोतरी करें, साथ ही साथ जानकारी और इकट्ठा करें, और खास करके जो हमारे पास जो समन्वित कीट प्रबंधन या समन्वित व्याधि प्रबंधन के बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा करिए, उनको खेतों में उपयोग में लाइए और आवश्यकता पड़ने पे ही कीटनाशी या जो हमारे व्याधिनाशी का उपयोग करें, ये ध्यान रखें।
1: डॉक्टर पीके बिसेन साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओम भैया।
3: हाँ रत्ना बहनी,
2: अति नीक नीक जानकारी दे वही के साथ में अगर बढ़िया से गौने सुनवा दो तो कत्ता नीक रहा है।
3: अरे बिल्कुल रत्ना बहनी, देखो गौना लेके आया है, नाव सुना जाए और पंचो भाई सुने सतीश चंद्र श्रीवास्तव भैया के स्वर मैया।

0: रत्ना बहनी।
1: हाँ ओम भैया।
0: देखो अपने बीच में बहुत किसान पंचायत होते हैं जो इतनी मेहनत तेरे खेती के यहाँ बहुत नीकी तना तेरे करत हैं, तो आज के किसान अपने बीच में यहाँ हैं, तो आओ जान लीजिए उनकी कहानी उन्हें की जवानी।
2: किसान भाइयों बहनों आइए आज आपको ले चलते हैं बहराइच जनपद के चित्तौड़ा ब्लॉक के सुरजापुर माफी गांव, जहां नॉन मेसी किसान जय सिंह साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। जय सिंह साहब नमस्कार।
3: नमस्ते
2: सिंह साहब, आप केला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस साल रकबा कितना है आपका?
3: मेरे पास वही 25 एकड़ के आसपास लगता है, इस बार भी 23-23 एकड़ रकबा है, 25,000 प्लांट लगाए हैं।
2: और पुरानी फसल?
3: पुरानी फसल भी इतनी ही थी।
2: तो केला की हार्वेस्टिंग हो गई?
3: कटाई 96% कंप्लीट हो चुकी है, 5 तारीख को लास्ट गाड़ी लद के चली गई।
2: तो ये बताएं कि जो 24 एकड़ आपका केला है, उसकी रोपाई और रोपाई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं?
3: सबसे महत्वपूर्ण

0: बात केले की खेती में समय होती है, और समय बीत जाने के बाद में कभी भी आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलते हैं।
1: आगे कौन कौन सी देखभाल आप खड़ी फसल में करेंगे ताकि जाड़े के पहले आपकी अभीष्ट ऊंचाई तक पहुंच जाए फसल?
0: विशेष करके अभी हमारे पास 60 से 65 दिन बचे हैं 15 नवंबर आने में, और यही ये सबसे तेज बढ़वार का समय है। इसमें गोबर की खाद इकट्ठी की हुई रखी है, जैसे पहला मौका लगेगा वैसे उठा के हम पहुंचाएंगे पौधे के पास, गोड़ जोड़ ठीक से करेंगे। तो हमारी अपेक्षित हाइट जो 3 फुट से 3.5 फुट 15 नवंबर के आसपास आनी चाहिए, उसके लगभग फसल पहुंच जाएगी।
1: अभी जो आपने रुपाई इस बार की है केले की, उसका अंतरण क्या है लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी?
0: मेरे पास में मशीन का काम ज्यादा रहता है, तो 7 फुट लाइन से लाइन है और 4.5 फुट पे प्लांट से प्लांट है। लगभग 1080 से 1100 पौध 1 एकड़ में लगती है।
1: तो फसल की भूख मिटाने के लिए क्या किस्तों में आप उर्वरक की मात्रा देते हैं?
0: जी, ऐसा है कि पिछले अनुभव से, समय से जब हम गोबर की खाद लगा लेते थे, तो नॉर्मली ये देखा जाता था कि 15 नवंबर तक पौधा रुकता नहीं है, उतनी ही गोबर से जो करीब 400 से 500 क्यूबिक फीट 1 एकड़ में हम लगाते थे, उससे उसकी अपेक्षित ग्रोथ 3.5 फुट बन जाती थी। तो उर्वरक बहुत कम देना पड़ता था, ना के बराबर, यूं कहिए सिलेक्टिव फर्टिलाइजेशन करना पड़ता था, जो प्लांट अपेक्षाकृत कुछ छोटे रहते हैं उसको देखते हुए।
1: जी
0: और उसका एक पैमाना था मैंने जो अपने अनुभव से बनाया, कि 15 सितंबर तक के जो पौधा है वो लगभग 10 इंच हाइट जरूर ले ले। अगर छोटा होता था तो उसको 10 दिन पहले से पालना पोसना शुरू कर देते थे। ऐसे ही 15 अक्टूबर तक वो आपका 2 फुट से 2.25 फुट हाइट अवश्य ले ले। और ऐसे पौधे ये देखा जाता था कि 15 नवंबर आने तक 3.5 फुट हाइट 1 मीटर की गर्दन इनकी बन जाती थी।
1: जी तो जो इस बार आपने हार्वेस्टिंग की है केले की फसल, तो उसका
0: जी
1: क्या आंकड़ा रहा? एकड़ में कितना लागत गिरी, उत्पादन कितना तक ले लिए और आपका मुनाफा हुआ
0: उत्पादन
1: कितना?
0: जी 14 रुपए 87 पैसे का एवरेज रेट छूटा है बिक्री का, और एक घार का वजन 24 किलो 24.5 किलो करीब आया है।
1: और लगभग 1100 पौधे प्रति एकड़ आए हैं आपके?
0: 1050 सर्वाइवल 1000 पौधा। इस बार पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि फ्रूटिंग ऑलमोस्ट नहीं 100% आई, और आप यकीन करें कि 96% कट के मैं दिल्ली के पास साहिबाबाद की मार्केट में जहाँ सेल करता हूँ सेल भी हो गया।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है केला उत्पादन का, उसके
0: जी
1: आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो केला उत्पादन से जुड़े हैं?
0: सबसे पहली सलाह ये देना चाहूंगा कि खेत की गर्मी में जुताई गहरी करके खेत अच्छा प्रिपेयर करें, ढैंचे की बुवाई करके उसकी हरी खाद से उसका जीवांश कार्बन बढ़ाएं, और पौधा अच्छी नर्सरी से लेके अपने यहाँ 15 जुलाई से और 20 जुलाई के बीच हर हाल में एक छोटा सा शेड नेट अपनी जरूरत के अनुसार बना के रख लें, और उस पौधे को 2-4 दिन जो आया है, जो थकान है उसकी या जो उसकी जड़ें रूट जोन डिस्टर्ब है, उसको मौका दें कि वो सुधर जाए, और इस बीच में उसकी थोड़ी एनपीके पढ़नी छिड़काव जो 15-15-15 या 19-19-19 से करके, और एक फंजीसाइड जैसे एमी स्टार टॉप है, इसका 0.75 ml पर लीटर 30 दर से हफ्ते में एक बार दो बार करके उनको ये जिलाएं। और इन पौधों में एक बहुत सावधानी के साथ बताना चाहूंगा काम करने को भाइयों को, कि जो ये प्लांट्स आते हैं ये कभी भी एक रूप नहीं होते हैं, उनको अपनी नर्सरी में उतार के ग्रेडिंग करके एक रूप बना लें।
1: जी,
0: जो
1: हार्डनिंग कर लें।
0: पौधे जी आप 4 दिन से 1 हफ्ता भी अगर 5 दिन भी रोकेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा 6 पौधे में 8 पौधे की सेट पत्ती जो आती है उसमें छोटा है, उनको निकाल के एक तरफ कर लीजिए, और जो बड़े पौधे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो आप अपने खेत में जहाँ पर उर्वरा शक्ति ज्यादा है उधर छोटे वाले लगा लीजिए, और जिधर जरा सा खेत नीचा या जहाँ उर्वरा शक्ति हल्की कम है वहाँ वो बड़े लगा लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि छोटे पौधे एक तरफ लग जाएं, बड़े पौधे एक तरफ लग जाएं तो आपको उनके प्रबंधन में भी आसानी होगी और कटाई में एक रूपता रहेगी।

0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 94-151-21-488 9415121488 94-151-21-488।
0: जय सिंह साहब, आज इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: अब ओम भैया, मौसम की जानकारी बता दीजिए। आयस की हम पंचन की खेती जो है मौसम पर आधारित रहा थे।
6: तो जो मौसम की जानकारी प्राप्त है वह भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ तेरे अगले 7 दिन तक का जो वर्षा का पूर्वानुमान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15, 16, 17, 18 तारीख तक संभाग में कहूँ कहूँ वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की संभावना है और 19, 20, 21 तारीखियां मौसम शुष्क रहे की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की संभावना है। तो ये तो रहे मौसम का हाल।
5: ओम भैया, देखो पंच भाई बहनी सब कुछ प्रे कार्यक्रम में सुनत हैं, जानत हैं, लेकिन जैसे कुछ कहा चाहत हैं या बतावा चाहत हैं तो उनके खातिर हम जो है पता सबका पता हो चाहिए।
6: हाँ, तो अपने कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, जो पिन कोड है 226001।
5: और भैया ये तो चिट्ठी पत्री वाला पता है, और एक नवा पता चलत है, वो है ईमेल एड्रेस।
6: तो ईमेल भेजे खातिर जो अपन पता है farmandhomeairlko@gmail.com।
5: तो चले खोई रही बिरिया और पंच भाई से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। केंद्र सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने बदलावों को किया अधिसूचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज। ये अभियान नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ेगा। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में अपनी पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट का किया विमोचन। स्कूली बच्चों से साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस परियोजना का लगभग 90% वित्तीय भार भारत सरकार वहन करेगी और शेष 10% राशि 1994 के समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस समझौते को जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता को नई शक्ति मिलेगी। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा, जहां 1562 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण होगा। इससे 97,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जल विद्युत भी प्राप्त होगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आज 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट में साल के 11 महीने एथेनॉल बनाने का काम होगा।
2: 19 वर्ष पहले शुगर फैक्ट्री बंद होती, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ है, इथेनॉल प्लांट जो गन्ने से मक्का और धान, गन्ना समाप्त होने के बाद मक्का और धान से इथेनॉल बनाया जाएगा। ये प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। जो भी इथेनॉल की मात्रा 3,96,00,000 लीटर एक साल में इथेनॉल बनेगा एक साल।
0: मंत्रिपरिषद ने अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रदेश के पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क

0: की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में समीक्षा बैठक कर अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में हापुड़ के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर एक माह तक चलने वाले इस अभियान की कार्ययोजना पर चर्चा की। उधर शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को अभियान के सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से कराने और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ना है।
2: सेवा संकल्प के अभियान को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन और संगठन के समन्वय के साथ कार्य योजना तैयार की है। 17 सितंबर को शाहजहांपुर जनपद में रक्तदान का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद सबसे पहले लगातार 17 अक्टूबर तक बहुत सारे अभियानों के माध्यम से जन कल्याण की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को देने का काम भी पूर्ण होगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए निर्माण कंपनियों से बैंक गारंटी ली जा रही है। साथ ही निर्माण के अंतिम भुगतान का ऑडिट भी थर्ड पार्टी से कराने का फैसला लिया गया है। श्री मिश्र ने बताया कि अब रामकथा संग्रहालय का काम शुरू होगा जिसके लिए 10 अक्टूबर से टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।
3: संग्रहालय का जो सबसे बड़ा कार्य अब शुरुआत होगी आने वाले 10 अक्टूबर तक टेंडर जारी की जो टेक्नोलॉजी होगी उसका हार्डवेयर होगा सॉफ्टवेयर होगा वह बनाना है और उसको अंतिम रूप दिया जाए। अनुमान है कि टेंडर फाइनलाइज जो कि अक्टूबर के अंत तक कदाचित हो पाएगा उसके बाद लगभग 6 महीने लगेंगे गैलरी को कम्प्लीट करने में।
1: अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज लखनऊ में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में अपनी किताब द सेकेंड ऑर्बिट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और युवाओं के साथ संवाद किया और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में जानने की जिज्ञासा है और उन्हें सही दिशा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है।
4: ज्यादातर सवाल प्रैक्टिकल थे कि हम क्या करें हम कैसे आगे बढ़े और हम कैसे इन फील्ड्स में पार्टिसिपेट करें। तो आई थिंक कि जिज्ञासा है वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं और आई थिंक अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये पूरा इकोसिस्टम इनेबल करें ताकि जो बच्चे आज स्कूल में हैं कल को वो निकल के भारत के लिए इन क्षेत्रों में कंट्रीब्यूशन कर सके।
1: भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। वर्ष 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में राज्य के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। कहा जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। केंद्र सरकार ने कहा 2000 रुपये तक के यूपीआई भुगतान

पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, वित्त मंत्रालय ने बदलावों को किया अधिसूचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज। ये अभियान नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ेगा। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में अपनी पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट का किया विमोचन। स्कूली बच्चों से साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिल रहे हैं उनके नाम हैं, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान अब्बासी और उनके परिवार के सभी सदस्य। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी चेतन, विशाल और बेबी प्रियांशी। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधबड़े, अनीता गाठोड़े और रमेश राव गाठोड़े। बीड शहर से शेख चांद, शेख अदनान, महादेव परदेशी, शेख जाकिया बाजी और शेख नुमान। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। आप हैं कलनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। गांव गोपी की नगरिया से मिठल लाल सारस्वत, नेहा नीरज निकेता और इनके माता पिता। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार। गांव नगलापोला से विजय सिंह, पवन, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, भोला, करण, नमन, अनुराधा और इनके माता पिता। गांव नौघरा से कोमल मास्टर, शिवानी, संजना, यशोदा, सूरज और इनके परिवारीजन। गांव कुमोद वन से सुनील, गब्बर, रचना और इनके परिवारीजन। आप हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े और विशाल वानखेड़े। मोताला महाराष्ट्र से हैं राज गवई और राजवीर गवई। सिद्धार्थनगर दयापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। श्री बडने रकुला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। सब्जी मंडी बुलढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मदस्सीर हुसैन। कोटिया नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हप्पी राय। दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह। तहसील नरसिंहगढ़ जिला रायगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश, चंद्रडांगी और उनके परिवारीजन। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप जाजोरिया, आरजू और गुड्डू। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, परिधि और मायरा सुरेशे।

बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, साधना पवन पाटिल, सुमित कुमार दामोदर, नागचुंग रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर, जियोल हक डाबर और मोहम्मद उमर डाबर, भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले और लोकेश एस काले, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, ऋषिता और उनके परिवारीजन, लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार और समीर खांडे, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी रजमत वर्मा, मुरली नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना परियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आइए सुनते हैं आप सबके लिए प्यासा सावन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म थी प्यासा सावन। और अब जो संदेश हमें मिले उनके नाम हैं साईं की शिरडी से सुरेश मालोदे, वर्षा, श्रद्धा और मानसी मालोदे। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू, पप्पी भाटिया, तमन्ना भाटिया। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण श्रीनिका और श्रीनिजा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन और मेघा मस्कीन। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिदान खुराना। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। धनोरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। आप हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनसुया जाधव, पवन राजे जाधव। छत्रपति संभाजीनगर से महेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज। आप हैं नाज मंजिल महसूल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। आइए सुनते हैं आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज में गीत। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है। संगीत निर्देशक हैं आर डी बर्मन।

ये थे किशोर कुमार, फिल्म थी मेरे जीवन साथी। और अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर, गीत अनजान का संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी। हमें जो नाम मिले उनके नाम हैं खड़क सिंह छोकर, एडवोकेट, प्रकाश नगर, मथुरा। आप हैं लाल माता सुदामा नगर, रटलाई, जिला झालावाड़ा, राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रटलाई, जिला झालावाड़ा, राजस्थान से मन भावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और पुनदी भाई बागरी।

आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोराना और उनके मित्रगण और परिवारीजन, खमारिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, समता नगरी काष्टी से लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया शिंदे, निशांत जगताप, नीलेश, हरिभाव बिडवे और बंडू पोपलघट, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू, ईशु बाबा और पेंटर बाबू।

ये थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार, फिल्म थी कभी कभी, गीत साहिर लुधियानवी का था, संगीत निर्देशक थे खयाम। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं, वाणिंगखेड़ा से जो कि पंजाब में है, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रमभांडे, भारती रमभांडे, जानवी वैष्णवी और हर्षल रमभांडे, रंगोली राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, क्रांति भगत और उनके मित्रगण और परिवारीजन, चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल और उनके मित्रगण और परिवारीजन, गटके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और उनके परिवारीजन, गांव फजलिका से ओम बगड़िया, क्रिया शुभ बगड़िया।

और गरिमा बागड़िया। छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। सदर बाजार मारवाड़ बेलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान। और अब इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश। फिल्म थी क्रांति, गीत संतोष आनंद का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 16 सितंबर 2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार का विषय होगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। किसान भाई, पशुपालक भाई, बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था,

ये थे आशा भोसले, शब्बीर कुमार और प्रयागराज। फिल्म थी कुली। संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 16 सितंबर 2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रजगामिनी कार्यक्रम में इस बार का विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। किसान भाई, पशुपालक भाई, बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल कैसे करें, जैसे पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव, खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोटू जैसे रोगों से बचाव की जानकारी हेतु आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से। याद रखिएगा, कार्यक्रम का समय रहेगा कल 16 सितंबर शाम 6:50। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है दिल ने फिर याद किया। पहले सुनिए इस फिल्म में सोनू निगम और अलका याग्निक को।

ये थे विनोद राठौर और कविता कृष्णमूर्ति। इसी के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी दिल ने फिर याद किया। गीत समीर के थे, संगीत निर्देशक थे आदेश श्रीवास्तव। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद

0: अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
2: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
3: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली

0: शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
1: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
2: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2,000 तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। ₹2,000 से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि ₹75,000 और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये $43.81 अरब तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर $26.86 अरब पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
3: We need to develop sports infrastructure.
4: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
3: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
2: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और NEET प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
5: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त

0: फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India.

एक महल हो सपनों का, यह था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। आवाज़ किशोर कुमार की थी, गीत सहर लुधियानवी का था, संगीत निर्देशक थे रवि। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है खानदान।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हम साया फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत एस रिजवी का था, संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जगवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया।
1: नमस्कार, कार्यक्रम मंथन में आप सबका अभिनंदन। श्रोताओं, आज का विषय है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक और सलाहकार डॉक्टर जगवीर सिंह। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको।
1: करते हुए कि स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान जो है ये क्या है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर प्रकाश डालें।
2: जो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जो इकोलॉजिकल चुनौतियां देखें तो उसमें सागर से संबंधित, ओशन संबंधित काफी बड़ी चुनौती

0: चुनौती का सामना कर रहे हैं हम लोग। और यदि हम जलवायु परिवर्तन का भी देखें तो उसका भी प्रभाव एक पड़ रहा है, वो तो है ही है। साथ में हम लोगों की कुछ जो मानव जनित जो गतिविधियां हैं, विशेष करके प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का, उससे इकोलॉजिकल एक डिसबैलेंस पैदा हो रहा है। तो इसके लिए अब आवश्यकता है कि हम लोग समुद्र की ओर, जिनको हम समुद्र देवता भी बोलते रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दें, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस में हम सहभागी हो सकें और अपने खुद के हित के लिए बहुत आवश्यक है।
1: महोदय, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान ने 2022 में 75 दिनों और 75 लोकेशन से 17 सितंबर में इसकी शुरुआत की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आज इसके विस्तार को अगर हम देखें और जन भागीदारी को अगर हम देखें, तो आपके लिहाज से आप इसे कैसा आंकते हैं?
0: बिल्कुल, आपने सही कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बाकी मंत्रालयों के साथ में मिलकर के 2022 में इसकी शुरुआत की थी, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। और आपको जानकर हर्ष होगा कि उस समय, जैसा कि 75 वर्ष आजादी के हम लोग मना रहे थे, तो माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका जो एक रहा मार्गदर्शन, जो एक सोच रही कि एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम लोग इसको एक दिन की बजाय इसको 75 डेज का हम लोग करें एक्टिविटी, और उसके चलते हुए हम लोगों ने 75 डे लॉन्ग एक एक्टिविटी की थी, जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर की शुरुआत हुई। और जो 17 सितंबर को उस समय इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे था, जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि हर वर्ष तीसरे शनिवार को पड़ता है सितंबर में, ये तो 2022 में जो तीसरा शनिवार था वो 17 सितंबर का था, तो उसी के अनुसार हम लोगों ने 75 डेज लॉन्ग एक्टिविटी की थी, जिसमें हमारे साथ में बाकी मंत्रालय भी शामिल थे, विशेष करके इंडियन कोस्ट गार्ड और साथ में NSS, यूथ अफेयर, ये सभी लोग हमारे साथ में थे और शिपिंग एंड पोर्ट भी हमारे साथ शामिल था। तो वो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी साबित हुई। और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जब ये शुरुआत की थी तो उस समय था कि हम लोग जैसे कि 75 डेज, 75 ईयर ऑफ आजादी और साथ में 75 लोकेशंस एट दी कोस्ट, ये हम लोग एक पक्का पल साथ चले थे। और हम लोगों ने अनुरोध किया था बाकी सभी जो हमारे संगठन हैं, जितने भी हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, छात्र वर्ग है और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस को भी हमने, इरेस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन, मैं बात कर रहा हूँ, सभी के साथ हम लोगों ने एक अपील की थी और परिणाम जो हुए बहुत ही उत्साहजनक थे वो।
1: आपने जिन 75 लोकेशंस की बात की है, अलग अलग लोकेशंस, मैं ये मान करके चलती हूँ क्योंकि जगह अलग अलग है तो अलग अलग तरह की वहाँ पर अनुभूतियाँ रही होंगी, तो कैसा रहा हर जगह पर काम करना, किस तरीके से वहाँ पर काम किया गया?
0: मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो परिकल्पना की थी, हम लोग जिस काम को लेकर चले थे, वो 75 जगह के लिए 75 कोस्टल लोकेशंस, और एक बहुत ही अच्छी भावना के साथ हम लोग चले थे और हम लोगों ने अपील की थी, अनुरोध किया था सभी से के सहयोग करें इस काम में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको और हमारे जो श्रोता हैं आकाशवाणी के, उनको बहुत खुशी होगी जानकर के, और जो हमारे साथ शामिल रहे हैं इस कार्य में, मैं उनको बहुत बधाई देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे साथ में युवा छात्र, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और संगठन, जो स्वयंसेवी संगठन, साथ में स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, सभी लोग जब जुड़े मंत्रालयों के अलावा, तो 836 स्थानों पर ये एक्टिविटी हुई, जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर बजाय 75 प्लेसेस के 836 लोकेशंस में हुआ। और उसमें भी आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि हम लोगों की जो कल्पना थी कि हर एक लोकेशन पर 75 हमारे खुद के एम्प्लॉय सरकारी लोग और साथ में बाकी छात्र लोग शामिल होंगे।
1: युवा भागीदारी आप इतनी महत्वपूर्ण क्यों देखते हैं इस परिपेक्ष में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
0: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 से ही हम एक बात देख रहे हैं कि वैसे भी बहुत योगदान रहा ही है हमेशा कि NSS विशेष करके और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के बाकी जो ब्रांचेज हैं, उसमें वो लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ में आए थे। और अभी तो हमारे साथ में स्काउट्स गाइड भी इसमें जुड़ गए हैं और NCC भी साथ में था, तो उसके चलते हुए एक और साथ में जो और यूनिवर्सिटी कॉलेज जुड़े और जाकर स्वयंसेवी संगठन जुड़े, उसके चलते हुए ये संभव हो पाया कि इतनी सारी जगह पर 836 लोकेशंस में, और वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा 1,25,000 से ज्यादा लोग बाग उसमें सहभागी हुए। और यदि आप देखें कि बाकी जो था, जैसे कि उसी समय था कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर काफी जोर दिया था कि उसको हमको इरेडिकेट करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी मात्रा में वहां से सिंगल यूज प्लास्टिक हटाया गया 2022 में।
1: जी, हम ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बहुत ही एक तरीके से, अगर मैं कहूँ कि ये खतरा है हमारे पूरे मैनकाइंड के लिए, तो ऐसे में समुद्र में जो पहुंचने वाला प्लास्टिक है, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि वो धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है, जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया। और इसी पर मैं आगे आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो फूड चेन में अल्टीमेटली ह्यूमन तक आता है, क्योंकि वो जो माइक्रो प्लास्टिक पानी में जो जीव जंतु हैं उन्होंने उसे कंज्यूम किया और फिर वही सी फूड जो है हम तक आ रहा है, तो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखते हुए देखें उस लिहाज से ये अभियान

0: हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है।
1: ये एक आपने बिल्कुल सही कहा है कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो भी अभी अध्ययन हुए हैं कुछ, उसमें वो ह्यूमन बॉडी में पहुंचा हुआ पाया गया है,
0: जी
1: तो वो वाकई एक बुरी खबर है,
0: बहुत ही बड़ा
1: बहुत
0: खतरा।
1: खतरा है और बुरी खबर है। और आपको याद होगा अच्छी तरह से, सभी हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2022 में भारत पार्लियामेंट ने पास किया जिसमें कि सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैंड, तो वो एक सरकारी तरीके से जो एक नियम बना वो एक बड़ा नियम है। नियम केवल काम नहीं करेगा, अकेला नियम, हम लोगों का जो बिहेवियरल चेंज है उसकी बहुत आवश्यकता है। तो उसके चलते हुए जैसे ये स्वच्छ सागर स्वच्छ सागर एक अभियान जब चलाया गया 2022 में, जैसे मैं बताया कि एक विशेष परिकल्पना के साथ में चलाया गया, उद्देश्य के साथ चला गया, ये उसके तुरंत बाद ही था। और इसके जो उद्देश्य था वो ये था कि बिहेवियरल चेंज भी हो लोगों में, बजाय सिंगल यूज प्लास्टिक के हम लोग कपड़े के थैले का उपयोग करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि इसके

0: तो जो एक नियम बना वो एक बड़ा नियम है। नियम केवल काम नहीं करेगा अकेला नियम, हम लोगों का जो बिहेवियरल चेंज है उसकी बहुत आवश्यकता है। तो उसके चलते हुए जैसे ये स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर एक अभियान जब चलाया गया 2022 में, जैसे मैं बताया कि एक विशेष परिकल्पना के साथ में चलाया गया, उद्देश्य के साथ चला गया, ये उसके तुरंत बाद ही था। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि बिहेवियरल चेंज भी हो लोगों में, बजाय सिंगल यूज प्लास्टिक के हम लोग कपड़े के थैले का उपयोग करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि इसके तुरंत ही हमारा जो मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, हम लोग हर वर्ष पृथ्वी दिवस का आयोजन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इस वर्ष भी लगभग जगह जगह पर ये किया गया 200 विद्यालयों में, और वहां पर हम लोगों ने इसको बढ़ावा दिया कि हम लोग पर्यावरण प्रकृति संरक्षण का ध्यान दें और हम लोग थैले का उपयोग करें कपड़े के थैले का बजाय प्लास्टिक जैसी चीजों के। तो ये एक बिहेवियरल चेंज की अवस्था। दूसरा जो सरकार ने कहा है, जो सरकार का जोर है कि रिड्यूस रिसाइकिल रीयूज, तो एक परिवर्तन जो सुखद देखा जा रहा है कि ना केवल सरकारी संस्थाएं बल्कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पर काफी ध्यान देना शुरू किया उन्होंने, और लोगों में भी विशेषकर विद्यार्थियों में चेंज आया है कि वो प्लास्टिक के बजाय वो लोग बाकी चाहे वो कपड़े के बैग हों या फिर जूट के थैले उसका उपयोग काफी मात्रा में बढ़ाया धीरे धीरे।
1: क्योंकि आपने व्यवहारिक स्तर पर बदलाव की बात की है जो कि समाज में बहुत ही निजी तौर पर शुरू हो सकता है कि हमारा व्यवहार किस तरीके से पर्यावरण के प्रति रहे। ऐसे में और इस बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण एक मोटा माटी स्तर पर, क्योंकि यहां पर तो हम समुद्र की सफाई की बात करते हैं, समुद्र की सुरक्षा की बात करते हैं, भारत अपने आप में, भारत का जो तटीय खिंचाव है वो
0: 11,098 किलोमीटर
1: है, हम सब जानते हैं। तो उसे साफ करना, गंदा करना, फिर साफ करना, मतलब लगता है ये कितना लॉन्ग टास्क हो जाता है। तो पहले ही हम अपने आप को इस तरीके से बना करके रखें कि हम नहीं गंदगी फैलाएं। तो आपने जिस बिहेवियरल चेंज की बात की या निजी स्तर पर एक अप्रोच की बात की जो बदले, इसके लिए क्या कोई कैंपेन या किसी तरीके की जागरूकता इस संदर्भ में फैलाने की कोशिश की गई हो इस 4 साल के अंतराल में?
0: हाँ, ये अभी एक परिवर्तन बहुत बड़ा देखने में आ रहा है। आपने देखा होगा, स्वयं भी आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये स्वच्छता ही सेवा, तो जब से ये कैंपेन विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे जब किया ये, तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है समाज में कि लोग बाग सफाई के प्रति वैसे, और चाहे वो जल हो तो हमने जल को पानी नहीं, हमने जल देवता ही कहा, वायु देवता, अग्नि देवता, समुद्र देवता। तो हम लोगों का एक जो सम्मान रहा है प्रकृति के प्रति वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठा हुआ है। और साथ में जो हमारे जो संविधान में जो अगर आप देखेंगे विशेष करके जो अनुबंध हैं कुछ वो भी प्रकृति के संरक्षण और उचित उपयोग पर जोर देते हैं।
1: एक सप्ताह भर इस अभियान को मनाया जाएगा जो कि आज से शुरुआत है। कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं इस अभियान के अंतर्गत होंगी जो उत्साह वर्धन का काम करेंगी युवाओं में और जो वहां के रिहायशी जो लोग हैं उनके लिए?
0: इसमें देखिए पूरा एक हफ्ते का ये प्रोग्राम रखा गया। इसको माननीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 1 सितंबर को लॉन्च किया था डिजिटली। उसके बाद में 12 से 19 सितंबर तक का ये एक हफ्ते का प्रोग्राम है, क्योंकि 19 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी है इस समय। एज आई टोल्ड यू, एक हफ्ते की जो गतिविधियां वो इस तरह की रही हैं हम लोगों की कि जिसमें कि सब लोग ठीक से जुड़ सकें। जैसे कि 12 तारीख को शुरुआत हुई तो इनॉग्रल डे था वो, जहां पर ईस्ट कोस्ट में अगर हम देखें वेस्ट बंगाल के दीघा में वहां पर एक्टिविटी, हमारे यहाँ के संयुक्त सचिव वहां पर थे और डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट थे वहां पर, बाकी साइंटिस्ट और वहां के स्टूडेंट्स दीघा बीच में 12 तारीख को। उसी समय अगर हम देखें वेस्ट कोस्ट पर तो गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 1000 स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित की थी, कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल इकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो उसमें इतना ये इम्पोर्टेंट विषय है कि वहां पर माननीय राज्य गृह मंत्री भी आए थे, माननीय नित्यानंद राय जी, उसमें माननीय जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी, उन्होंने ऑनलाइन कनेक्ट किया था, और साथ में जो वैलिडिक्ट्री सेशन था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सचिव डॉक्टर टी श्रीनिवास कुमार उसमें थे। उसी समय आपको बताना चाहूंगा कि हर एक कोस्टल स्टेट से उसमें सहभागिता थी, उसमें सभी लोग वहां मौजूद थे और वहां पर एक प्लेज भी ली गई, एक शपथ ली गई जो कि समुद्र के प्रति जागरूकता और रख रखाव और ध्यान के लिए थी। 12 के बाद में 13 तारीख को संडे ऑन साइकिल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम स्वच्छता ही सागर सुरक्षित सागर के लिए उन्होंने लगभग 3000 से अधिक स्थानों पर किया। और इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि 14 तारीख को भी मैराथन हुआ, 15 को भी एक्टिविटीज हैं, और अगर देखें 16 तारीख को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो हमारे जो विभाग हैं जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग और

0: बाकी विभाग, वो लोग पूरे देश में जगह जगह पर ओजोन दिवस मना रहे हैं। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे 17 तारीख को एक प्लेज का सभी जगह, प्लेज और ह्यूमन चेन, जो कि समुद्र के प्रति अपनी जागरूकता और समुद्र का रखरखाव के लिए है।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई समुद्र को लेकर के, उसके संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के। एक बहुत ही बड़ा अभिन्न अंग है ब्लू इकोनॉमी, जो बहुत सारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एक साफ समुद्र मछुआरों, कोस्टल बिजनेस और लाखों तटीय परिवारों की जो रोजी रोटी है उसको बहुत ही महीन स्तर पर प्रभावित करता है। ऐसे में अगर हम इस अभियान की परिकल्पना को देखें और पिछले 4 साल में किए गए जो हमारे कर्म हैं इसके प्रति, और जो हमारा डेडिकेशन, जो समर्पण रहा है, इस लिहाज से इसकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है?
0: इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका बार बार उल्लेख किया है, ब्लू इकोनॉमी की जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो समुद्र हैं वो हम लोगों को काफी उनकी जानकारी है नहीं, और जितना हमको मिल रहा है उतना ही हमको जानकारी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि मोर देन 50% ऑक्सीजन हम लोगों को समुद्र से मिलती है। और सरकार का जो एक विजन है, जो सोच है, जिस तरह की अब लोग हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं, तो एक परिकल्पना है 2035 तक हम लोग 7-8% जीडीपी का हिस्सा ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से होगा। और यहां तक आप देखें कि वर्तमान में जो भी हम लोगों के प्रयास चल रहे हैं सरकार के, भारत सरकार के, लगभग 40 करोड़ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार से जुड़े हुए हैं उससे संबंधित। और प्रोपोर्शनेटली उम्मीद के वास्ते आप अंदाज लगा सकती हैं कि 2035 में निश्चित तौर पर एक उसमें बहुत अच्छा इजाफा होगा।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर जगवीर सिंह जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए।
0: धन्यवाद प्राची जी, आपका भी और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जगवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 9289094044। मंथन।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: कार्यक्रम खेल दर्पण में आपका स्वागत है, मैं हूं दीपांकर मिश्र। श्रोताओं, खेल का मैदान केवल पदक जीतने की जगह नहीं है, यह सपनों को पहचान देने, अनुशासन सीखने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने का भी माध्यम है। भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनमें से कितनी प्रतिभाएं सही प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर प्राप्त कर अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचा पाती हैं। विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों में अनेक बच्चे ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि इस प्रतिभा को सही दिशा कैसे दी जाए। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है छोटे शहरों की प्रतिभाएं, सपनों से सफलता तक का सफर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजय वर्मा, जो लंबे समय से खेल जगत को करीब से देखते और समझते रहे हैं। साथ ही हमारी दूसरी प्रतिभागी हैं सीमा विश्वकर्मा, जो कि रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिम्नास्टिक की कोच हैं और जो युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी। संजय जी और सीमा जी, आप दोनों का खेल दर्पण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: संजय जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करते हैं। जब हम भारतीय खेलों की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर बड़े शहरों या बड़े प्रशिक्षण केंद्रों और चर्चित खिलाड़ियों पर जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर छोटे शहरों और कस्बों में खेल प्रतिभा की वास्तविक स्थिति आप किस तरह से देखते हैं?
3: आज जहां तक खेलों का सवाल है, पूरी दुनिया में खेल खेल नहीं रह गया है। ये किसी भी विकासशील देश की बात हो, चाहे विकसित देश की बात हो या

0: विकसित देश की बात हो, सभी में खेलों की स्थिति बदली है। विज्ञान तकनीकी, आर्थिक संपन्नता, यूथ पावर, सभी कुछ इसमें समाहित हो गया है और यह ताकत का विषय हो गया है। चाहे ओलंपिक की बात लें, चाहे एशियन गेम की बात लें, इसमें भारत जैसे देश में जहां पे 70% भूभाग छोटे जगह पे है और कृषि प्रधान क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसमें है। लेकिन निश्चित रूप से हम बड़े शहरों की तुलना को अगर गौर करें तो छोटे शहरों में या छोटे कस्बों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गरीबी भी आता है, आर्थिक कमी भी आती है और खेलों को पढ़ाई के बाद लिया जाता है, यही कारण
1: जी,
0: साफ दिखता है।
1: तो संजय जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि समस्या जो है वो प्रतिभा की कमी की नहीं है, बल्कि प्रतिभा को पहचानने और उसे सही अवसर देने की है?
0: निश्चित रूप से सर, भारत में कस्बों में गांव में टैलेंट बहुत ज्यादा है, चाहे वो किसी विधा को लें। खेल ही नहीं, कई ऐसे विषय हैं जिसमें भारत की प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो पूरी तरह से वहीं चूक जाती हैं क्योंकि वो जिले स्तर पे वो बहुत पहचान नहीं बना पाती हैं या उनको कोई खोजने वाला नहीं है। हम यहीं पे गड़बड़ हो जाते हैं और जो जिला स्तर से कोई चीज नहीं होती है तो आगे देश पे जाने में थोड़ी कठिनाई होने लगती है।
1: जी सीमा जी, अब आप पर आते हैं। आप जो हैं वो युवा खिलाड़ियों के साथ काम करती हैं, तो जब कोई बच्चा पहली बार जिम्नास्टिक सीखने आपके पास आता है तो आप उसमें किन गुणों को देखकर समझती हैं कि इसमें आगे बढ़ने की क्षमता या प्रतिभा है?
2: सबसे पहले तो हम बच्चे का बॉडी फिगर देखते हैं, वो कैसा है, मोटा ना हो, ज्यादा पतला भी ना हो, उसके पैर फ्लैट फुट ना हो, नॉकनी ना हो, हाथ पैर सीधे होने चाहिए, टेढ़े नहीं होने चाहिए। ये सब देखते हुए उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अधिक से अधिक होनी चाहिए, तब हम लोग उसको जिम्नास्टिक के लिए रिकमेंड करते हैं।
1: जी, ये तो हो गई बात उनके शारीरिक क्षमता की। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या एक अच्छे जिम्नास्ट के लिए केवल शारीरिक क्षमता ही पर्याप्त होती है या आप उसमें कुछ मानसिक तौर पर उसकी मानसिक दृढ़ता या अनुशासन जैसी चीजें भी देखती हैं?
2: मानसिक तौर से भी स्ट्रांग होने चाहिए और फिजिकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए,
1: दोनों का समन्वय होना। जी अच्छा, संजय जी, क्या आपको लगता है कि आज छोटे शहरों के खिलाड़ियों को मीडिया या अन्य खेल संस्थानों में पहले की तुलना में अधिक पहचान मिल रही है?
0: निश्चित रूप से सर, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। खेलों में जो परिवर्तन हुआ है, आप देखेंगे पहले क्रिकेट या कई ऐसे खेल हैं जिसको एक विदेशी या खेलों या बहुत संपन्न लोगों का माना जाता था, आज गांव से क्रिकेट में निकलने लगे हैं प्लेयर। हॉकी में भी यही स्थिति है, कुश्ती बॉक्सिंग वगैरह में तो पहले से निकल रहे थे, एथलीट भी में आने लगे हैं। इसलिए गांव का कहीं ना कहीं विकास तो जरूर हुआ है, जब से खेलो इंडिया या इस तरह का स्कीम चला है कहीं ना कहीं असर है और गांव से हर खेल में लगभग बच्चे आने लगे हैं।
1: जी अच्छा, किसी भी खिलाड़ी की यात्रा की शुरुआत जो है वो बहुत छोटी उम्र से होती है, लेकिन समस्या ये होती है कि अक्सर जो माँ बाप हैं, माता पिता, यह तय नहीं कर पाते हैं कि बच्चे की अगर रुचि है तो उसे केवल शौक रहने दिया जाए या उसे गंभीर प्रशिक्षण दिलाया जाए। तो सीमा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसी भी माँ बाप को कब ये समझना चाहिए कि नहीं, बच्चे में खेल की प्रतिभा है और उसे विशेष प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता है।
2: बच्चा अगर एक्टिव है, बहुत खेल में रुचि रखता है, तो माँ बाप को चाहिए कि वो उस प्लेटफॉर्म तक ले जाए और जो वो बच्चा खेलना चाहता है उसमें उसका एडमिशन कराएं और ट्रेनिंग दिलवाए। इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। ले जाना और ले आने में बहुत मेहनत लगती है, एक छोटे बच्चों के साथ अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है।
1: और साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे जिम्नास्टिक है तो क्या उसमें कम उम्र में शुरुआत करना जरूरी है?
2: जी सर, बड़े होने पे बॉडी स्टिफ हो जाते हैं, 4 साल के बच्चों में लचकीलापन होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छे से, उसको अच्छे से हम लोग करा सकते हैं।
1: जी यानी कि अगर कम उम्र से करें तो वो बेहतर संभावनाएं उनमें होंगी। जी संजय जी, दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि कई माता पिता जो हैं वो पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए खेल को समय की बर्बादी मानते हैं। बड़ा पुराना सवाल है ये, है ना, लेकिन हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि हम इससे उबर गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या ये सोच बदल रही है?
0: नहीं, देखिए सोच काफी बदली है। देखिए भारत, मैंने पहले भी कहा, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी चीज समस्या रहती है रोजी रोटी की। तो जब भी अभिभावक आता है सबसे पहले सोचता है कि हमारा लड़का इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए या किसी पेशेवर उसमें जाए, तो इसलिए खेलों की स्थिति खराब हो जाती थी। लेकिन जब से लीग चलने लगे हैं, जैसे कि आप देखिए आईपीएल चलने लगा, इंडियन हॉकी लीग चलने लगा, इंडियन फुटबॉल लीग चलने लगा, कुश्ती के

0: कमीशन बढ़े तो पैसे अच्छे मिलने लगे। खेल को जब से पेशा में जोड़ा जाने लगा है तब से थोड़ी सी स्थिति अभिभावकों की भी बदली है। अब वो देखते हैं कि बच्चों में काफी कुछ अच्छा है खेल के लिए तो खेल के लिए छोड़ रहे हैं। हालांकि इसमें पर्याप्त सुधार अभी भी जरूरत है, अभिभावकों को थोड़ा सा अभी भी सोचने की जरूरत है।
1: जी सीमा जी, आप जिन बच्चों को प्रशिक्षण देती हैं स्वाभाविक है कि वो पढ़ाई भी करते होंगे, स्कूल भी जाते होंगे, तो एक प्रशिक्षक के रूप में आप उन्हें करीब से देख रही हैं, आपको क्या लगता है कि खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाया जा सकता है?
2: जी सर, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाई के साथ साथ खेल का विकास किया जाए तो खेल भी आगे बढ़ेगा और पढ़ाई भी, और उसका मानसिक रूप से भी विकास होगा।
1: जी संजय जी, अब हम आते हैं कि भाई जो छोटे शहर हैं, छोटी जगहें हैं, वहाँ की चुनौतियाँ क्या हैं? तो आपके अनुभव में, आपका एक लंबा अनुभव है, बहुत लंबे समय से आप गोरखपुर और आसपास के खेल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को भी देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, लिखते रहे हैं, तो आपके अनुभव में जो छोटे शहरों के खिलाड़ी हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल सुविधाओं की कमी, या आर्थिक समस्या होती है, या उचित कोचिंग का अभाव होता है, या प्रतियोगिताओं में उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं, क्या बड़ी समस्या है उनकी?
0: ये बहुत अच्छा सवाल है। खेलों के लिए सबसे अच्छा छोटा कस्बा है अभी भी भारत में, लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे आते हैं या शुरुआत करते हैं उसी समय थोड़ा सा संसाधनों की कमी होती है, घर वालों का प्रेशर रहता है, रोजी रोटी की चिंता रहती है, इसमें वो गड़बड़ हो जाते हैं। हालांकि सही बात यह है कि छोटे शहरों में भी काफी प्रयास चल रहा है, सुविधाएं कम है थोड़ी, और बड़े शहरों में सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं। पहली बात तो देखिए, खेलों का विकास अगर आप गौर करें तो दो चीजों से सबसे ज्यादा होता है। एक तो स्कूल में अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या बढ़ सकते हैं तो नाम मात्र का। दूसरा, जिला यूनिट अगर हर खेलों में हॉकी, जिला हॉकी लीग हो या जिला फुटबॉल लीग हो या जिला जिम्नास्टिक संघ हो, जिले स्तर पर अगर प्रयास किया जाए, सुविधाएं दिया जाए, तो अच्छे प्लेयर वहीं पर सर्च हो जाएंगे और वो हमारे प्रदेश, वो हमारे देश दोनों के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। इसमें थोड़ी बदलाव की जरूरत है, हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास में काफी उन्नति है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की जरूरत है।
1: जी सीमा जी, स्कूल की बात चली है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्कूल की क्या भूमिका है खिलाड़ी को शुरू में ही पहचान कर उसे उचित स्थान दिलाने की, उचित प्रशिक्षण दिलाने में स्कूल की क्या भूमिका है?
2: स्कूल में सर क्लास 1 से ही खेल को शुरू कर देना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ खेल अनिवार्य विषय होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में और बच्चे खेलें।
1: और एक कोच के रूप में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या अगर अच्छी खेल सुविधा सिर्फ उपलब्ध करा दी जाए खिलाड़ियों को, तो क्या वो पर्याप्त है, या उसके साथ अच्छी कोचिंग, आधुनिक जो उपकरण हैं वो, अच्छी डाइट, ये सब भी जरूरी हैं?
2: जी सर, अच्छी डाइट और उपकरण के साथ साथ सर उनको मानसिक रूप से विकास के लिए भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है उनके साथ, और एपरेटस अच्छे होने चाहिए डाइटिंग के लिए। तो जिम्नास्टिक में डाइटिंग का कोई रोल ही नहीं है, बच्चा वैसे ही स्लिम रहता है, भरपूर ज्यादा से ज्यादा वो डाइट ले नहीं सकता है, स्लिम रहेगा तभी जिम्नास्टिक वो कर पाएगा।
1: जी, और जिम्नास्टिक के जो खिलाड़ी आपके पास प्रशिक्षण पाते हैं उन्हें आप क्या सलाह देती हैं कि अपनी जीवन शैली में, अपनी जीवनचर्या में किन चीजों को अपनाएं और किन चीजों से दूर रहें?
2: अनुशासन।
1: जी,
2: अनुशासन ही खेल को उड़ान देता है, अनुशासन ही नहीं है तो खेल नहीं सकता, ना तरक्की कर सकता है, दम हो जाएगा।
1: ये बताइए कि आप खुद जिम्नास्टिक की एक बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रतिनिधित्व किया है, और गोरखपुर से आप हैं, आपने भी इसी शहर में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब आप यहाँ के बच्चों को प्रशिक्षण दे रही है, तो इस पूरे समय को देखें तो आपको क्या लगता है कि जैसे कोई अगर खिलाड़ी गोरखपुर या गोरखपुर जैसे छोटे शहर में प्रशिक्षण ले रहा है तो जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनसे मुकाबला करने के लिए क्या उसे अतिरिक्त मेहनत करनी होती है, क्या करना होता है?
2: सर, सुविधाओं की बहुत अभाव है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो तो अपना अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर जो गांव के बच्चे हैं या छोटे शहर के बच्चे हैं वहाँ उपकरण के अभाव होने के कारण जिम्नास्टिक के एपरेटस ही इतने महंगे होते हैं कि उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, टैलेंट की कमी नहीं है जिम्नास्टिक में।
1: जी, जो एस्पायरिंग जो बच्चे हैं या जो गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, उनके लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, उनके लिए एक जानकारी की चीज है, आप मुझे बताएं कि अगर कोई बच्चा आपके पास प्रशिक्षण प्राप्त करने आता है तो क्या जो सुविधाएं उसको चाहिए वो आपके स्टेडियम में या जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ जो उपलब्ध है क्या वो पर्याप्त है, या उसे अपने घर पर भी कुछ और व्यवस्थाएं करनी होती हैं?
2: घर पे तो जिम्नास्टिक की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जो स्टेडियम में है उसी व्यवस्था में ही करना होगा उनको।
1: जी, तो यानी कि यह पर्याप्त है जो आपके पास।

0: अगर प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं तो आपके जो उपकरण हैं वहाँ जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाकर वो कर सकते हैं।
1: कर सकते हैं, पर हमारे वहाँ भी अभी उपकरण उतने अच्छे तो नहीं है,
0: जी
1: सब पुराने ही हैं।
0: मतलब ये सवाल पूछने का मेरा आशय जो था वो ये था कि जैसे बहुत सारे खेल हैं, जैसे बैडमिंटन है, जैसे टेबल टेनिस है, तो वहाँ आपको घर पर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। जैसे क्रिकेट ही है, महंगे खेल उपकरण होते हैं और आप सिर्फ प्रशिक्षण केंद्र पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपके पास अपने व्यक्तिगत उपकरण होने चाहिए। तो मेरा आशय यही था कि क्या जिम्नास्टिक में अगर आपके पास व्यक्तिगत रूप से चीजें नहीं है तो भी क्या वो खेला जा सकता है?
1: नहीं सर, जिम्नास्टिक के उपकरण ही इतने महंगे आते हैं कि वो आप उपलब्ध ही नहीं करा सकते।
0: जी
1: हैं
0: जी जी
1: गद्दे पे अगर आपने एक गद्दा भी खरीद लिया तो एक गद्दे पे आप जिम्नास्टिक नहीं करा सकते।
0: तो यह एक उत्साहजनक बात है कि मतलब आप प्रशिक्षण केंद्र के सहारे भी आप जिम्नास्टिक का खेल सीख सकते हैं, उसके लिए स्वयं से आपको कोई बहुत
1: तो सबसे बड़ा रोल कोच का होता है।
0: कोच का है जी,
1: कोच नहीं तो जिम्नास्टिक बच्चा कर ही नहीं सकता।
0: जी यही मुझे जानना था कि बाकी खेलों की अपेक्षा मुझे लगता है कि यह एक उत्साहजनक बात है।
1: वो टच बॉडी गेम होता है
0: जी,
1: मतलब हाथ से हाथ देना, सब कुछ करना, टच करके ही सब कुछ किया जा सकता है।
0: जी जी जी तो सबसे बड़ी भूमिका प्रशिक्षक की है, और अगर अच्छा प्रशिक्षक है तो आपके पास व्यक्तिगत रूप से चीजों की आवश्यकता नहीं है, आप उसके संपर्क में रहें, उसे प्रशिक्षण लें और आप अच्छा कर सकते हैं, है ना, जो कि जिम्नास्टिक को एक आकर्षक खेल बनाता है। संजय जी अब आप पर आते हैं कि आपको क्या लगता है कि खेल सुविधाओं का विकास पहले तो महानगरों तक ही सीमित था, क्या अब ये छोटे शहरों तक आ रहा है? क्या जो सुविधाएं हैं खेलों की छोटे शहरों में उपलब्ध हो रही हैं?
2: एक्चुअली विकास तो जरूर है, पहले की तुलना में हम लोग उत्साहवर्धन स्थिति में आए और प्रैक्टिस चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप देखिएगा जीवन में किसी भी विभाग में अगर आप पढ़ाई को भी ले लें तो बहुत अच्छा बच्चा इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो ही जाएगा। जब तक आप कोचिंग नहीं करते हैं तो या एकेडमी नहीं है तो अब वो जवाना गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होना है तो आपको स्पोर्ट्स एकेडमी या स्पोर्ट्स क्लब या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी बहुत आगे आना होगा, तभी हम आ सकते हैं। सही बात यह है भारत में जो सच्चाई है कि स्पोर्ट्स एकेडमी की फीस बहुत ज्यादा है, जो दिल्ली बंबई मद्रास बड़े शहरों में है उसमें कोई छोटा मोटा आदमी एफोर्ड नहीं कर सकता है, 40,000 रुपया 50,000 रुपया से ज्यादा ही है। इसमें गांव का आदमी कैसे इसको कर सकता है, ये बड़ा दुर्लभ चीज है भारत के व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचे तो। हाँ ये हो सकता है कि जिले स्तर पर भी थोड़ी सी एकेडमी या सुविधाओं को दी जाए उपलब्ध, कुछ सरकारी लोग उपलब्ध कराएं, कुछ प्राइवेट लोग उपलब्ध कराएं, हम आप भी सुधरें तो खेल सुधरेगा।
0: किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे केवल उसका अपना परिश्रम नहीं होता बल्कि मेरा मानना है कि परिवार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सीमा जी, विशेष रूप से जो जिम्नास्टिक जैसा खेल है जहां प्रशिक्षण लंबा होता है और बहुत मेहनत वाला होता है, तो वहां माता पिता को बच्चों को किस तरह का सहयोग प्रदान करना चाहिए?
1: सहयोग ये हम उनसे ये अपील करेंगे कि उनको टाइम से ले जाए, क्योंकि अगर एक दिन भी गैप होता है अगर बच्चे का जिम्नास्टिक में तो एक हफ्ते का समझ लीजिए प्रैक्टिस खराब, इसलिए गैपिंग नहीं होना चाहिए।
0: संजय जी, खेल पत्रकार के रूप में आपने सफल खिलाड़ियों की यात्रा को भी बहुत करीब से देखा होगा, तो क्या आपको लगता है कि जिन खिलाड़ियों के पीछे परिवार का मजबूत समर्थन होता है उनके लिए लंबी खेल यात्रा जारी रखना आसान हो जाता है?
2: देखिए ये यात्रा तो थोड़ा कठिन है, आप ऐसे गौर करें अपने पूरे जीवन को तो हम 6-7 साल में इंजीनियर बन सकते हैं, 6-7 साल में कोचिंग पढ़ के एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं या कोई भी विधा में सर्विस के आ सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, 5-6 साल के प्रैक्टिस के बाद ऐसा होता है, लेकिन खेल एक बहुत बड़ा विधा है, इसके लिए आपको कम से कम 10-12 साल की प्रैक्टिस चाहिए जम के, जो दोनों में बहुत अंतर है। तो 10-12 साल गार्जियन पेशेंस रखे, बच्चे पेशेंस रखें और ईमानदारी से प्रैक्टिस करें तो रिजल्ट सामने है। स्थितियां देखिए बहुत बदली हैं, अभी कल का ही उदाहरण लें आप तो भारत जो है क्रिकेट में श्रीलंका को हरा के वर्ल्ड 8वीं बार चैंपियन रहा, वहीं एशियाई खेल में पुरुष हॉकी को कर देखें दक्षिण कोरिया को हरा कर चैंपियन बना, लड़कियों ने तो कमाल कर दिया, ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन की और विश्व कप में भी 4थे नंबर पे ना आके सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची लेकिन 5वें स्थान तक पहुंची, जो एक बहुत बड़ा स्थिति है। और लड़कियां प्रैक्टिस भी कर रही हैं अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग बदल रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी जरूरत है सुविधाओं की।
0: अच्छा अब आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चे के शुरुआती प्रदर्शन देखते हैं और देखकर जब वो बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है तो उसे बहुत जल्दी वो परिणाम चाहने लगते हैं, ठीक है ना, तो क्या यह खिलाड़ी पर अतिरिक्त मानसिक दबाव नहीं पैदा करता है यह प्रवृत्ति अगर माता पिता की है तो?
2: निश्चित रूप से सर, ये देखा जाए तो खेल में माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है, माँ बाप हुआ, गार्जियन हुआ, एनवायरमेंट हुआ।

0: सभी का कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा है तभी आप खेल सकते हैं, क्योंकि आज के एज में होता क्या है, सब लोग पढ़ाई के लिए भाग रहे हैं, फीस बढ़ रहे हैं और एजुकेशन के प्रति उसमें एक लगा बहुत कुछ हो जाएगा, वो अभी थोड़ी कमी है हम लोग की सोच में। बच्चा खेल भी कह रहा है तो व्हाट्सएप पे खेल रहा है, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। ये स्पोर्ट्स से दूर है, ग्राउंड से दूर हो जाता है और भारत में इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ज्यादातर लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं, अगर ग्राउंड पे जाके वही बच्चा एक बार अगर वो 400 मीटर का दौड़ हल्का हल्का कर ले तो शायद जीवन में बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो गार्जियन का भी माइंडसेट थोड़ा बदलना पड़ेगा। पढ़ाई के अलावा बहुत चीजें हैं, हालांकि खेल में भी बहुत चीजें हैं। अब खेल के भी जो सब्जेक्ट हैं बढ़े हैं, कमेंटेटर आप हो सकते हैं, स्पोर्ट्स क्रिटिक हो सकते हैं, प्लेयर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के स्टैटिकल अफसर हो सकते हैं, इसमें बहुत डाटा बढ़ा है। तो खेलों के प्रति लोगों को आम उजान जो आम लोगों का आना चाहिए।
1: पेरेंट्स सोचते हैं कि तुरंत हमको रिजल्ट,
2: जी यही मैं जानना चाह रहा था,
1: वो तुरंत रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि बच्चा जब मेहनत करेगा धीरे धीरे धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, तुरंत रिजल्ट नहीं दिया जा सकता स्पोर्ट्स में। आप पढ़ाई करते हैं तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पर खेल ऐसा चीज है कि तुरंत आपको रिजल्ट नहीं, उस पर मेहनत करना पड़ेगा।
2: तो गार्जियन को यह समझना चाहिए कि इसे समय देना होगा, है ना। ये अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत परिणाम आने लगेंगे।
1: नहीं डालना चाहिए मानसिक रूप से कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, कुछ और करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं। इस सब चीजों के लिए पेरेंट्स को बिल्कुल भी
2: सीमा जी, अब ये बताइए कि भाई आप प्रशिक्षण दे रही हैं तो आपको जब प्रतिभाशाली बच्चा मिलता है, उनकी पहचान हो गई, प्रशिक्षण शुरू हो गया, आपके स्तर पर प्रशिक्षण उनका हो भी गया, तो अब जब खिलाड़ी को आगे जाना है, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना है, तो उसका रास्ता क्या है, कैसे वो आगे जाते हैं?
1: देखिए पहले तो जिला स्तरीय प्रतियोगिता होती है, मंडल स्तरीय प्रतियोगिता होती है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है।
2: जी
1: उसमें बच्चा सीढ़ी बाई सीढ़ी सिलेक्ट होता है। जब मंडल स्तर पर बच्चा सिलेक्ट होता है तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जाता है, राज्य प्रतियोगिता में जो बच्चा सिलेक्ट होता है फिर राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में जाता है, राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में जब सिलेक्ट होता है इंटरनेशनल के लिए बच्चा जाता है। और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं एक कैंप लगता है, सारे बच्चे वहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर एक कोच नियुक्त होता है जो उन बच्चों को ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देने के बाद उनका इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है।
2: तो अगर कोई बच्चा जिला स्तर पर हुई प्रतियोगिता और उसमें उसने अच्छा किया तो आगे बढ़ने के अवसर कितने बच्चों को मिलते हैं, फिर राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में जिले स्तर से कितने खिलाड़ी जा सकते हैं?
1: हमारे में तो सर 6 जाते हैं,
2: जो शीर्ष पर 6 लोग रहे हैं उन्हें आगे भेजा जाता है। और शायद ऐसा ही कुछ राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी होता होगा,
1: सभी राज्य स्तर, हमारी जिम्नास्टिक में ही शॉर्ट है और गेमों में।
2: और जो प्रतियोगिताएं होती हैं चाहे जिले स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, तो इसमें कैटेगरी किस तरह की होती है, मतलब महिला और पुरुष के अलावा उम्र को ध्यान में रखकर किस तरह की कैटेगरी और बनाई जाती
1: है? कैटेगरी अंडर 12 होता है
2: जी,
1: मतलब 14 साल के बच्चे से नीचे, उसके 17 साल के बच्चे के नीचे का होता है, 19 होता है सर,
2: अच्छा
1: 19 साल के बच्चों के नीचे का, 3 श्रेणियों में जिम्नास्टिक कराया जाता है।
2: एक जो महत्वपूर्ण सवाल है विशेष रूप से जिम्नास्टिक के खेल में वो है चोटों से बचाव, है ना। जिम्नास्टिक जैसे खेल में प्रशिक्षण के दौरान चोट लगने की आशंका रहती है, तो आप अपने खिलाड़ियों को किस तरह से इसके लिए तैयार करती हैं कि चोटों से बचे और चोटों से उभरें?
1: उनको सबसे पहले सर बेसिक चीजों करा के उनको मजबूत किया जाता है जिससे उनको चोट कम से कम आए, और पिट की व्यवस्था होती है, जो नए एलिमेंट सीखते हैं बच्चे, पिट अगर नहीं है तो डेंजरस हो सकता है सर।
2: पिट बताएं मुझे, पिट क्या है
1: सर? फॉर्म भरे, एक गड्ढे होते हैं,
2: अच्छा
1: उसमें फॉर्म भरे रहते हैं सर।
2: ओके।
1: और बच्चा अगर हाई बार वगैरह कर रहा है तो गिरता है तो उस फॉर्म में चला जाता है, तो उसको चोट नहीं लगती है सर। वो बेसिक चीज है सर, ये सारी चीजें, तब जाके वो दूसरे जगह मैट पे परफॉर्म कर सकता है।
2: संजय जी, आप मीडिया कर्मी भी हैं, लेख वगैरह आप लिखते रहे हैं, तो ये बताइए कि किसी खिलाड़ी की जब सफलता प्राप्त करता है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम देखते हैं कि मीडिया अक्सर उसकी उपलब्धियों तक ही सीमित रहता है, उस पर खूब चर्चे होते हैं, लेकिन जो उसकी पूरी यात्रा रही है या उसकी जो चुनौतियां रही हैं उनको सामने नहीं लगता है, आपका क्या कहना है?
0: एकदम सही बात है सर। जब आदमी एक जनरल प्लेयर, सामान्य खिलाड़ी जिला से गुजरता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराता है तो वो पूरी तरह से लाइमलाइट में आ जाता है, मीडिया उसको लाइमलाइट में नहीं लगती है। लेकिन वही खिलाड़ी जिला में कैसे परेशान हुआ या बाधा उसको कितनी आई या पारिवारिक रूप से अड़चन कैसे हुआ या फूडिंग में उसको कैसे प्रॉब्लम आई, जल्दी लिखा नहीं जाता है। तो मैं तो हमेशा इसका मुरीद रहा हूं कि प्लेयरों को

0: मॉडल के रूप में यूज करना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी बनना बहुत कठिन है। और अगर आप रोल मॉडल बनाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिशियन को बनाया था, उसी तरह से उनको भी आप रोल मॉडल बनाएं, तो ये खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होगा। कुछ नहीं कर सकते तो टूर्नामेंट को देखें, कोई टूर्नामेंट के लिए अगर स्पॉन्सर में आता है तो हम जो मदद हो सकता है करें, या किसी खिलाड़ी को ही मदद करें। इतना अगर मोरल सपोर्ट है तो देश शायद नहीं वर्ल्ड तो एशिया के हम चुनिंदा दो तीन कंट्री में शामिल हो जाएंगे।
1: अच्छा, एक सवाल जो आज आधुनिक समय में उठ खड़ा हुआ है कि पहले के समय में हम देखते थे कि भाई बच्चों को क्या करना होता था, पढ़ाई करनी होती थी और बाकी के समय जो बचा उसमें खेलकूद करना होता था, लेकिन आजकल अनिवार्यतः बच्चों को जो है जो डिजिटल दुनिया है, जो सोशल मीडिया है या मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसमें उनको सहभागिता वो करते भी हैं और कुछ कारणों से उन्हें करनी पड़ती भी है और उसमें उनका काफी समय जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, खेल को जीवन का हिस्सा क्यों बनाया जाए, खेलों में प्रतिभा क्यों किया जाए, क्योंकि समय तो कम हो गया है।
0: देखिए, खेल जो है एक्चुअली मेंटल स्टेटस के लिए भी जरूरी है, और खेलकूद को अगर ये माना जाए कि सिर्फ खेल है तो हम यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि अच्छा खेल खेल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि किसी टीम को परफॉर्म कर रहे हैं, हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे। और कहा गया हेल्थ इज वेल्थ, अगर स्वस्थ है शरीर तो स्वस्थ मन उसी में निवास भी करता है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय ऋषि विवेकानंद को देखें अगर, तो उन्होंने भी कहा था एक बार कि हमें अगर गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलने दिया जाए तो हम ज्यादा हर्षित होंगे। एक लाइन में ही सब कुछ निहित है, जबकि होता क्या है, हम लोग खेल को खेल के नजरिए से देखते हैं और एक खिलाड़ी कितना तेज होता है ब्रेन का, इसको हम लोग नहीं देखते हैं। फिर पूरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन आते हैं, उसको भी झेलने की क्षमता रखता है कोई उतार चढ़ाव हो, इसलिए मेंटल स्टेटस को तो स्पोर्ट्स से जोड़ना ही चाहिए। और सही पूछिए, आज के एज में कई देशों में ऐसा है, साइकिलिंग बहुत मस्त है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, भारत में साइकिलिंग कम। अभी चीन को ही आप देखें तो चीन में कहा गया है पांच आदमी है तो पांच साइकिल बाहर खड़े रहते हैं और उनके यहाँ कोई नहीं है, उनके यहाँ अगर आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना है तो आपको पास इशू कराना पड़ेगा पेट्रोल के लिए, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई साइकिल लेके जाता है तो लोग हंसने लगते हैं या इसको आर्थिक रूप से जोड़ने लगते हैं, क्योंकि सही है कि मेंटल स्टेटस के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का होना बहुत जरूरी है।
1: यानी कि यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि आज के समय में जब हम में अधिकांश समय जो है कार्यालय में बैठकर या मोबाइल पर टीवी पर बैठकर काम करना होता है, तो खेलों का महत्व एक तरह पहले से भी बढ़ गया
0: जी,
1: है ना, खेलना जो है आज के समय में और ज्यादा जरूरी
0: जी,
1: है
0: जी, बहुत जरूरी है। आज के जो स्थिति है
1: जी,
0: वो तनाव का ये है हर, अच्छा ये इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर तरह का स्ट्रेस है, उसमें अगर मानसिक रूप को आप सुदृढ़ होना चाहिए पहले तो आपको ग्राउंड पे आना, अगर ग्राउंड पे भी आप नहीं आ सकते हैं तो कम से कम योगा कीजिए, घर में एक्सरसाइज 15 मिनट का कीजिए, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है ऐसा, इंडिया में भी दो तीन स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र आप ले लें, योगा वहां सब लगभग 75% लोग करते हैं, लेकिन बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है। तो आपको शारीरिक चुस्ती के लिए कुछ नहीं तो करना ही करना पड़ेगा और डाइटिंग पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा।
1: सीमा जी, अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है और वो खेल में करियर बनाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो आप क्या सलाह देंगे, उसे किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए?
2: अपनी प्रैक्टिस पे उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, समय देना चाहिए और अपना शेड्यूल बना के प्रैक्टिस करना चाहिए।
0: शेड्यूल
2: नहीं तो बच्चा आगे नहीं जा सकता।
1: और ऐसे जो बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो आगे इस खेल में किसी भी खेल में जाना चाहते हैं, तो उनके माता पिता के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
2: उनके माता पिता की यही सलाह है कि बच्चों को मोटिवेट करें, खेलें, घर से बाहर निकलें, मोबाइल थोड़ा सा कम देखें और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दें।
1: अब कार्यक्रम के अंतिम खंड में हैं हम, और जो है सीमा जी, थोड़ी सी जानकारी मैं आपकी जीवन यात्रा पर भी जानना चाहूंगा, क्योंकि एक छोटे शहर से निकलकर आप भी राष्ट्रीय स्तर तक गई हैं और आपने अच्छा प्रदर्शन किया है और आज एक जानी मानी कोच हैं आप, तो आपकी यात्रा कैसी रही, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने में आपको किन संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
2: मैं यही गोरखपुर की रहने वाली हूँ और मेरा एडमिशन गोरखपुर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में क्लास 6 से हुआ, जिससे मेरा वहीं से करियर बनना हुआ। मेरे कोच डोईलाल सर थे और उसके बाद सविता मैडम, ये दो कोच हमारे हमको आगे बढ़ाने में बहुत मदद किए हैं सर। स्पोर्ट्स कॉलेज के हाई स्कूल पास करने के बाद मैं लखनऊ छात्रावास में एडमिशन लिया, उसके बाद वहां से बीए कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद मैं पटियाला गया, पटियाला में जिम्नास्टिक का डिप्लोमा की, फिर वहां से आने के बाद सर

0: एक साल तक वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कोच रही। और उसके बाद मैं बीपेट करने गई, और फिर मैं बीपेट करके आने के बाद मैं रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोच नियुक्त हो गई।
1: इस यात्रा में आपके सामने सबसे बड़ी जो है चुनौतियां क्या रही, किन संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा?
0: पहले तो स्पोर्ट्स कॉलेज में भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वहाँ भी मैट के अभाव था, प्रेटस का अभाव था, अच्छे मैट भी नहीं थे, अच्छे प्रेटस भी नहीं थे, लेकिन हमारे कोच बहुत अच्छे थे, मैम और सर बहुत अच्छे थे, जो हम लोग को मोटिवेट करते थे उसी अप्रेटस पे, वो भी हम लोग के साथ उतने ही वक्त देते थे और लगे रहते थे हमको आगे बढ़ाने के लिए। कभी हम लोग का हाथ फट जाता था, कभी चोट लग जाता था मैट ना होने के कारण, तो हम लोग को भी बहुत उसका सामना करना पड़ा था, पर स्टार्टिंग वो स्पोर्ट्स कॉलेज में स्टार्टिंग दे रहा था।
1: अच्छा, एक महिला खिलाड़ी के रूप में संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा कि महिला खिलाड़ी के रूप में आपको अपने जीवन में, अपनी खेल यात्रा में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा जो पुरुष या पुरुष जो खिलाड़ी हैं उन्हें नहीं सामना करना पड़ता है, क्या अलग रहा?
0: अगर पुरुष महिला खिलाड़ी के साथ जाते हैं तो थोड़ी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो नहीं कह पाते हैं, और डांट भी पड़ती है कि तुमने नहीं किया, क्यों नहीं किया। अब हम लोग उससे बोल नहीं पाते अपनी बातें, मतलब जेंट्स को उससे कह नहीं पाते, ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है।
1: तो ऐसा हो सकता है कि जो महिला खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रही हों तो उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, कोच है, उसमें एक महिला भी रहे।
0: हाँ, महिला भी जाए तो बच्चा जो है अपनी परेशानी उससे कह सकता है, वो जाके कोच से बता सकता है
1: जी
0: ऐसी प्रॉब्लम है।
1: अच्छा, चलिए, अब चलते चलते आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर इस समय कोई युवा खिलाड़ी या उसके माता पिता हमें सुन रहे हैं रेडियो सेट पर, और उनके मन में ये सवाल है कि क्या छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बना जा सकता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीता जा सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? संजय जी, सबसे पहले आप बताएं।
2: निश्चित रूप से देश आगे गया और अब छोटे शहर से ज्यादा प्लेयर आ रहे हैं बड़े शहरों की तुलना में। थोड़ा सा संसाधन अगर बढ़ा दिया जाए, या स्पोर्ट्स अकेडमी बढ़ा दिया जाए, या कोचिंग कैंप बढ़ा दिया जाए, रिजल्ट और भी अच्छा होगा। और गार्जियन को इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि खेल एक ऐसा विषय है जो तुरंत इसका परिणाम नहीं आता है, इसलिए उनको थोड़ा सा अपने पर प्रतिलोम बिठाना पड़ेगा, कॉम्बिनिक को समन्वय देना पड़ेगा, बच्चे को सपोर्ट करना पड़ेगा। बच्चे को डांटना नहीं है तो हम खेल में अपनी गतिविधि और भी सक्रिय होकर तेज हो जाएंगे और शायद भारत एशिया में एक शक्तिशाली देश हो जाए।
1: जी सीमा जी, आप क्या कहेंगी?
0: सर, हम ये कहेंगे कि अगर स्पोर्ट्स को बढ़ाना है तो जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर से कोचेस को बढ़ाया जाए, अच्छी कोचेस की नियुक्ति की जाए, जिससे खेल का स्तर बढ़ सके।
1: तो श्रोताओं, बात बिल्कुल स्पष्ट है, प्रतिभा चाहे किसी महानगर में जन्म ले या किसी छोटे शहर और कस्बे में, उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए सही दिशा, निरंतर अभ्यास, अनुशासन, परिवार का विश्वास और अवसर। आज की चर्चा ने यह भी बताया कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और बेहतर जीवन की आधारशिला भी है। मैं अपने दोनों अतिथियों, खेल पत्रकार संजय वर्मा और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर की जिम्नास्टिक कोच सीमा विश्वकर्मा का आभार व्यक्त करता हूं कि आप दोनों ने अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा किए। श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी का कार्यक्रम खेल दर्पण, और इस परिचर्चा का विषय था छोटे शहरों की प्रतिभाएं सपनों से सफलता तक का सफर। मैं हूं दीपांकर मिश्र, आपसे फिर मुलाकात होगी खेल दर्पण में एक नए विषय और नई खेल चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग रागेश्वरी में गिटार वादन। वादक कलाकार थे मोहित कुमार, तबले पर इनके साथ संगत की गुलाम साबिर ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार

0: पर व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलूकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. The Finance Ministry today clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Ministry said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants will also remain free. The Ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. Chief ministers of six states today signed the Kishaw